सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। राष्ट्रीय शक संवत 1948 के श्रावण मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी देर में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है।

0: आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग सू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शु श्यान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।

यह राष्ट्र कोई भू मानचित्र नहीं, यह समय की हथेली पर अंकित वह अमर अक्षर है जिसे असंख्य बलिदानों के रक्त ने लिखा और पीढ़ियों की तपश्चर्या ने संवारा। इसकी माटी केवल धूल नहीं, इतिहास की स्मृति राख है। इसकी हवाएं केवल वायु नहीं, स्वाधीनता के अदृश्य शंखनाद है। यहाँ पर्वत प्रहरी है, नदियां स्मृतियों की शिराएं और आकाश हमारे स्वप्नों का अनंत प्रांगण। इस धरती के प्रत्येक कण को नमन, जहां मिट्टी भी मनुष्य को मातृभूमि का अर्थ सिखाती है।

सृष्टि एक विराट अलिखित ग्रंथ है और परम तत्व उसका वह अक्षर है जिसे किसी भाषा की आवश्यकता नहीं। सूर्य उसकी स्वर्णिम स्याही है, चंद्रमा उसका मौन विराम और तारामंडल उसके अनगिनत प्रश्न चिन्ह। वह दिखाई नहीं देता, फिर भी दृश्य उसी से अर्थ पाते हैं। वह सुनाई नहीं देता, फिर भी प्रत्येक निःशब्दता उसकी अनाहत ध्वनि से भरी है। शायद परम तत्व आकाश में नहीं, हमारी दृष्टि के उस पार है जहाँ दृष्टि स्वयं दृष्टा बन जाती है।

अपने मैं को दुर्ग समझकर उसकी प्राचीरों में कैद रहता है, किंतु परम सत्ता के सम्मुख वह दुर्ग भी रेत पर खींची एक क्षणिक रेखा है। जिस दिन अहंकार का सूर्य अस्त होता है, उसी दिन समर्पण का चंद्र उदित होता है। फिर मनुष्य स्वयं को दीप नहीं समझता, वह उस असीम आकाश में विलीन होती हुई एक लौ बन जाता है।

हमने जीवन भर बाहर दीप खोजे थे, पर अपने भीतर के अंधकार का द्वार कभी नहीं खोला। मन पर जमी इच्छाओं की धूल ने उस ज्योति को ढक रखा है जो जन्म से पहले भी जल रही थी। जब मोह की धुंध छटती है, तब अंतःकरण का आकाश निर्मल होता है और ज्ञात होता है प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आया था, हम ही उसके चारों ओर अंधकार बनकर खड़े थे।

हे उस अनाम अनिर्वचनीय और अनंत सत्ता, हमारी प्रार्थना को शब्द मत देना, उसे मौन की भाषा देना, हमारे कर्मों को गंतव्य मत देना, पथ का प्रकाश देना, हमारी श्वासों को केवल जीवन मत रहने देना, उन्हें तेरी ओर जाती हुई अदृश्य नदी बना देना, और जब अंतिम संध्या हमारे द्वार पर उतरे तब मैं का दीप स्वयं बुझ जाए और उसकी अंतिम लौ उसी अनंत ज्योति में विलीन हो जाए। यही हमारी वंदना है, यही हमारा समर्पण।

0: अभी आपने सुना भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए अब सुनिए चिंतन। आलेख चंद्रशेखर का है और वाचक स्वर है राजेश जैन का।
1: शब्दों का महत्व मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करने वाली जो सबसे अद्भुत शक्ति है वो है वाणी। और वाणी का आधार है शब्द। शब्द केवल ध्वनियों का समूह नहीं है बल्कि वे विचारों भावनाओं और संस्कारों के वाहक होते हैं। एक छोटा सा शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है तो वही शब्द किसी के हृदय को गहराई तक आहत भी कर सकता है। इसीलिए कहा गया है वाणी में मधुरता हो तो जीवन में सरसता अपने आप आ जाती है। शब्दों का महत्व केवल संवाद तक सीमित नहीं है बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व का दर्पण भी होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। एक विनम्र व्यक्ति अपने शब्दों से ही पहचाना जाता है जबकि कठोर वाणी वाला व्यक्ति अनजाने में ही दूरी बना लेता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि शब्दों ने बड़े बड़े परिवर्तन कर दिए हैं। महात्मा गांधी के सरल सच्चे और प्रभावशाली शब्दों ने लाखों लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उनके भाषण में कोई आडंबर नहीं था लेकिन उनमें सच्चाई और करुणा की शक्ति थी। इसी तरह संत कबीर के दोहे आज भी समाज को आईना दिखाते हैं। उनके शब्द सीधे दिल में उतरते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। शब्दों में अपार शक्ति होती है। वे टूटे हुए मन को जोड़ सकते हैं, निराश व्यक्ति को आशा दे सकते हैं और भटके हुए को सही मार्ग दिखा सकते हैं। एक शिक्षक के प्रोत्साहन भरे शब्द किसी छात्र का जीवन बदल सकते हैं। एक माता पिता के स्नेहपूर्ण शब्द बच्चे के आत्मविश्वास को मजबूत बना सकते हैं। अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बचपन की बात है। वे स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं माने जाते थे। एक दिन उनके शिक्षिका ने उन्हें एक चिट्ठी दी और कहा इसे अपनी माँ को देना। एडिसन घर गए और वो चिट्ठी अपनी माँ को दी। उनकी माँ ने चिट्ठी पढ़ी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने एडिसन को जोर से गले लगाया और कहा तुम्हारे शिक्षक ने लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत प्रतिभाशाली है। हमारा स्कूल उसके लिए छोटा पड़ रहा है। अब मैं खुद उसे पढ़ाऊंगी। यह सुनकर एडिसन के मन में आत्मविश्वास भर गया। उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया और वही बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारकों में से एक बना। इस घटना से हमें यह समझ में आता है कि शब्दों में कितनी अपार शक्ति होती है। अगर उस दिन एडिसन की माँ ने वही नकारात्मक शब्द पढ़कर उन्हें सुना दिया होता जो शायद एडिसन कभी खुद पर विश्वास ही नहीं कर पाते, लेकिन एक माँ ने अपने शब्दों से न सिर्फ अपने बेटे के आत्मविश्वास को बचाया बल्कि उसका पूरा भविष्य बदल दिया। आज के इस डिजिटल युग में जहाँ संवाद का माध्यम तेजी से बदल रहा है, शब्दों का महत्व और भी बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर लिखे गए शब्द लाखों लोगों तक पहुँचते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है कि हम सोच समझ कर लिखें, सोच समझ कर बोलें। एक गलत शब्द न केवल किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है बल्कि समाज में नकारात्मकता भी फैला सकता है। वहीं एक कटु वचन किसी के मन में ऐसी चोट कर सकता है जो वर्षों तक न भरे। कभी कभी हम यह सोचकर कठोर शब्द कह देते हैं कि सच कड़वा होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सच को भी मधुरता के साथ कहा जा सकता है। शब्दों का चयन हमारी समझदारी और संवेदनशीलता को दर्शाता है। हमें ये समझना होगा कि शब्दों की मर्यादा बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमता है। भारतीय संस्कृति में वाणी को विशेष महत्व दिया गया है। वेदों में भी वाणी की शुद्धता और संयम पर जोर दिया गया है। सत्यम वद प्रियम वद, अर्थात सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ये केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। हमारे दैनिक जीवन में भी शब्दों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार, मित्रता, कार्यस्थल, हर जगह हमारे संबंध शब्दों के धागों से ही बुने होते हैं। एक धन्यवाद, एक कृपया, एक माफ कीजिए, ये छोटे छोटे शब्द संबंधों को मजबूत बनाते हैं। वहीं अहंकार और क्रोध में बोले गए शब्द संबंधों को तोड़ भी सकते हैं। शब्दों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसंवाद। हम अपने आप से कैसे बात करते हैं ये भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यदि हम अपने भीतर सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन यदि हम स्वयं को ही नकारात्मक शब्दों से भर देंगे तो हमारा मन कमजोर पड़ जाएगा। आखिरकार हमें समझना होगा कि शब्द एक अमूल्य संपत्ति है। इन्हें सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। जैसे धन का सदुपयोग हमें समृद्ध बनाता है, वैसे ही शब्दों का सही उपयोग हमारे जीवन को सुंदर और सफल भी बनाता है। तो आइए हम संकल्प लें कि हम अपने शब्दों को मधुर, सत और सकारात्मक बनाएंगे। हम ऐसे शब्दों का चयन करेंगे जो न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारें, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां और प्रेरणा का संचार करें।
0: ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए खेती की बातें। इसमें आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता, सोयाबीन फसल में समसामयिक सलाह पर जानकारी।
2: नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर बीयू दुपारे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से आपसे बात कर रहा हूँ। और इस समय पे सोयाबीन की फसल में तीन प्रकार की बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है। और ये जो प्रकोप हमें जो समाचार मिला है, इंदौर के आसपास के जो 5-6 जिले हैं वहाँ पे प्रथमता देखे गए हैं, किसानों से भी मिले और मैं खुद जाके भी देख के आया हूँ। तो पहली बीमारी जो पिछले महीने से उसका प्रारंभ हुआ था, पीली मोज़ेक की वायरस की बीमारी। और ये बीमारी ऐसी होती है किसान भाइयों की, शुरुआत में कुछ कम पौधों पे लगती है और इसमें पीला पौधा पड़ जाता है, पत्तियों का कुछ पीलापन ऊपरी पत्तियों पे दिखाई देता है, कड़क हो जाती है और चितकबरापन हो जाता है। तो ये बीमारी कम पौधे पे अगर रहती है तब उसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। और एक बिना खर्च का एक तरीका यह है कि ऐसे पौधों को तुरंत अपने खेत से उखाड़ के बाहर कर दे, जला दे, गड्ढे में गाड़ दे। क्योंकि क्या होता है कि इसमें यह विषाणु जो रहता है, वायरस रहता है, वो इसी पौधे में रहता है और इस पौधे के ऊपर जो सफेद मच्छर बैठ के उसका रस चूसते हुए फिर उसके बाद में जब दूसरे पौधे पे जाके रस चूसने के लिए जाएगा तो यहाँ का वायरस दूसरे पौधे पे छोड़ देता है। तो एक सप्ताह के अंदर में ये बीमारी पूरे पौधों में, पूरे खेत में फैल जाती है। इसलिए शुरुआत में जब कम पौधे पे ये जो बीमारी आती है उस समय पे इसको पौधों को उखाड़ के फेंक सकते हैं। और साथ ही साथ सफेद मच्छर को नियंत्रित करने के लिए जो रस चूसक कीड़े के नियंत्रण के लिए अनुशंसित दवाइयां हैं, जैसे कि बीटा साइप्लोथ्रिन और इमेटा क्लोप्रिड है, या आपके क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है, लैम्डा साइलोएथ्रिन है, तो ऐसी दवाइयों को लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर दे ताकि सफेद मच्छर का नियंत्रण हो जाए और सफेद मच्छर दूसरे पौधे पे ये बीमारी फैलाने के लिए हम उसको नियंत्रित कर पाए। तो ये होगी। इसके साथ में एक और तरीका है कि अपने खेत में पीली चिपचिपी पट्टियां आप लगा सकते हैं, जिसको कि आप ग्रीस लगा सकते हैं या कोई ऐसे चिपचिपी पदार्थ लगा सकते हैं, तो सफेद मच्छर उसके ऊपर आके चिपक जाए और उसका पीढ़ी वहां पे खत्म हो जाए, उसका प्रजनन नहीं हो पाए। इसके साथ साथ जो दूसरी बीमारियां है, एक और देखी जा रही है कि एंथ्रेक्नोज नाम की जो बीमारी देखी जा रही है, उसमें क्या होता है कि शुरुआत में ये भी कम पौधे पे रहती है और पत्तियों की निचली जो सतह है उसके ऊपर कालापन शुरू हो जाता है, शिराओं से लेते हुए वो तने तक चला जाता है और धीरे धीरे पूरा पौधा काला पड़ जाता है और पौधा मर जाता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए जो अनुशंसित फफूंद नाशक है, जैसे कि कार्बेंडाजिम है या मैंकोजेब है, उनका एक छिड़काव अपन फसल पे प्रारंभिक अवस्था में कर सकते हैं। तीसरी और जो बीमारी देखी जा रही है राइजोप्टोनिया यूरियल ब्लाइट, और पिछले 2-3 साल से हम लगातार अपने प्रदेश में इसका प्रकोप बढ़ते हुए देख रहे हैं और पिछले साल भयंकर रूप से इससे नुकसान भी हुआ था। और इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो है उसमें पानी से सड़ा हुआ, जैसे होता है ना वाटर लीजन हम उसको कहते हैं, तो पत्तियों का जो भाग है पानी से गलने लग जाता है, सड़ने लग जाता है और धीरे धीरे पूरा पौधा फिर सड़ जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए जैसे कि बाकी बीमारियों की तरह ही प्रारंभिक अवस्थाओं में

0: इसको हम कर सकते हैं कि एक अनुसंशित फफूंदनाशक है पायरोक्लोस्ट्रबिन और उसका जो फॉर्मुलेशन आता है प्रायक्सर के नाम से बाजार में आता है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और ये अगर हमने सावधानी रखी जैसे ही हमारे खेत में बीमारी देखती है तभी हमने कर दिया, इन तीनों बीमारियों को समय रहते नियंत्रित हम कर सकते हैं और इन रोगों के कारण फसल में होने वाले नुकसान में या उत्पादन में होने वाली कमी से हम बचा सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि समय रहते इसका नियंत्रित करें और अपनी फसल को नुकसान होने से बचाएं। धन्यवाद।
1: डॉक्टर बीयू दुबारे से अभी आप सुन रहे थे सोयाबीन फसल में समसामयिक सलाह, कार्यक्रम था खेती की बातें। और लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान, स्वर रविंद्र साठे का है और संगीत नियोजन है सतीश भाटिया का।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहस्रों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7:20 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। लोक संगीत हम लेकर आएंगे सुबह 9:00। इसमें आज आप सुनेंगे बाबूलाल सोलंकी और साथियों के गाए लोकगीत। सुगम संगीत होगा सुबह 9:15 पर। इसमें आज की कलाकार होंगी सीमा परवीन। 9:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत। आज के हमारे कलाकार हैं बलवंत राय भट्ट, इनसे सुनिएगा गायन। राग होगा अहिर भैरव। सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन होगा सुबह 10:05 से लेकर 11:00 तक।

श्रोता आपको बताते हैं सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में कॉल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के हिंदी फिल्मी गाने। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर शहर का STD कोड है 0731। प्रसारण समय सुबह 10:05 से लेकर 11 बजे तक। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 11 बजे से हम रिले करेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। अपनी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत में शाम 5 बजे हम आपको सुनवाएंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत, इसे आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। इसमें सुनिएगा दूर संचार योजनाएं पर की गई बात, साथ ही आप सुनेंगे भारत संचार निगम की जनहितैषी योजनाएं पर की गई भेंटवार्ता, पंकज उपाध्याय वरिष्ठ महाप्रबंधक इंदौर संभाग से। शाम 6:30 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे सीमा परवीन को। शाम 6:45 पर सुनिएगा लोक संगीत बाबूलाल सोलंकी और साथियों की आवाज में। आकाशवाणी भोपाल से रात 7:30 पर शाम को हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम होगा रात 8:15।

नेट पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत होगा रात 9:15 पर। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे रात 10 बजे से।

0: अभी आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी इंदौर है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 7 बजे सुनिएगा हिंदी समाचार। कृपया कुछ पलों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिष्काराः तस्य प्रशासनस्य कृते बाध्यता न अपितु प्रतिबद्धता दृढ विश्वासश्च। तेनोक्तं यत् प्रशासनस्य नीतयः जनकल्याणपराः विकासोन्मुखाः प्रगतिवर्धकाश्च सन्ति। ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्यां इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्येतत् मंचं सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् तस्य प्रशासनेन परिष्कारेभ्यः स्पष्टा योजना निर्मिता अस्ति, यस्यां प्राथमिकता शासनस्तरीय परिष्कारेभ्यः प्रदत्ता अस्ति। सः उक्तवान् यत् देशस्य भविष्यं सुरक्षितं कर्तुं भारतं नीतिनिर्माणस्तरे नवपरिष्कारान् करोति।
2: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्त धारा की, सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् तस्य प्रशासनं केवलं नियमेषु परिवर्तनं न करोति अपितु तेषां नियमानां पृष्ठे विद्यमानायाः सम्पूर्ण दृष्टेः परिवर्तनमपि करोति। सः उक्तवान् यत् पूर्वं नियमसम्बद्ध दृष्टिः अनुमति पर्यन्तं निषिद्धम् इति आसीत्, अधुना च प्रशासनं ताम दृष्टिं परिवर्त्य निषेध पर्यन्तम् अनुमतम् इति दिशि अग्रेसरति। भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितं ब्रिक्स पर्यटन मंत्रिणाम् उपवेशनम् ह्यः जयपुर घोषणापत्रम् सर्वसम्मत्या स्वीकरणेन सम्पन्नम्। एतत् घोषणापत्रम् ब्रिक्स सदस्य देशानां मध्ये पर्यटन क्षेत्रे सहयोगं सुदृढीकर्तुं कार्ययोजना प्रददाति। घोषणापत्रे सहयोगस्य प्रमुख क्षेत्राणि निर्दिष्टानि सन्ति। एतेषु पर्यटन क्षेत्रे कृत्रिम बुद्धेः उपयोगः, स्थायी पर्यटन पद्धतयः, कौशल विकासः, अबाधित यात्रायाः सौविध्यानि च सम्मिलितानि सन्ति। उपवेशनस्य अध्यक्षतां केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः राजस्थानस्य जयपुरे अकरोत्। अनेन सहैव अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितस्य ब्रिक्स पर्यटन कार्यसमूहस्य अपि समापनम् अभवत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः पुनरुक्तवान् यत् अवैध प्रवासिनां विरुद्धं शून्य सहिष्णुता नीतिः निरन्तरं प्रवर्तिष्यते तथा अवैध प्रवासिनां परिचय निष्कासन निर्वासन सम्बद्धा प्रक्रिया कठोरतया क्रियान्विता भविष्यति। असौ उक्तवान् यत् देशात् प्रत्येकस्य अवैध प्रवासिनः निर्वासनं प्रति प्रशासनस्य प्रतिबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् जनसांख्यिकीय परिवर्तनं पूर्णतया निरोद्धुं प्रयत्नः करिष्यते। गृहमन्त्री ह्यः पश्चिम बंगालस्य सिलीगुड़ी नगरे कावाखाली प्रांगणे भारतीय न्याय संहितायाः विषये षड् दिवसीय अवबोधन प्रदर्शनीम् उद्घाट्य एकां सभां सम्बोधयन् एतत् उक्तवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः आगामी मासस्य 5 दिनांके नवदिल्ल्यां स्थिते विज्ञान भवने 48 विद्यालयीय शिक्षकेभ्यः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् प्रदास्यति। शिक्षा मन्त्रालयेन संसूचितं यत् विद्यालयीय शिक्षकाणां चयनं जनपदस्तरे, राज्यस्तरे तथा राष्ट्रियस्तरे विद्यालय शिक्षा साक्षरता विभागेन त्रिचरणात्मक चयन प्रक्रियया कृतम्। चयनिताः 48 शिक्षकाः 27 राज्येभ्यः, 7 केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः अथ केन्द्रप्रशासनस्य 6 संस्थाभ्यः च सन्ति। चयनितेषु 48 शिक्षकेषु 26 पुरुषाः, 22 च महिलाः सन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व मध्य प्रदेशे प्रचण्डात् अति प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। असम सिक्किम मेघालय नागालैण्ड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा राज्येषु सोमवासर पर्यन्तं प्रचंड वृष्टेः संभावना वर्तते। अद्य दिल्ली पंजाब हरियाणा बिहार छत्तीसगढ़ पूर्वोत्तर प्रदेश ओडिशा उत्तराखंड हिमालयीय प्रदेशानां केषुचित् भागेषु अपि समान स्थितेः संभावना वर्तते। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की भी सोच रही बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
3: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के 45 दिन के भीतर ये जमीन दी गई, जबकि सीमा बाड़ के लिए जमीन की मांग 2014 से लंबित थी। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रहेगी। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूलन, पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। 2 दिन की इस बैठक में सीमा पार अपराध रोकने, बुनियादी ढांचे, सड़क और रेल संपर्क मजबूत करने,

0: मीडियम वेव 465.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे दें। आज सुबह 10:05 से लेकर 11 बजे तक हम आपको सुनवाएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसका नाम है MH हॉटलाइन। ये सजीव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 10:05 से लेकर 11 बजे तक। इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद के हिंदी फिल्मी गाने। हमें कॉल करने के लिए टेलीफोन नंबर हम आपको बता रहे हैं, कृपया टेलीफोन नंबर नोट कीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 271023 और 271024। एक बार फिर सुनिए, 271023 और 271024। इन टेलीफोन नंबर पर कॉल करने से पहले आप कृपया एसटीडी कोड लगाएं। अगर आप इंदौर के बाहर से हमें कॉल करते हैं तो एसटीडी कोड लगाएं। एसटीडी कोड है 0731। जी हाँ, 2710223 और 2710224 टेलीफोन नंबर है और एसटीडी कोड है 0731। इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात करें, साथ ही सुने अपनी पसंद के हिंदी गाने। प्रसारण समय सुबह 10:05 से लेकर 11 बजे तक। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे, आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की तरक्की के लिए सुधार सरकार की मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। शिवपुरी में आज बलराम कृषि महोत्सव, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों से वर्चुअली संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किन बितवा लिंक परियोजना की समीक्षा की और प्रदेश में बारिश का मजबूत सिस्टम सक्रिय, सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। कल नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में उन्होंने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की भी सोच रही है। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना के जरिए देश में उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत को दुनिया में विकास और उम्मीद की बड़ी किरण के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और 50 लाख से ज्यादा परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना से जुड़े हैं।
1: हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
0: आज शिवपुरी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन नवीन कृषि उपज मंडी पेपर समा में दोपहर 12 बजे से होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसमें वर्चुअली शामिल होकर किसानों को संबोधित करेंगे। महोत्सव में कृषि और उससे जुड़े विभागों की योजनाओं पर प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी किसानों को खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन की नई तकनीकों की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत उद्यमियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकमगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए संसाधनों की कमी नहीं है और सरकार स्थानीय उद्योगों को हर संभव मदद दे रही है। उन्होंने कहा कि उद्यमी होटल, होम स्टे और इंडस्ट्रियल पार्क जैसी योजनाओं का लाभ उठाएं। डॉ. यादव ने कुंडेश्वर धाम को महाकाल लोक के तर्ज पर विकसित करने की भी बात कही।
2: यहाँ सबका आग्रह है कुंडेश्वर को जरा कुंडेश्वर धाम बनाया जाए। तो कुंडेश्वर धाम भी जब बाबा महाकाल का महालोक बना और बाकी सब हुआ तो कुंडेश्वर में भी आनंद आना चाहिए। तो टीकमगढ़ में एक बड़ी सौगात कुंडेश्वर भी देने की मैंने घोषणा की है। बहुत जल्दी टूरिज्म कमेटी है, इसमें टूरिज्म की एजेंसी आकर के उसके विकसित और व्यवस्थित प्लानिंग पे काम करते हुए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उसके रूप से काम करे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किनबेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कल खजुराहो में परियोजना के काम की समीक्षा की और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। परियोजना पूरी होने पर प्रदेश में करीब 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और 44 लाख से ज्यादा लोगों को पेयजल मिलेगा। इसके अलावा 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का प्रावधान है। योजना से प्रदेश के 10 जिलों के 1,382 गांवों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने 32 आईएएस और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कल तबादले किए हैं। इसके साथ ही ग्वालियर और सतना नगर निगम के आयुक्त भी बदले गए हैं। 10 जिलों के जिला पंचायत सीईओ को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में 2016 से 2024 बैच तक के अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। इनमें जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, एसडीएम और सहायक कलेक्टर शामिल हैं। खंडवा के जिला पंचायत सीईओ डॉ. नागार्जुन बी गौड़ा को सतना नगर निगम आयुक्त बनाया गया है, जबकि उनकी पत्नी सृष्टि देशमुख गौड़ा को रीवा जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने 2000 मेगावाट पीक पावर क्षमता की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से खरीद शुरू करने की सहमति जताई है। इसके लिए दोनों राज्यों की बिजली कंपनियों के बीच समझौता हुआ है। समझौते का मकसद दोनों राज्यों में बिजली की अलग अलग मौसमी मांग का बेहतर इस्तेमाल करना है। प्रदेश में अक्टूबर से मार्च तक रबी सीजन में मांग बढ़ी है, जबकि उत्तर प्रदेश में गर्मियों और खरीफ सीजन में बिजली की मांग ज्यादा रहती है। ऐसे में कम मांग वाले समय की अतिरिक्त बिजली को दूसरे राज्य की जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने इस योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी थी। योजना का मकसद देश में मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाहगंज में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया, जबकि बाकी आवेदनों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेना लोगों का अधिकार है, इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। प्रदेश के मुरैना जिले में लंबे समय से बंद कैलारस शुगर मिल को फिर से शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए MSME विभाग ने इच्छुक कंपनियों से ऑनलाइन प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्ताव जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 5 बजे है और 16 सितंबर को प्रस्ताव खोले जाएंगे। प्रदेश को तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया। 19 से 21 अगस्त तक चले इस कार्यक्रम के दौरान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, स्पेसटेक, AVGC, XR और ड्रोन निर्माण क्षेत्र की कंपनियों से निवेश और साझेदारी पर चर्चा हुई। प्रदेश के 2 सरकारी शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए हुआ है। भोपाल की डॉ. अर्चना शुक्ला और सीधी के शैलेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। दोनों को 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पुरस्कार दिया जाएगा। डॉ. अर्चना शुक्ला भोपाल के सांदीपनी विद्यालय महात्मा गांधी में उच्च माध्यमिक शिक्षिका हैं। वहीं सीधी के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कंजवार के शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह का भी चयन हुआ है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून टर्फ, चक्रवात और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण बारिश का मजबूत सिस्टम सक्रिय है। इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। कई जगह नदियां उफान पर है। मौसम विभाग ने आज सिवनी, बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 3 दिन तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है। FIH हॉकी महिला विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को नीदरलैंड्स के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। नीदरलैंड्स ने दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए। इस जीत के साथ मौजूदा चैंपियन नीदरलैंड्स ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत उद्यम संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में चमोसे की जनजाति और लोक अनुष्ठान, सांस्कृतिक स्मृति और अभिप्राय विषय पर 2 दिवसीय परिसंवाद आयोजित किया गया। आगरमालवा जिला अस्पताल परिसर से लगातार हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सतना में कलेक्टर डॉ. सतीश

कुमार एस, पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह ने अतिवृष्टि और मंदाकिनी नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। झाबुआ में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर रोटला का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहरे पल के सभी श्रोताओं को वंदना तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत के साथ, जिसका संगीत आरडी बर्मन ने दिया है, आवाज़ लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है आंचल।

लीजिए सुनिए चंद्रानी मुखर्जी की आवाज़ में गोपाल कृष्णा, इस फिल्म से ये एक भक्ति रचना। इसके गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए अब सुनिए सत्यम शिवम सुंदरम इस फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। लीजिए अब सुनिए इंदिवर का लिखा हुआ यह गीत, जिसकी धुन बप्पी लहरी ने बनाई है, आवाज़ येसुदास की है और फिल्म का नाम है हैसियत।

0: दादाजी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादाजी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: लीजिए अब सुनिए मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा चितर की आवाजों में शोर फिल्म का ये गीत। इसे लिखा है राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई है।

सुनहरे पल प्रोग्राम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में चिराग फिल्म का ये गाना, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और धुन मदन मोहन की।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए यसुदास की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत। इसका संगीत रविंद्र जैन ने दिया है और फिल्म का नाम है अय्याश।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और अम्स्टरडैम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
2: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
3: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया।

0: अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
2: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम उनको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का

0: अपना शिष्यवरिता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.ue.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिन्दुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी ईगूफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिन्दुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, AI और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur Declaration, focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstelveen this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion, but a commitment and conviction for his government, and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next generation reforms at the policy level to secure the country's future.
4: हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया. इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो. इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे हैं, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं.
3: The Prime Minister pointed out that his government is not merely changing regulations, but is changing the entire philosophy behind them. He said that earlier, the approach to regulations was prohibited unless permitted. Mr. Modi said the license raj under earlier governments contributed to unemployment, while his government's production-linked incentive model is creating new opportunities. The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges. He said that even in such circumstances, the world continues to see India as a bright spot of hope and growth.
4: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों. रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा. लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है. भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है.
3: Union Home Minister Amit Shah has lauded West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari for handing over 1,129 acres of land to the Border Security Force and Sashastra Seema Bal for fencing along the India-Bangladesh border in the state within 45 days of the new government coming to power. He said the request for the land required for the border fence had been pending since 2014. Mr. Shah was speaking while attending a program at the Sashastra Seema Bal Frontier Headquarters in the Rani Danga area at Shiliguri in West Bengal yesterday. The Home Minister said completing border fencing is crucial to stopping infiltration and protecting national security. He said the government will continue its zero tolerance policy towards illegal immigration.
5: सरकार के गठन के 45 दिन
6: विद इन 45 डेज ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट सुवेंदु जी एलोकेटेड 1,129 एकर्स ऑफ लैंड फॉर द बीएसएफ एंड एसएसबी. फ्रेंड्स, दिस सेंस ऑफ अर्जेंसी कम्स नॉट मेयरली फ्रॉम बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ भारतीय जनता पार्टी बट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग दैट अनलेस इन्फिल्ट्रेशन इज स्टॉप्ड नीदर वेस्ट बंगाल नॉर इंडिया कैन रिमेन सिक्योर.
5: भारत सुरक्षित रहे.
3: The BRICS tourism ministers meeting held under India's chairship concluded yesterday with the unanimous adoption of the Jaipur Declaration, which provides a framework for strengthening tourism cooperation among BRICS member countries. The declaration outlines key areas of cooperation, including the use of artificial intelligence in tourism, sustainable tourism practices, skill development, and seamless travel facilitation. The meeting was presided over by Union Minister for Culture and Tourism, Gajendra Singh Shekhawat at Jaipur in Rajasthan, and marked the culmination of the BRICS tourism track under India's chairship in 2026. The tourism track was taken forward.

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए अब सुनिए अदालत फिल्म का ये दो गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल आनंद बख्शी के हैं और तर्ज है कल्याण जी आनंद जी की।

0: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम है आंधी। इस गीत का संगीत दिया है RD बर्मन ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: लीजिए सुनिए, हसीना मान जाएगी इस फिल्म का ये दो गाना।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: लीजिए अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम है हम दोनों।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये था परख फिल्म का गाना, जिसे शैलेंद्र ने लिखा और सलील चौधरी ने इसका संगीत दिया था। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बाबूलाल सोलंकी और साथियों के गाए लोकगीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीत। कलाकार हैं बाबूलाल सोलंकी और साथी।

इसी के साथ लोक संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी इंदौर है, लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं सीमा परवीन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गायन, कलाकार हैं बलवंत राय भट्ट। इनसे सुनिए राग अहिर भैरव।

इसी के साथ शास्त्रीय संगीत अब यहीं संपन्न होता है। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुन रहे थे गायन, कलाकार थे बलवंत राय भट्ट, आपने इनसे सुना राग अहिर भैरव। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ प्रतीक्षा कीजिए।

भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। सावन के महीने में छिंदवाड़ा की सतपुड़ा की पहाड़ियां और जंगल हरियाली से खिल उठे हैं। बादलों से घिरी पहाड़ियां, झरने और रिमझिम बारिश पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। छिंदवाड़ा के साथ सिवनी, बालाघाट, बैतूल और नरसिंहपुर से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। तामिया, पातालकोट, छोटा महादेव, छिंदी, चिमटीपुर और देलाखारी जैसे पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। वहीं सतधारा और अरहोनी के गर्म पानी के कुंड में श्रद्धालु स्नान कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता के बीच 21 से 23 अगस्त तक तामिया में 3 दिवसीय सावन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण होम स्टे, स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस महोत्सव में पर्यटक सावन के झूलों, आदिवासी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का आनंद ले रहे हैं। साथ ही आदिवासी वेशभूषा और बांस का मुकुट पहनकर तस्वीरें खिंचवाने का भी विशेष प्रबंध है। एक ओर जहां प्रकृति मेहरबान है, वहीं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रशासन सतर्क है। छिंदवाड़ा में संभावित जल संकट को देखते हुए नगर निगम ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की है। महापौर विक्रम आहाके की अध्यक्षता में हुई बैठक में कम बारिश की स्थिति में भी शहर में पानी की आपूर्ति बनाए रखने पर चर्चा हुई। कन्हर गांव जलाशय का जलस्तर बनाए रखने के लिए पेंच क्षेत्र से पानी लाने के विकल्प पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा माचागोरा बांध से शहर को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की योजना पर भी विचार किया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छिंदवाड़ा का पुआमा नगर वन आज जैव विविधता की एक नई कहानी लिख रहा है। हाल ही में हुए पक्षी सर्वेक्षण में यहाँ क्रेस्टेड हॉक ईगल और पफ थ्रोटेड वेबलर सहित 38 प्रजातियों के पक्षी दर्ज किए गए। वहीं दूसरी ओर रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए छिंदवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच टीम में मिठाइयां, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए लगातार जांच कर रही हैं। पिछले एक महीने में दूध, पनीर, मावा और अन्य खाद्य उत्पादों के 200 से ज्यादा नमूने लिए गए हैं। 108 किलो संदिग्ध घी जब्त किया गया है। सभी नमूनों को जांच के लिए भोपाल प्रयोगशाला भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिले में अधिकारियों ने गांवों का दौरा कर सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जमीनी स्थिति देखी। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने चांद क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान और उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता रखने और सभी पात्र लोगों को समय पर राशन देने के भी निर्देश दिए। पिछले दिनों चौरई में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर 60वां भव्य तुलसीदास जयंती समारोह

आयोजित किया गया। सांसद बंटी विवेक साहू ने इस अवसर पर कलाम मंच के निर्माण के लिए सांसद निधि से 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इसी कड़ी में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिले में समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ने अपने सिर पर कलश रखकर इस यात्रा का श्री गणेश किया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 52वीं जयंती भी जिले में सद्भावना दिवस के रूप में पूरे सम्मान के साथ मनाई गयी, जहां वक्ताओं ने संचार क्रांति में उनके योगदान को शिद्दत से याद किया। पिछले दिनों बैडमिंटन खिलाड़ियों ने जिला बैडमिंटन संघ के सचिव जावेद खान के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय से मुलाकात की। कलेक्टर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस भी हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले के 224 गांवों और शहरी क्षेत्रों के 36,000 से अधिक हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स के लिए 969 करोड़ और माचा गोरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के लिए 937 करोड़ रूपये की स्वीकृति भी जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। पालुन्ना जिले के ग्राम भीमखेड़ी में नवांकुर सखी हरियाली यात्रा के दौरान महिलाओं ने पौधों की बच्चों की तरह देखभाल करने का संकल्प लिया। इस अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया गया। वहीं शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में भी युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर जीवी ब्रह्मने ने सौर और पवन ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी, छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख था राकेश प्रजापति का, वाचन स्वर थे दीपा सिंह के। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
1: मीडियम वेव 465.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

एमएच हॉटलाइन के सभी श्रोताओं को वंदना तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं लेकर हम आपका पसंदीदा प्रोग्राम, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं और सुन सकते हैं

0: 1800-220-224। हमारे वो श्रोता जो इंदौर शहर के बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं, कृपया एसटीडी कोड लगाना न भूलें। इंदौर शहर का एसटीडी कोड नोट कीजिए, एसटीडी कोड है 0731-0731, ये एसटीडी कोड है। तो ये एसटीडी कोड लगाकर आप हमें कॉल करें अगर आप इंदौर के बाहर से कॉल करते हैं। तो आइए हम देखें कि हमारे पास ये जो पहला कॉल आया है ये किसका है। हेलो MH हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं अनिल भंडारा सुजामनगर से बोल रहा हूँ।
0: अनिल जी, सबसे पहले तो जो आपके पास रेडियो रखा है उसे थोड़ा सा दूर हो जाइए।
1: हाँ, बात दूर हट गया।
0: अच्छा बताएं अनिल जी, कैसे हैं आप?
1: अब आप कैसे? हम तो अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुन के आनंद लेते हैं पुराने गीतों का।
0: जी जी जी, हम भी ठीक है।
1: शौकीन आपको याद होगा।
0: जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, नियमित श्रोता हैं हमारे, हमें याद है। अच्छा बताएं, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: 1948 के पुरानी फिल्म में जिसे किशोर निर्माता निर्देशक किशोर साहू की याद में और गाना सुन जाएंगे। फिल्म का नाम है मयूर पंख।
0: मयूर पंख।
1: अच्छा, का गाना है, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है,
0: जनेंद्र
1: का गीत है।
0: जी कौन सा गीत है?
1: खुशियों के चांद मुस्कुराए रे, देखो मस्त जवानी आई रे, रे।
0: जी जी जी, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। जी

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो दीदी, ये
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो
1: प्यार भरा नमस्कार दीदी,
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जवरडी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम राय बोले बोल रहा हूँ दीदी।
0: गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बहुत मजे में दीदी, आप कैसे हो?
0: जी, हम भी ठीक हैं। क्या करते हैं आप गौतम जी?
1: खेती किसानी करते हैं दीदी, हम 15 दिन हो गए बारिश नहीं हमारे यहाँ।
0: अच्छा,
1: हाँ तो अब तो बारिश की संभावना
0: मत कहिए, मत कहिए, ऐसा मत कहिए कि नहीं है, ऐसा मत कहिए। होगी
1: नहीं,
0: होगी।
1: अभी आसमान में बादल से छाए हुए हैं, अभी बारिश की भरोसा है दीदी।
0: जी हाँ, बादल तो छाए हैं यहाँ पर भी, लेकिन बस बरस नहीं रहे हैं। अच्छा गौतम जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज तो दो खिलाड़ी फिल्म का गाना है मोहम्मद रफी की आवाज में, झूमता सावन आया बरखा ने प्यार बरसाया। ये गीत हम हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के सभी साथियों के लिए डील करता हूँ, और खास करके आप भी सुने दीदी ये गाना।
0: जी हाँ, हम तो सुनेंगे ही, आपके साथ क्यों नहीं सुनेंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये गाना सुन के ही सही, कम से कम सावन में बारिश तो हो अच्छे से, है ना?
1: जी,
0: चलिए ठीक है, लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: जी, धन्यवाद
0: जी।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ, एमएच हॉटलाइन।
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: गणेश भाटी, बागली, जिला देवास से।
0: अच्छा गणेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया।
0: और क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं या कहीं कुछ जॉब वगैरह करते हैं?
1: नहीं, मैं घर पे रहता हूँ, दिखता नहीं है मेरे को, देख नहीं सकता, घर पे ही रहता हूँ।
0: अच्छा, तो गणेश जी किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं आप? मतलब
1: पुराने
0: नए
1: सुनते हैं ज़्यादा
0: पुराने?
1: तो, नए नहीं, पुराने सुनते हैं।
0: पुराने गाने सुनते हैं। और रेडियो कब से सुन रहे हैं आप हमारा?
1: रेडियो सन 83-84 से, बचपन
0: अच्छा,
1: से।
0: मतलब एक लंबा अरसा हो गया है ना रेडियो सुनते
1: हाँ,
0: हुए।
1: लंबा।
0: ठीक है, तो गणेश जी ये तो बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: ये गुरु फिल्म का
0: अच्छा, कौन सा?
1: बरसो रे बरसो, मेघा में बरसो।
0: क्या बात है, अभी जस्ट पहले जो गाना बज रहा था वो भी इसीलिए था, बारिश को लेके, और आपकी भी चॉइस यही है।
1: हाँ, तो बारिश हो नहीं रही है अभी।
0: हाँ, तो कम से कम हो सकता है गाने सुन के ही भगवान इंद्रदेव को दया आ जाए और बारिश हो जाए,
1: हाँ
0: नहीं? तो ठीक है गणेश जी, अच्छा लगा आपसे बात करके हमें। आइए सुनिए आपकी पसंद का गीत।
1: हाँ धन्यवाद।
0: जी,

0: हेलो, MH हॉटलाइन।
1: जी मैडम।
0: जी कौन बोल रहे हैं?
1: जी अमित खातरकर, सायनी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश।
0: जी अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप अमित जी?
1: ठीक है मैडम जी।
0: ठीक है, क्या करते हैं?
1: जी काम कंपनी में काम करते हैं।
0: अच्छा, तो आज आप गए नहीं या वहीं से बात कर रहे हैं?
1: थोड़ा ठीक नहीं लगा, स्वास्थ्य है।
0: अच्छा, अभी चल ही रहा है ना वायरल का हर जगह, मतलब बच्चे बड़े सभी बीमार हैं।
1: जी जी, थोड़ा थकान टाइप लगा तो मैं छुट्टी कर ली।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: ओके। तो मतलब घर पे रेस्ट भी हो रहा है और रेडियो भी सुना जा रहा है?
1: हाँ नहीं मैडम, ये ऐप है ना जो उस पर गीत सुनते हैं हम, तो ऑनलाइन वाले जो ऐप है।
0: अच्छा, न्यूज ऑन एआईआर ऐप।
1: जी जी जी, इस पे गीत सुनते हैं।
0: अच्छा, तो आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ गीत सुनेंगे मैडम, हमराही फिल्म।
0: अच्छा, हमराही का कौन सा?
1: हमराही का गीत है करके जिसका इंतजार, मेरा दिल गया हार।
0: अच्छा ठीक है।
1: मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी की गीत में आवाज में गीत है, युगल गीत है।
0: जी हाँ, ये शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत है, ये बड़ा प्यारा गीत है ये।
1: जी जी।
0: अच्छा, दवा वगैरह लिया आपने?
1: हाँ मैडम लिया ना।
0: ले ली, ठीक है, चलो अच्छी बात है। दवा ले ली है तो जल्दी आप ठीक भी हो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं।
1: जी जी, धन्यवाद।
0: और ये गाना सुनिए और थोड़ा सा और आनंद लीजिए ताकि आप जल्दी ठीक हो सकें।
1: जी।

0: हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी, नमस्कार बहन जी।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा बहन
0: जी। मांगीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बहन जी, फिल्म का नाम है सांझ और सवेरा।
0: जी, सांझ और सवेरे का कौन सा गीत?
1: अजब गुना आए बाल मां, सावन बीता जाए।
0: ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। जी लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन, हेलो हेलो एम एच हॉटलाइन,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम
0: वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं?
1: जी। मैं श्रीपाल गोयल, दिल्ली से। ठीक
0: श्रीपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं
1: है मैम, आप बताइए कैसे हो।
0: जी? मैं भी एकदम
1: मैम आप
0: ठीक
1: काफी
0: हूँ।
1: दिन बाद आए हो।
0: ऐसा है कि एफएम पर भी कुछ काम रहता है, तो फिर वहाँ भी काम करना होता है, और कभी वहाँ कभी यहाँ, फिर कुछ बीच में अवकाश भी था तो उस कारण आ नहीं
1: ओके
0: पाई।
1: मैम,
0: आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: मैम ठीक है। बस काम पे जा रहे, ड्यूटी पे। आप
0: अच्छा
1: रेस्टोरेंट से
0: अच्छा
1: उतरे थे और कॉल ट्राई कर कॉल मिलने थे।
0: जी। तो अभी आप अपने ऑफिस नहीं पहुँचे?
1: नहीं मैम, बस मैं ट्रेन से उतर रहे हैं।
0: ओके, तो ट्रेन से उतरे हैं और बीच में रेडियो सुन रहे हैं।
1: सुनते भी आ रहे हैं तो ट्रेन में कॉल नहीं किया ना, तो ट्रेन में
0: अच्छा
1: जो नेटवर्क जाता आता रहता है, बस कॉल करने ऑर्डर था।
0: ओके अच्छा, जल्दी से बताइए गाना कौन सा है, वरना बात करते रहेंगे तो आप लेट हो जाएंगे। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: मैम गाना है तेरे प्यार के तमन्ना मूवी का वायर।
0: जी? महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में है ना?
1: जी मैम,
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। लीजिए, सुनिए
1: धन्यवाद।
0: जी।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से।
0: जी गुप्ता जी, स्वागत है आपका। आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: नई रोशनी का सुना दूँ, मैं गुनाहगार हूँ जो चिंता है सजा दे।
0: जी हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। अच्छा गुप्ता जी, आपने लास्ट टाइम कॉल कब किया था?
1: लास्ट टाइम 10-12 दिन हो गए।
0: अच्छा, तो हमारे वो श्रोता जो फ्रिक्वेंटली कॉल करते हैं हमें, गुप्ता जी
1: को फोन किया था आज लगेगा।
0: जी तो गुप्ता जी के साथ साथ मैं अपने उन सभी श्रोताओं से एक आग्रह करना चाहती हूँ कि जो फ्रिक्वेंटली कॉल करते हैं हमें इस प्रोग्राम में, तो उनसे निवेदन है कि कृपया कुछ दिनों का आप एक गैप लें ताकि जो श्रोता
1: रोज होता प्रोग्राम जो मेहनत करेगा वो पाएगा।
0: गुप्ता जी एक निवेदन कर रही हूँ मैं आपसे, कृपया आप भी सुने और हमारे अन्य श्रोताओं को भी सुनने दें। मैं निवेदन कर रही हूँ कि वो श्रोता जो फ्रिक्वेंटली कॉल करते हैं इस कार्यक्रम में,
1: 10-15 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए।
0: जी गुप्ता जी, मैंने सुन लिया कि आपने 10-12 दिन पहले कॉल किया था। अब मैं जो कह रही हूँ कृपया वो भी सुनिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो श्रोता नियमित रूप से कॉल करते हैं
1: आपका आग्रह स्वीकार है।
0: ठीक है गुप्ता जी, हम आपके कॉल पे आपका जो पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं। श्रोताओं, आपसे आग्रह है कि जो श्रोता हमें बार बार फ्रिक्वेंटली कॉल करते हैं और नियमित रूप से कॉल करते हैं, तो उनसे निवेदन है कि कृपया कुछ दिनों के लिए कम से कम 15 से 20 दिन तक हमें कॉल ना करें, ताकि वो श्रोता जो कॉल करना चाहते हैं, जिनका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता, एटलीस्ट एक बार तो उनका फ़ोन हमसे मिल जाए, है ना। तो जो रोज डेली हमें फ़ोन करते हैं, कृपया अपनी स्वयं की जिम्मेदारी को समझ के थोड़ा सा एक गैप लें, ताकि नए श्रोता भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकें और उन्हें भी वो खुशी मिले जो आपको मिलती है अपनी पसंद का गाना सुनने पर और कॉल लगने पर। तो अभी गुप्ता जी से हमारी बात हो रही थी जो कोटा राजस्थान से थे, और उनकी पसंद का गाना था ये, नई रोशनी फिल्म का गाना था, और ये गाना हम सुनवाते हैं। आशा करते हैं गुप्ता जी और हमारे बाकी के श्रोता इसे सुनेंगे। लीजिए सुनिए।

0: हेलो, MH हॉटलाइन।
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील।

0: जिला विदिशा मध्य प्रदेश एमपी से।
1: जी मोहम्मद हारून जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
0: जी और हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हो?
1: जी मैं भी ठीक हूँ। आप क्या करते हैं हारून जी?
0: खेती बाड़ी करते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, मौसम कैसा है आपके इधर? बारिश हो रही है कि नहीं हो रही?
1: बस बादल छाए हैं जैसा कि आमतौर पर करीब करीब सभी जगह हो रहा है कि बादल छाए हैं, बारिश का नामो निशान नहीं है।
0: जी जी, ऐसे ही हमारे इधर हो रहा है, 5-6 रोज हो गए बारिश नहीं हो पा। 15 अगस्त में गिरा था, अच्छा झमाझम बारिश हुई।
1: अच्छा अच्छा
0: जी,
1: यानी कि देश की आजादी का जश्न भगवान ने भी मनाया।
0: जी जी साथ रहे, जी जी।
1: अच्छा ठीक है हारून जी, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: ये दिल आशिक गाना का सुना देना आप।
1: कौन सा गाना?
0: हाँ, उसमें से कोई सा भी मिल जाए, टाइटल सॉन्ग सुना देना, चाहे वो उठा ले जाऊंगा मैं तुझे डोली में, जो सुना देना आप गाना।
1: ठीक है जी, हम आपको आपकी पसंद का यही वाला गाना सुनवाते हैं।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।

0: हेलो, MH हॉटलाइन।
1: हेलो
0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, एमएच हॉटलाइन
0: जी, MH हॉटलाइन से बात कर रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मोहम्मद यूनुस खत्री बोल रहा हूँ, छिपा कॉलोनी खंडवा से। वंदना
0: खत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: दीदी को कुरकुलुस आदाब।
0: हमारी ओर से भी आपको आदाब, नमस्ते
1: जी, नमस्ते, कैसे हैं? वाह,
0: जी। मैं एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: आनंद मंगल कुशल पूर्वक, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
0: अच्छा,
1: अभी बस दुकान खोली है और बस इनका, चलो ठीक है, प्रोग्राम सुनते सुनते एकदम याद आ गया। चलो तो
0: और
1: क्या,
0: अच्छा, और गीत कौन से सुनना
1: आज
0: चाहते
1: के
0: हैं?
1: आज के आज के गीत भी अच्छे बज रहे हैं। आज
0: देखिए, ये तो
1: आज का
0: श्रोताओं की
1: प्रोग्राम भी
0: पसंद है,
1: अच्छा चल रहा है जी,
0: श्रोताओं की पसंद है। अच्छी पसंद है तो फिर अच्छे
1: पेशकश
0: लगेगा प्रोग्राम, है ना?
1: भी अच्छी होनी चाहिए ना, तो
0: जी, आप
1: ये नहीं रहता
0: बताएं।
1: पेशकश से। हाँ जी, मुझे फिल्म अनोखी अदा
0: अनोखी अदा का कौन सा गाना सुनना है?
1: का हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया।
0: जी, बस खत्री जी, मौसम ही सुहाना है, बस बरसता नहीं है मौसम।
1: गरज भी नहीं रहा ना, बरस भी नहीं रहा, दोनों
0: बस
1: ही चीज
0: छाया हुआ
1: है।
0: है। हाँ,
1: छाया हुआ तो रोज रह रहा है, अभी मौसम ऐसा बना हुआ है, उस हिसाब से मैंने क्या हो सकता है भाई, क्या मौसम में तब्दीली हो जाए तो हाल क्या है दिलों का,
0: बस यही
1: ये
0: लगता
1: सुन
0: रहता है
1: लो।
0: कि बस यही लगता है कि बस अब बरसा कि तब बरसा, बस बरसता नहीं बादल।
1: और गरज भी नहीं रहा ना, बरस भी नहीं रहा।
0: जी। अच्छा ठीक है, चलिए सुनाती हूँ आपको आपकी पसंद का गाना। लीजिए, सुनिए
1: जी जी जी जी
0: जी।

0: हेलो, MH हॉटलाइन।
1: जी नमस्ते,
0: जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: अच्छा सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: अच्छा,
1: जी
0: क्या करते हैं आप
1: कैसे
0: प्रेम
1: हैं
0: जी?
1: आप? मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: अच्छा, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: जी
0: तो
1: और मुझे आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है। आपका अंदाज बड़ा अच्छा है बात करने का। सभी श्रोता से अच्छी बातें कर रहे हैं आप।
0: शुक्रिया।
1: जी
0: अच्छा, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी ढाई अक्षर प्रेम के। हाँ,
0: अच्छा, तो प्रेम जी को ढाई अक्षर प्रेम की फिल्म का गाना सुनना है। अच्छा,
1: और गाने के बोले मेरा माही बड़ा सोना है, और सच में मेरा माही बड़ा सोना है।
0: तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात
1: जी
0: है। आशा करते हैं कि आप जिनके लिए बात कह रहे हैं वो सुन रही होंगी।
1: जी बिल्कुल, सुन रहे हैं, वो भी कार्यक्रम सुनते हैं और खोल पार्टिसिपेट भी करते हैं।
0: अच्छा, चलिए, अच्छी बात है कि
1: जी
0: आप दोनों प्रोग्राम को सुनते हैं और सराहते भी हैं इस प्रोग्राम को।
1: जी
0: तो
1: मोबाइल ऐप के आने की वजह से मैं मतलब आपको बताऊं, हमें बहुत सारे राज्य के कार्यक्रम, मतलब हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिल जाते हैं।
0: जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। न्यूज़ ऑन AIR ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से आप पूरे देश के किसी भी रेडियो स्टेशन को बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं। चाहे आप घर में हों या बाहर हों, कहीं भी हों, आप रेडियो सुन
1: हाँ, कहीं
0: सकते
1: पर भी
0: हैं।
1: सुन सकते हैं और साथ में प्रसारण भी स्पष्ट मिलता है।
0: जी, ठीक कहा आपने।
1: जी
0: तो आपकी पसंद का गीत सुनवाए आपको,
1: जी बिल्कुल,
0: लीजिए सुनिए।
1: थैंक यू सो मच।

0: हेलो, MH हॉटलाइन।
1: नमस्कार सर जी।
0: जी नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
1: अनोखी सिंह
0: जी। अनोखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप कैसे हैं अनोखी जी?
1: नॉर्मली सर जी। जय राम जी की।
0: जय राम जी की। अच्छा ये बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, आज हमारे नगर बाग से
0: जी
1: लंचोर मंदिर से बड़केसर की पद यात्रा हमारे अखिलेश सेठ द्वारा निकाली जाती है हर साल।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मतलब इसी उपलक्ष्य में आप ये गाना सुन रहे हैं?
1: हाँ सर जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: एक ही बात है
0: जी,
1: शिव जी और राम जी एक ही बात है सर जी।
0: जी सब एक ही बात है, सब सब ईश्वर एक ही है।
1: हाँ। तो शिव जी की भी यात्रा निकल रही है
0: जी। अच्छा, तो चलिए ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ही गाना। लीजिए सुनिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो।
0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार मैम,
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं तहसील बहादुरपुर, जिला अशोकनगर, एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा सूर्य प्रताप जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
0: जी मैं भी एकदम ठीक हूँ। और बताइए कैसा है मौसम आपके यहाँ?
1: मौसम तो धूप निकली है।
0: धूप निकली है। चलो कम से कम गनीमत है, हमारे यहाँ धूप नहीं है, बादल छाए हैं।
1: हाँ, मतलब कभी कभी रिमझिम बारिश हो जाती है, फिर धूप निकल आती है।
0: अच्छा, तो सूर्य प्रताप जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: दिल तेरा आशिक मूवी का टाइटल सॉन्ग।
0: अच्छा, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब जो बीच के गाने हैं, 90s के, 80s के, ऐसे गाने पसंद करते हैं आप, चाहे बिल्कुल लेटेस्ट नए वाले या पुराने वाले?
1: हाँ, 90 के दशक के गाने भी सुनते हैं और पुराने, हाँ नए भी सुनते हैं।
0: अच्छा नए भी सुनते हैं। ओके तो ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी, धन्यवाद।
0: जी

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही MH हॉटलाइन प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी इस रेडियो दोस्त वंदना तिवारी को। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से रिले किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: श्रोताओं नमस्कार, हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो संगनी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय है बच्चों में अच्छा इंसान बनने के व्यक्तित्व की नींव कैसे पड़ेगी, इसके लिए हमें क्या प्रयास करना है। तो डायल कीजिए 2660902 और STD कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें आपके फोन्स का है इंतज़ार और कीजिए हमसे ढेर सारी बातें और सुनिए हमारी पसंद के चंद गीत। हेलो।
3: हाँ मैडम नमस्ते।
2: नमस्ते जी, स्वागत है आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में।
3: जी मैं सहमत, सहमत पहले भी बात हुई है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, सहमत जी। कैसे हैं आप
3: जी? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी और आपके साथ साथ आकाशवाणी परिवार और हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे होंगे।
2: जी हाँ, वाकई बहुत अच्छे हैं और आप सभी का स्नेह आकाशवाणी परिवार पर यूं ही बना रहे यही उम्मीद करते हैं। समर सिंह जी, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो ये है कि बच्चों में अच्छे इंसान बनने की व्यक्तित्व की नींव हमें कैसे डालनी है, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए।
3: सबसे पहली चीज तो ये बात परिवार से शुरू होती है। कि परिवार में हम मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं मेरे दो बच्चे हैं खुद के जो अभी 28 माह पूरे कर चुके हैं। तो अब हम अपनी खुद की जो लालन पालन करने की जो प्रणाली है उसको हम कैसे लेके चलते हैं, हम अपने बच्चों को इतने समय में क्या किस तरह से उनकी पालन पोषण की जो व्यवस्था है उनमें हम जैसे अब मोबाइल आजकल बड़ा चलन में आ गया है।
2: बिल्कुल हाँ।
3: तो हम उस मोबाइल में उनको क्या दिखा रहे हैं, फिर हम अपने बच्चों के साथ में हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें कैसे अब कई बार होता है ना कि बच्चा शुरू से जिद्दी होता है। तो हम उसकी हर डिमांड को पूरा कर रहे हैं और डिमांड को पूरा करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं।
2: बिल्कुल सही बात है। कई बार होता है हम काम में बिजी होते हैं और परेशान होकर उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं या उनकी जिद पूरी कर देते हैं।
3: बच्चा क्या चला रहा है क्या नहीं।
2: बिल्कुल सही बात है हाँ।
3: और फिर हम देखते हैं कि बच्चा अपनी मनमानी कर रहा है और अगर हम उसे रोक रहे हैं तो वो फिर उससे कहीं ना कहीं चिढ़ रहा है, जिद कर रहा है और फिर हम उसकी खुशी के लिए वही कर रहे हैं जो वो चाहता है।
2: बिल्कुल सही बात है।
3: बहुत सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें ये तय करना चाहिए कि हम उसको, क्योंकि वो मोबाइल लंबे समय तक उसके हाथ में होता है तो वो क्या देख रहा है, वो क्या चला रहा है। फिर
2: जी जी बिल्कुल सही।
3: अपने जो बच्चे हैं उनके साथ में खुद किस तरह से पेश आ रहे हैं।
2: बिल्कुल।
3: हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बच्चे को लेकिन इस तरह से भी नहीं कि वो एकदम टूट जाए और वो फिर पता चल रहा है कि वो और
2: जब भी बच्चा किसी परेशानी में यदि हमें लगे तो उससे हमें सवाल पूछने की बजाय उसे सपोर्ट करना, उसको सहानुभूति जगाएं तो निश्चित रूप से शायद हम अच्छे व्यक्तित्व की नींव अपने बच्चों में डाल सकते हैं।
3: और ये एक उम्र होती है कि
2: बिल्कुल
3: आप जैसी छवि बनाएंगे जैसा
2: वैसा बनता जाएगा,
3: है ना।
2: चलिए धन्यवाद समर सिंह जी, हमारे दूसरे श्रोता भी लाइन में लगे हैं और इसलिए आपसे हम माफी चाहते हैं, इतनी ही बात कर पाएंगे आज आपसे। नमस्ते।
3: क्या बात है, विषय था वो तो पूरा हो ही गया ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए नमस्ते कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार,
0: नमस्ते जी।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: अच्छा राकेश जी, आपसे शायद पहले भी बात हो चुकी है।
1: जी, और मेरी बात हुई थी 7 अगस्त को, अब है 21 अगस्त।
0: चलिए कोई
1: तो
0: बात नहीं, आपने हमारे पूछने के पहले ही क्लियर कर दिया कि एक हफ्ते के बाद बात कर रहे हैं आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राकेश जी, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो आप जानते ही हैं, बात आपकी गीत हमारे। तो आज हमने जो विषय रखा है वो ये रखा है कि बच्चों में अच्छे इंसान बनने के व्यक्तित्व की नींव कैसे डालनी चाहिए।
1: जी। तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बच्चे 3-4 साल के हो जाते हैं, तो बच्चों को हमें अच्छी चीजें सिखानी है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम बच्चों को ये चीज सिखाते कि इनको ऐसा बोलो। कई बार बच्चे बचपन में जवाब दे देते हैं कि जैसे मम्मी को गाली दी, पापा को गाली दी। लेकिन हमें बचपन में तो सुनना अच्छा लगता था कि क्या क्या था बोलता है, कितना तोतला बोलता है, कितनी प्यारी आवाज में बोलता है। लेकिन ये आदत हम बच्चों में डालेंगे तो ये बड़े तक जो है बच्चे ये सीख जाए, और बड़ा होके जो है बच्चा अपने बड़ों को जो है जवाब सवाल कर सकता है, और ऐसे ऐसे शब्द बोलता है जो बुरा लगता है। तो
0: बिल्कुल सही
1: हमें
0: बात
1: ये बच्चों की मासूमियत पर ये हम ये नहीं सोचते कि बच्चों के बच्चा कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा बोलता, कि फिर हम बच्चों को बढ़ा देते। बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, सबसे पहले तो बच्चों को पैर छूने की आदत बचपन से डालना चाहिए, ताकि बड़े होकर जो उनकी आदत बनी रहे।
0: बिल्कुल सही
1: बड़ों को
0: बात कह
1: किस
0: रहे
1: तरह
0: हैं।
1: से
0: और
1: नमस्कार करना, नमस्ते
0: बिल्कुल
1: करना है, और बड़ों को किस तरह से इज्जत करना है, ये बचपन में सिखाना चाहिए। क्योंकि
0: और
1: हम
0: बचपन से ही यदि हम बच्चों को धन्यवाद कहने का मतलब समझा दें और उन्हें दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की आदत डाल दें, तो शायद काफी हद तक हम अपने बच्चों में अच्छे व्यक्तित्व की नींव डाल सकते हैं, है
1: इस
0: ना।
1: बारे में मैं और भी जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन तो हम कुछ सीखता नहीं। जब बड़े बच्चे हो, थोड़े बड़े होते, फिर बच्चों को डांटते हैं, भाई आपके सामने कोई आया था मस्ती क्यों नहीं की, आपके सामने कोई आया था
0: बिल्कुल
1: तो बात
0: सही
1: क्यों नहीं
0: बात
1: किया।
0: है,
1: तो बाद में नहीं कर सकते
0: बाद
1: क्या,
0: में
1: तो
0: नहीं कर
1: बचपन में।
0: सकते। जितना हम अगर बचपन में ही ये सब अच्छी आदतें डाल देंगे तो उनका असर हमें बाद में ही
1: बाद में
0: दिखाई
1: ही
0: देगा,
1: मिलेगा। जी,
0: है ना।
1: जैसे
0: जैसे यदि
1: कि
0: हमने बचपन में उनके लाड़ प्यार रखा तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बड़े होकर वो अच्छे निकलेंगे। वो कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो फिर
1: और आम कहाँ
0: आम
1: से
0: कहाँ
1: निकले।
0: से हुए। तो यही वाली
1: बिल्कुल
0: बात है और यही बच्चों की परवरिश में हमें इन बातों का ध्यान रखना है।
1: ध्यान
0: चलिए
1: रखना।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: अरे नमस्कार जी, ये मान के चलिए कि रिकॉर्डिंग होने के बाद मैडम जी जब कार्यक्रम नहीं आता तो बड़ी उदासी छा जाती है, उदासी के बादल छा जाते हैं, रोना आ जाता है।
0: नहीं, अब आपको रोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और चांद भाई, आपका कार्यक्रम कल आप ज़रूर सुन सकेंगे।
1: अरे कमाल हो गया मैडम जी, आपने हमारा नाम पहचान लिया। अभी तो हमने नहीं पूछा है आपका नाम, पर चूंकि पूछ लेंगे, अभी एक लाइन बोल दें आपके लिए तभी तो मजा आएगा।
0: बोलिए।
1: कहते हैं जान है तो जहान है, जान है तो जहान है और ईमान है तो महान है,
0: बिल्कुल।
1: वही सच्चे इंसान की पहचान है मैडम जी।
0: तो मतलब
1: हाँ
0: इतने दिनों से बात नहीं हुई तो आप हमें आवाज से नहीं पहचान पाए।
1: अरे वो नीतिका वर्मा हो सकती हैं और या कि कविता रावत हो सकती हैं या सुनीता सिंह, क्योंकि डबल रोल आपकी आवाज है, एकदम मिलती जुलती।
0: अच्छा, तो हम कविता बोल रहे हैं।
1: अरे धन्यवाद। तो आप हालांकि मैंने जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कर ही दी
0: बिल्कुल
1: है मैडम जी, और नाम बता दिया
0: बिल्कुल
1: तो आप उसकी लिस्ट में आ गई
0: बिल्कुल। चलिए
1: क्रोशिका।
0: कोई बात नहीं। अच्छा चांद भाई, आज हम जिस विषय पे बात करना चाहते हैं वो
1: जी
0: विषय है कि बच्चों में अच्छे इंसान बनने की, व्यक्तित्व की नींव हमें कैसे

0: डालनी चाहिए।
1: अब अच्छे बच्चों की जो नींव होती है मैडम जी, आपसे बताएं तो अब जैसे हम अपने बच्चों को शुरुआत से ही जिस प्रकार की लाइन में ले जाएंगे तो वही जो है उनके लिए सही मार्गदर्शन होगा। हम बच्चों को सबसे पहले उन्हें जो है अच्छी परवरिश देंगे, स्कूल जाने की शिक्षा देंगे और उन्हें बताएंगे कि किसी से लड़ना ना चाहिए, किसी का सामान नहीं छूना चाहिए और किसी से कोई चीज मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर हम उन्हें किसी चीज के लिए कह देते हैं कि ले उन्हें 5-10 रुपए दे देते हैं, क्योंकि बच्चे जो है कहते हैं खाए मीठ के माए, उन्हें थोड़ा सा लालच देना बहुत जरूरी रहता है तब वो स्कूल जाते हैं।
0: बिल्कुल नहीं, लेकिन लालच के साथ साथ यदि हम उन्हें ये साझा करने की जो भावना है वो भी जगाएं उनके अंदर कि भाई आपको हमने ये बिस्किट का पैकेट दिया है लेकिन ये आपको अकेले नहीं खाना है, अपने सहपाठियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर खाना है, तो वो बांटने की आदत जब उनके अंदर बचपन से आ जाएगी तो वो एक अच्छे इंसान के रूप में बढ़ेंगे।
1: दीदी जी सही है। और क्या है कि जब हमारे बच्चे हम लोगों को, हम लोग अच्छी सलाह अगर उन्हें देंगे तो वो उन्हें अच्छे दोस्त भी मिलेंगे। ये
0: बिल्कुल सही बात
1: है। और अच्छे दोस्त जब मिलेंगे तो सही सलामत आगे बढ़ने के लिए उन्हें शिक्षा मिलेगी। और अगर हम बच्चों को अच्छी सलाह शिक्षा नहीं देंगे तो वो बिगड़ते चले जाएंगे। इसलिए जो है
0: जी,
1: ये हम माँ बाप के ऊपर पूरा दारोमदार
0: पूरा है, पूरा अगर पूरा कहें तो। जी धन्यवाद। और आप पूछना चाहूंगी, जगह मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, अब ये मान के चलिए कि बात करते करते जो है हमने अपना पता बताना भी भूल गए और चूंकि काफी लंबे अंतराल के बाद महीनों पूछ गए हैं मैडम जी, तो थोड़ा सा पता तो बता ही दे, क्योंकि आप तो जानती हैं कि मैं
0: वही
1: हिंदुस्तानी कलाकार यूट्यूब ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान,
0: बिल्कुल चलिए
1: मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ। बहुत लंबा
0: बिल्कुल बड़ा बढ़िया बढ़िया। तो कल अपने प्रोग्राम में अपनी बातचीत सुनिएगा चांद भाई, और अब अनुमति दीजिए, अगले श्रोता हमारा इंतजार कर रहे हैं।
1: जी जी, क्योंकि अगले श्रोता भी लाइन में लगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते
1: नमस्कार।
2: बचपन

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते। तो
0: नमस्ते।
1: मैं देवास से बोल रहा हूँ, मुस्तफा हुसैन बोल रहा हूँ। देवास
0: आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी,
1: से बोल रहा हूँ, मुस्तफा हुसैन बोल रहा हूँ।
0: आवाज अभी भी नहीं आई। अच्छा,
1: मैं देवास से बोल रहा हूँ, मुस्तफा हुसैन बोल रहा हूँ।
0: मुस्तफा हुसैन देवास से। मुस्तफा जी क्या करते हैं आप?
1: मेरा अलंका मार्केट में मेडिकल स्टोर है। मेरे
0: अरे वाह।
1: पापा इन्वॉल्व हैं, मेरे पापा जो शॉप के प्रोप्रेटर हैं, और मैं फार्मासिस्ट।
0: अच्छा, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है क्या? आपके यहाँ इधर नेटवर्क की इश्यूज आ रहे हैं।
1: नहीं मैम, मैं तो बाहर ही हूँ।
0: अच्छा, आप क्लियर आई आपकी आवाज। तो मुस्तफा जी, आज हम विषय पे बात करेंगे कि है ना, बच्चों में अच्छे इंसान के व्यक्तित्व की नींव कैसे डालनी चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को या घर के बाकी
1: मैम
0: मेंबर्स को।
1: पहले तो बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, क्योंकि संस्कार से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अगर संस्कार अच्छे होते हैं तो बच्चे की हर जगह पहचान होती है, हर जगह उसकी कीर्ति होती है कि कितना अच्छा बच्चा है, कितने अच्छी बातचीत करता है, उसका रहन सहन, उसका बोलने का तरीका, उसके खान पान का तरीका, सब चीज उसके संस्कार से पता चलती है मैम।
0: बिल्कुल सही बात है। तो संस्कार देने की जो प्रयास है, संस्कार देने के जो प्रयास हैं वो किस
1: जी
0: प्रकार होना चाहिए, हमें क्या
1: देखिए,
0: क्या
1: बच्चों
0: मतलब
1: को
0: कोशिश करनी चाहिए।
1: क्वेश्चन ये है कि हम घर से बच्चों को ही अपने घर से अपने घर से अपने बच्चों को अच्छी चीज सिखाए, कि तुम्हें रहना चाहिए, जो खास करके जो घर के बुजुर्ग बड़े उन्हें सिखाना चाहिए कैसे क्या रहना चाहिए।
0: चलिए, धन्यवाद मुस्तफा जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कल के
1: जी
0: प्रोग्राम में
1: आपका
0: आप
1: गुड
0: अपना
1: डे,
0: कार्यक्रम
1: आपका गुड डे। थैंक
0: है। कविता रावत
1: यू।
0: जी, नमस्ते।
1: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते। बात
1: नमस्ते।
0: आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका स्वागत है।
1: बात करें कौन से कार्यक्रम में बहन जी?
0: बात आपकी गीत हमारे।
1: अच्छा, ये विषय से अंतर्गत होता है। जय
0: हाँ जी।
1: माँ भोराज रेडियो श्रोता संघ सरकनपुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से संतोष कुमार साहू बात कर रहे हैं।
0: टीकमगढ़ से।
1: जी हाँ, हमारा जो महामना चलती है उसमें मतलब टीकमगढ़ के बाद तीसरा स्टेशन है,
0: अच्छा अच्छा
1: जिसका
0: अच्छा
1: मुंबई, मुंबई के बाद सरकनपुर,
0: अच्छा
1: सरकनपुर के बाद खरगापुर,
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: खरगापुर के बाद टीला रामपुर,
0: हाँ हाँ
1: रामपुर के बाद छतरपुर, ईटानगर
0: अच्छा
1: छतरपुर।
0: अच्छा अच्छा तो संतोष जी, आज जो विषय है ना हमारा, वो ये है कि बच्चों में अच्छे इंसान बनने की नींव कैसे डालती है।
1: बच्चों में अच्छी इंसान बनने की नींव कैसे डालते हैं, ये विषय बहुत ही अच्छा है जो कि मतलब आज के कार्यक्रम के अंतर्गत है। इससे मतलब काफी लोगों को लाभ मिलेगा, और इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो मतलब जो पहले गुरु तो मतलब माँ बाप होते हैं, और वो ही मतलब इसका काम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे गुरु मतलब जो स्कूल के टीचर
0: टीचर्स होते
1: होते
0: हैं।
1: हैं वो होते हैं। तो माँ बाप को सबसे पहले मतलब अपने बच्चों को ये शिक्षा देना चाहिए कि मतलब इनके मतलब कैसे गुरु के पैर छिए, मतलब किस प्रकार से चले, अनुशासन किस प्रकार से करना चाहिए, किस
0: ये बात
1: प्रकार से
0: आपने
1: चलना
0: बहुत सही बोली कि बच्चों को अनुशासन में रहने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। यदि
1: चाहिए।
0: समय पे सारे काम करने की उनकी आदत होगी तो बाद में उनको जीवन जीने में, जो जीवन में जितने संघर्ष आते हैं, उन सब का सामना करने में उन्हें आसानी होगी।
1: जी, और सबसे बड़ी बात ये भी है मैडम जी कि क्या होता है, आजकल का जो सिस्टम है वो इतना खराब हो चुका है कि इंसान सुबह 6 बजे की जगह 10, 11 बजे, 12 बजे उठता है।
0: कुछ लोग इसी प्रकार
1: मतलब
0: का करते हैं। तो ये आदतें हमें बचपन से ही अपने बच्चों में डालनी है कि टाइम से सोएं, टाइम से उठें और हर काम टाइम को ध्यान में रखते हुए करें, तो कभी उनको समय की कमी नहीं होगी और वो तरक्की करेंगे जीवन में, है ना। चलिए संतोष जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमारे दूसरे श्रोता भी सोच रहे होंगे कि उनसे भी बात हो जाए। ठीक है,
1: एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ।
0: हाँ जी बोलिए।
1: कमल का फूल तालाब में रहकर महान नजर आता है, और कबीर दास जी की मधुर वाणी में भगवान नजर आता है।
0: अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद संतोष जी।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: भैया।
0: हाँ जी,
1: हुआ
0: आवाज नहीं आ रही आपकी।
1: जी मैम, मैं ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रही हूँ।
0: संगीता पटेल जी, ऐसा लग रहा है 2 दिन पहले भी आपसे बात हुई थी।
1: नहीं मैम, मेरा तो लगा ही नहीं, मेरा तो कम से कम 2-3 माह हो गए तब से
0: अच्छा
1: नहीं
0: अच्छा
1: लगी।
0: अच्छा तो मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, माफी चाहती हूँ। और संगीता
1: जी
0: जी
1: मैम,
0: कैसी हैं
1: क्या
0: आप? कैसी हैं?
1: हम तो ठीक है मैम, आप कैसी हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और मौसम कैसा है छतरपुर में?
1: छतरपुर में मौसम तो बारिश हो रही, सभी
0: अच्छी तेज हो रही है या फुहारे चल रही हैं?
1: तेज हो जाती है। इस टाइम तेज हो गई तो रात में फुहारे चल रहे हैं, ऐसे मतलब सुबह शाम चलती ही रहती है लगातार।
0: हाँ, ये बात सही है। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं?
1: बच्चे तो मेरे 5 है मैम। जी
0: 5 बच्चे?
1: उम्र
0: अरे, क्या उम्र है आपकी?
1: होगी वही 35 साल। जी
0: ओहो, 35 साल में 5 बच्चे, गजब कर दिया आपने तो।
1: मैम, 4 मणि
0: चलिए,
1: है और
0: कोई बात नहीं। तो ये
1: एक मोहरा
0: बताइए
1: है छोटा।
0: कि आप अपने बच्चों की जो परवरिश करती हैं, उसमें अच्छे इंसान बनने के जो नींव डाली जाती है, उसके लिए क्या प्रयास करती हैं, क्या कोशिश करती हैं, बताइए।
1: यही कहती मैम कि छोटे होते फिर बड़े होते तो पढ़ाना लिखाना चाहिए, और जो घर में अच्छी बोल चाल रखना चाहिए, और उन्हें अच्छा अच्छा सिखाना चाहिए कि किससे बात कैसी करना है।
0: तो आपके बच्चे संस्कारित हो रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों में, मतलब, हम संस्कार डाल पा रहे हैं अच्छे?
1: जी अभी तो प्रयास चालू है।
0: बिल्कुल, कोशिश जारी रखिए। और बच्चों को हमेशा दूसरों का आदर करने की आदत डालिए, प्रकृति और जानवरों से प्रेम करने की आदत डालिए जब बच्चों
1: जी
0: में।
1: मैम,
0: और सबसे बड़ी बात, अनुशासन जरूर रखिएगा कि सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, तो इस प्रकार
1: जी
0: उनको समय प्रबंधन की आदत हो जाएगी।
1: तो ट्यूशन भी जाती है ना 6 बजे, तो
0: हाँ
1: सुबह
0: संगीत,
1: जगाना पड़ता है, और शाम के भी कहती है कि शाम
0: हाँ
1: की जल्दी लेटो तो सुबह
0: जी जी
1: जल्दी नींद खुल जाएगी।
0: चलिए संगीता जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: जी मैम थैंक यू। और मेरी बात तो 3 माह से पहले हुई थी और अभी लगा है, और आपसे बात नहीं हो पाती तो मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन आज बात हो रही तो बहुत
0: अरे चलो,
1: अच्छी
0: एक
1: हो
0: हफ्ते
1: रही।
0: बाद फिर कोशिश करना, पक्का बात होगी। ठीक है संगीता?
1: जी
0: ओके,
1: मैम,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में।
1: जी जी मैम, जय हीरा मन वावा रेडियो सोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर एमपी से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा हूँ। कैसे
0: कैसे
1: हैं
0: हैं
1: मैम आप?
0: हम? अच्छे हैं, आप बताइए आपके क्या हाल है।
1: ईश्वर की कृपा और आपका आशीर्वाद एकदम आनंद मंगल है मैम।
0: बिल्कुल। और अशोक जी, हम पूछना चाहेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं?
1: जी मैम, हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है।
0: कितने बड़े बड़े हैं?
1: एक एक है अपने 10-11 साल के, 8 साल के, और एक 3 साल
0: अच्छा
1: की
0: अच्छा
1: मैम।
0: अच्छा तो आज जो हमारा विषय है अशोक जी, वो ये है, विनोद जी, क्षमा कीजिए विनोद जी। तो विनोद जी, आज जो विषय है कि अच्छे इंसान बनने की बच्चों में जो व्यक्तित्व की नींव है, उसे हम कैसे डालते हैं, उसके लिए क्या कोशिश करते हैं, हम लोगों की तरफ से क्या प्रयास होना चाहिए, तो कुछ उस पर रोशनी डालिए आप।
1: जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अपने बच्चे होते हैं ना, शुरू से ही, बचपन से ही, एक तो उनको माता पिताजी के अलावा बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना सिखाना चाहिए, और एकदम हमेशा सही बोलना चाहिए। क्योंकि बच्चों में जब शुरू से ही अपन अच्छे से शिक्षा संस्कार देंगे तो आगे चल के वो आगे बढ़ पाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहना है ये तो, क्योंकि बच्चों में संस्कार बचपन से ही यदि देना शुरू करेंगे, तभी जाकर वो अच्छे इंसान के रूप में बदलेंगे, है ना। बच्चे
1: जी
0: तो
1: मैम,
0: एक कोमल मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें हम जैसा आकार दे देंगे वो वैसे ही दिखेंगे।
1: जी,
0: तो चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा विनोद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: बच्चे

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्ते। मैं
1: जी, नमस्ते मैम। आप कौन?
0: कविता रावत, आप कौन?
1: जी मैम, मैं ग्राम बनेका तहसील बंदा जिला सागर से महेंद्र कुमार सेन बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी महेंद्र जी, एक हफ्ते के बाद बात कर रहे होंगे ना?
1: नहीं मैम, हम तो सेकंड टाइम लगा है लाइफ में
0: चलिए कोई बात नहीं। और महेंद्र जी, क्या करते हैं आप?
1: मैम। अपने मोबाइल

0: एक्सेसरीज का काम करते हैं ना।
1: अरे वाह, कहाँ
0: तो
1: पर है
0: बार
1: आपकी
0: इतना बार
1: शॉप?
0: ट्राई करते रहते हैं तो आज लग गया इत्तेफाक की बात,
1: चलिए बहुत अच्छी बात है।
0: वरना मेरी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी है कि आप और उनसे बात कर सकें।
1: अरे नहीं, देखिए किस्मत को कभी नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि कब चमक जाए कोई नहीं देख कर आया, और आज आपका दिन बहुत अच्छा है ना,
0: सच
1: लगा
0: में
1: ना
0: हम भी
1: कॉल।
0: खुश हैं
1: हम्म,
0: जी मैम, शॉप आई पे है मैम
1: शॉप पर ही है ना।
0: जी।
1: चलिए, तो भाई बोल रही थी महेंद्र जी कि जो आज हमारा विषय है उस पे हम बात करेंगे और सुनवाएंगे आपको पसंद का गीत, हमारी पसंद का। तो विषय
0: अच्छा,
1: हमारा
0: आपकी
1: है,
0: पसंद का?
1: हाँ आज हमारी पसंद का, कल अगर आप लगाएंगे ना, लेकिन अब आप एक
0: हाँ
1: हफ्ते बाद लगाइएगा, तो आपको फोन करें गीत सुनने में। ये प्रोग्राम है बात आपकी गीत हमारे, और इसमें
0: जी,
1: सिर्फ बात कोई बहुत अलग विषय नहीं होता है, जो हमारे रोजमर्रा में काम आने वाली बातें होती हैं ना,
0: हाँ
1: जरूरत की, उसी विषय पे बात करते हैं। तो आज का
0: जी,
1: हमारा विषय है कि बच्चों को अच्छे व्यक्तित्व की नींव कैसे डाली जाती है, संस्कार आप अपने बच्चों को कैसे देते हैं।
0: बिल्कुल। पहली जो गुरु होती है माता पिता,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: और सेकंड गुरु होते हैं अपने स्कूल के टीचर। देखिए, जो अपन घर से शिक्षा देते हैं वही बच्चे ग्रहण करते हैं,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: और इसके बाद में अपन तत्पश्चात भेजते हैं कहाँ, स्कूल में, तो बच्चे सीखते हैं।
1: तो आपको
0: तो
1: ऐसा नहीं
0: बच्चे
1: लगता कि हमारे व्यवहार की प्रतिदिन जो चर्चाएं होती हैं, घर में क्रियाकलाप होते हैं,
0: हाँ,
1: उन सब
0: लड़ाई
1: का असर भी
0: झगड़ा
1: हमारे
0: पुराना
1: बच्चों पर।
0: चटाना,
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ रहे हैं हम आपकी बात। लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सभी होती हैं, तो ऐसा नहीं है, वो आपने ये देख परख के करना चाहिए बच्चों के लिए, या बच्चों को दूर कर दो या फिर उनको आने मत दो, तो बात कर लो। क्योंकि घर में ये बातें अगर हो रही तो बच्चे 100 बातें
1: बिल्कुल
0: सीखेंगे
1: सीखेंगे।
0: मैम।
1: तो कोशिश यही करना चाहिए कि अपशब्दों का प्रयोग यदि हम भी ना करें, तो
0: हाँ
1: जैसा हमारा व्यवहार देखेंगे हमारे बच्चे वैसे ही बनेंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना। तो हमें अपने
0: बिल्कुल
1: बच्चों को अच्छा बनाने के लिए पहले स्वयं भी अच्छा बनना पड़ेगा। स्वयं भी यदि हम समय से उठेंगे, समय से सोएंगे, समय पर सारे काम करेंगे, तो बच्चे बचपन से ही वैसी आदतें देख देख के वैसा ही सीखते जाएंगे, वो
0: सही बात है
1: ऑटोमेटिकली
0: मैम,
1: होता चला जाएगा, स्वतः
0: बिल्कुल
1: होता रहेगा,
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: क्या
1: बहुत
0: बच्चों
1: सारी
0: के लिए दुष्प्रभाव
1: चीजें,
0: यही पड़ता है।
1: बिल्कुल, हमारे एक्शन से ही बच्चे हैं ना सीखते हैं, जो भी
0: सही बात
1: है
0: मैम,
1: ना। चलिए महेंद्र जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि आज आप बहुत प्रसन्न होंगे कि आपका कॉल
0: बिल्कुल
1: लगा।
0: मैम, बिल्कुल
1: ठीक
0: मैम,
1: है, चलिए, नमस्ते,
0: नमस्ते
1: कॉल
0: मैम।
1: करने के लिए धन्यवाद।
2: तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे नबी तू बुलाता है, तेरे दर पर सर झुकाए।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे, और हमारे अलग अलग श्रोताओं से हमने जानकारी हासिल की।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 का दो दिवसीय आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। फोरम के दूसरे दिन आज एमपी अनलॉकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया विषय पर विशेष फायर साइड चैट आयोजित होगी। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य को देश के प्रमुख विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों पर विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमत बढ़ने के कारण इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं है। इसके बजाय कम उत्पादन, बढ़ी हुई मांग, खराब मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान और जमाखोरी जैसे कारण हैं। राज्य सरकार ने कल 32 आईएएस और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए हैं। प्रदेश के 2 सरकारी शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए हुआ है। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भोपाल की डॉ. अर्चना शुक्ला और सीधी के शैलेन्द्र प्रताप सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में मानसून टर्फ, चक्रवात और निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश का मजबूत सिस्टम सक्रिय है। मौसम विभाग ने सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में नमस्कार स्वीकारिए सरिता का। पहला गीत हमने लिया है फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं से। इस गीत को गाया है अनुराधा पुडवाल और कुमार सानू ने। शब्द रचना है समीर की और संगीत निर्देशन है अनु मलिक का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत। मैं उन श्रोताओं के नाम बता देती हूँ, शुभ चंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन और बिट्टा बजाज, आप हैं सेक्टर 67 मोहाली पंजाब से। और इन्हीं श्रोताओं के साथ हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। तो श्रोताओं, अभी मैं आपके साथ थी सरिता और आपकी फरमाइश कार्यक्रम पेश कर रही थी, कुछ गीत मैंने आपको सुनाए। अब हमारे साथी जावेद खान जी आ गए हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और सरिता जी, इतनी अच्छी आपकी फरमाइश के कार्यक्रम में आप गाने सुनवा रही हैं और हमारे श्रोताओं के पत्र पढ़ रही हैं। मैं सोच रहा था कि आप पूरा प्रोग्राम आप ही करती, लेकिन अब ये है कि
0: नहीं जावेद जी, मैं चाहती हूँ कि श्रोता कुछ आपकी भी सुने और आप उनकी पसंद के कुछ गीत सुना दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, अगला गाना कौन सा सुनवा रहे हैं?
0: अगला गीत हम श्रोताओं को सुनवाते हैं फिल्म डर से, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है शिवहरी का।
1: तो सुनवाते हैं अपन श्रोताओं को।
0: जी जी,

अगला गाना लिया है हमने छोटे नवाब से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है और आर डी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है, पटेल नगर मलोड पंजाब से लिखने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, और कालका से शुभचंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली पंजाब से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं घर घर की कहानी फिल्म का एक गाना। आवाजें हैं अनुपमा देशपांडे, मोहम्मद अजीज और साथियों की। इस गाने को पसंद किया है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इसी गाने को पसंद किया है। मेहर नगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गायकवाड़कर और श्रीमती सरिता गायकवाड़कर, प्रिंस एकांश गायकवाड़कर और बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने को पसंद किया है आकार हाइट से बहादुरा, नागपुर से वैशाली शैलेश, सुमित गायकवाड़कर और कुमारी ध्वनि गायकवाड़कर। सुनते हैं ये गाना।

0: कारवां के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
5: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: दादी कौन सा प्लांट है?
7: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
8: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
6: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
8: क्यों?
6: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
8: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
9: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
10: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
11: क्या?
10: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
11: वो कैसे?
10: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
11: और सुनेंगे कैसे?
10: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
12: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
13: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
14: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
13: तो सुनते रहिए मालवा की शान
15: आकाशवाणी इंदौर।
14: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
16: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
17: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
16: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420-2233 पर कॉल करें।
5: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
10: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
11: क्या?
10: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
11: वो कैसे?
10: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
11: और सुनेंगे कैसे?
10: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
12: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं जमुनिया का चौथा भाग, यानी धारावाहिक जमुनिया की चौथी खड़ी।

0: मेरे
1: पिछले अंकों में आपने सुना कि चमुनिया अपने पति रतन और देवर करण के साथ रहती है। पति को जमीन का पट्टा मिलता है जिसे मेहनत करके वो खेती लायक बनाते हैं। करण को इस बात से जलन है कि खेती वाली जमीन में उसका नाम नहीं है। उधर गांव का जमींदार दीवान गांव वालों को कर्जा देकर मुट्ठी में करना चाहता है। ऐसे में रतन को भी कर्ज लेना पड़ता है जिसमें करण और दीवान हेरा फेरी करके 10,000 रुपए के कर्ज को 25,000 बना देते हैं। इन सबसे अनजान है रतन। वो खेती में लगा रहता है। अचानक आई बारिश से खेत में पानी हो जाता है और रतन और जमुनिया अपने मित्रों को साथ लेकर धान रोप देते हैं। अब आगे

0: अरे बेटा गोलू, अरे इधर तो आ।
1: आया बापू।
0: बेटा तुम्हारी माई कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही?
1: बापू वो पानी लेने गई है।
0: अच्छा अच्छा, तूने कुछ खाया बेटा?
1: हाँ बापू मैंने खा लिया है।
0: क्या खाया?
1: रोटी खाई है। माई बोल के गई थी कि बापू जाग जाए तो जंगल चले जाना लकड़ियाँ बीनने।
0: अच्छा तो फिर ठीक है, जा, पर जरा संभल के लकड़ी उठाना।
1: जी बापू।
0: कल ही बारिश हुई है ना, जमीन के कीड़े मकोड़े सांप वगैरह निकलते हैं, संभाल के बेटा। हाँ
1: अच्छा बापू, जाता हूँ।
2: अरे धीरे धीरे दौड़, कहाँ को जा रहा है? तेरे बापू जाग गए का?
1: हाँ माई जाग गए हैं, अभी तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे।
2: अच्छा ठीक है, जा।
3: ये पानी लाना भी मुझे एक कसरत है। गांव में एक आध पाइप लग जाता तो कितना सुख होता। हे राम।
0: हाँ हाँ आ गई जमुनिया।
3: हाँ जी आ गई। क्यों आज क्या करने वाले हो? हाँ ना हो तो आराम कर लो, इतने दिनों से रात दिन काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी करना चाहिए। हाँ
0: अरे भाई कैसे आराम करें जमुनिया, कल हड़बड़ी में पानी गिरा तो लालच में आके धान तो रोप दिए, पर इतने से धान तो पैदा होने से रहा।
3: तो फिर क्या करोगे?
0: सोचता हूँ शहर चला जाऊं, अरे एकाद बोरी खाद ले आऊं, छिड़काव भी तो करना पड़ेगा।
3: ठीक ही सोच रहे हो, चलो जल्दी से रोटी सेक देती हूँ, खा कर जाना।
0: ठीक है तू रोटी सेक, मैं मुंह धोकर आता हूँ।
3: हाँ
0: हाँ भाई गमछा दे।
2: वही है चारपाई पर, ले लो।
0: अच्छा हाँ हाँ ये मिल गया। ये क्या हो गया तुम्हें, रो रही हो जमुनिया?
3: रोए मेरे दुश्मन, अरे ये मुई लकड़ियां कल की बारिश में सिम हो गई हैं, मार धुआं फेंक रही हैं, ठीक से जल नहीं रही हैं।
0: तो फिर तुम रहने दो, एक आध टुकड़ा गुड़ हो तो दे दो, पानी पीकर चला जाऊंगा। अरे उधर शहर में ही कुछ खा पी लूंगा।
3: अरे कैसी बातें करते हो, रोटी तो बन गई है, कटोरी में चटनी है, खा लो, मैं थोड़ा गुड़ का शरबत बना देती हूँ। हाँ
0: चल तो फिर ला, खा लेता हूँ। अरे ये तो बता जमुनिया, ये करण को क्या हो गया था? बंटवारे की बातें कर रहा था, कुछ अनाप शनाप भी बक रहा था, पता नहीं क्या बोले चला जा रहा था।
3: कोई अनाप शनाप नहीं बोल रहा था, सोच समझ कर बोल रहा था, उसकी नियत में ही खोट है।
0: अरे ऐसा क्यों सोच रही हो, दारू के नशे में था, उसी से कुछ बोल गया होगा।
3: मैं तो ये समझती हूँ कि नशे में आदमी अपने दिल की बात बोलता है, सच बोलता है। अभी उसकी छोड़ो, आप तो खाद का देखो, जाओ।
0: अच्छा ठीक है। अरे जमुनिया ला कुछ पैसे तो दे दे, मैं चलूं।
3: हाँ अभी लाई। हाँ
4: करके मनिया देव का।

0: देर हो गई। हाँ तुम लोग सुनो जी भर के आला, हम थोड़ी देर आराम करके आते हैं।
1: अरे तू कब आया करण? अरे तुझे मालिक याद कर रहे थे।
2: अच्छा
1: हाँ, मालिक अभी बैठक में गए हैं। तू चाहे तो वहीं चला जा, जा जा।
2: चला जाऊं?
1: हाँ बिल्कुल,
2: बुरा तो नहीं मानेंगे।
1: अरे भैया चला जा, अरे कुछ डांटे तो माफी मांग लेना, मैं हूँ ना।
2: ठीक है
1: हाँ, जा जा जा, डर मत।
2: जी जी मालिक।
0: कौन है?
2: मैं हूँ करण, अंदर आ जाऊं क्या?
0: आ जा करण, आ जा। हाँ? बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अरे तुझे याद कर रहे थे हम। कैसा है तू, क्या हाल है तेरा?
2: ठीक ही हूँ मालिक, बस थोड़े पैसे की तंगी है। आप किस लिए याद कर रहे थे मालिक?
0: इसी के लिए याद कर रहा था तुझे। कई दिन हो गए तू इधर आया ही नहीं, सोचा तुझे पैसों की तंगी होगी तो कुछ ले जा भाई।
2: आपकी बड़ी दया है हम पर मालिक।
0: अच्छा भैया, हमने सुना है तू अपने भाई से कल रात झगड़ा कर रहा था और अलग होने की बात भी कर रहा था, ठीक सुना ना हमने?
2: हाँ मालिक, आप ठीक सुने हैं।
0: निरे गधे हो तुम। अरे माना कि रतन चतुर है, तुम्हारा नाम नहीं होने देता, तुम्हारी कोई कदर है नहीं, तू निकम्मा अलग होकर कमाएगा खाएगा क्या हैं? अरे हर चीज का सही टाइम होता है, अभी जाकर करण से माफी मांग लेना, कह देना कि नशे में गलती हो गई है। और जब मैं तुझे बताऊंगा तब अलग होना। और हाँ, अभी खाद वाद नहीं चाहिए क्या हैं? वो तो मुफ्त आएगी नहीं पानी की तरह।
2: हाँ आज शहर गए हैं, शायद खाद ही लेने गए हूं।
0: अच्छा सिर्फ फूल लेने दो से, अरे शहर में तो खाद मिलने से रही, लौट के खाली हाथ आएगा, तब उसे समझा बुझा के मेरे पास लेकर आना, मैं खाद का इंतजाम कर दूंगा।
2: अच्छा मालिक।
0: हाँ अच्छा, ये ले 500 रुपया।
2: जी
0: पर हिसाब रखते जाना बच्चू।
2: जी मालिक।
0: हाँ अभी जा बैठक में बैठकर आला का मजा ले।
2: जी
0: बहुत ही अच्छा गवैया आया है भैया, सुनते जाना।
2: जी मालिक, आपकी मेहरबानी है मालिक।
3: इतनी विद्या थी मचला पर सब बटुआ में धरी समाला।

0: अरे जमुनिया, ला भाई थोड़ा पानी ले आ।
1: लाई जी।
2: अरे ये का खाली हाथ आ गए, खाद कहाँ है?
0: बड़ा कठिन है जमुनिया, खेती करना भी बहुत कठिन है। पूरे शहर में खाद नहीं है, कहते हैं सप्लाई नहीं है। कब आएगी खाद कुछ कह नहीं सकते।
3: क्या भैया, आप तो करण को कुछ समझते ही नहीं। अरे मैं भी इसी घर में रहता हूँ, निकम्मा हुआ तो क्या, अरे कुछ तो काम आ ही सकता हूँ।
0: अरे ये कल रात क्या अटवारे बटवारे की बात कर रहा था रे तू?
3: अरे माफ कर दो भैया, थोड़े नशे में अनशंट बोल गया। अब भला मैं आपसे अलग होकर जी सकता हूँ क्या है? जमुनिया भौजी तुम भी माफ कर दो ना।
2: ठीक है ठीक है, अब ज्यादा बात को खींचो मत। सुनो कुछ खाद वाद के बारे में पता तो लगाओ।
3: अरे इसमें सोचने पता लगाने वाली क्या बात है, आप उठो चलो अभी ले आते हैं।
2: हाँ, कहाँ से ले आओगे भैया?
3: अरे अपने दीवान जी से ले आएंगे।
2: क्या
0: दीवान जी से खाद लाएंगे?
3: और नहीं तो, अरे पिछले साल ही उन्होंने काफी खाद लेकर जमा कर लिया है, क्या करेंगे, 10-5 रुपए ज्यादा ही लेंगे ना, और क्या, हमें टाइम पर चीज मिल जाएगी, शहर से लाने का खर्चा बचेगा सो अलग।
0: अब तू कहता है तो ले लेते हैं, पर मुझे इस आदमी पर कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या कर दे। हाँ पर और कोई उपाय भी तो नहीं है।
3: तो फिर अभी चलते हैं, बाद का क्या भरोसा।
0: अच्छा भाई चल।
4: आओ रतन आओ, सुना शहर गए थे खाद लेने?
0: जी मालिक।
4: तुमने समझाया नहीं करण, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। अरे शहर में अभी सप्लाई नहीं है भैया, वो तो मैंने पिछले साल खाद लेकर रख लिया था तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों के लिए। अच्छा तुम्हारे खेत के लिए तो 2 बोरी ठीक रहेगी ना? वैसे करण ने तुम्हें बताया नहीं खाद के बारे में, या तुमने पूछा ही नहीं होगा शायद।
3: जी मालिक, किसी काम में मेरी राय नहीं लेते भैया।
0: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मालिक।
4: कैसी बात नहीं है? हुँ? अरे भैया अपने इस भाई को भी कुछ काम धाम सिखाओ, जिससे ये जिम्मेदारी समझे अपनी, कुछ करे खुद होकर।
0: ठीक है मालिक, ये कुछ करे तो सही, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा मालिक।
4: बिल्कुल ठीक कही। अच्छा करण
3: जी,
4: अंदर गोदाम में चला जा और 2 बोरियां खाद की उठवा ला। और हाँ रतन।
0: जी मालिक।
4: नहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बोरिया उठा ला तब बात करते हैं।
0: जी मालिक ठीक है।
5: कहाँ से आइला हो, कम न ठैमा जैबा, बबुआ बोल तो ना।
4: अच्छा ले आए खाद, बड़ा अच्छा किया। चलो अब सीधे घर लेकर जाओ उस खाद को, किसी से बोल दो पहुंचवा देगा।
3: जी।
4: और रतन तुम रुको जरा।
0: जी मालिक।
3: अरे चलो चलो भैया,
6: चलो भैया चलो चलो भैया चलो उठा चल।
4: देखो रतन तुम सीधे सच्चे ईमानदार आदमी हो, पर भैया साफ बात, तुम्हें छल कपट आता नहीं, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं।
0: जी मालिक।
4: पर भैया ये खाद का पैसा तुम्हें नकद देना होगा। हाँ कहा है कि हमारे घर में तो ये बनती नहीं है ना। भैया हम भी खरीद कर ही लाए हैं। हाँ इतना जरूर करेंगे कि दाम का दाम लेंगे। हाँ
0: ठीक है।
4: तुमसे मुनाफा नहीं लेंगे, ठीक है ना?
0: जी ठीक है मालिक।
4: और बुरा मत मानना अपने इस छोटे भाई से, अरे उस करण से संभल कर रहना। हाँ उसका कोई भरोसा नहीं, जाने कब क्या कर दे।
0: हाँ ठीक है मालिक।
4: ठीक ना? बिल्कुल ठीक। खेती करो, अच्छे से खेती करो, भगवान करे खूब अच्छी फसल आए तुम्हारी, तुम्हारी मेहनत कामयाब हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
0: जी मालिक जी।
4: जाओ सुखी रहो।
0: जी माली।
1: इधर आओ।
7: जी मैं।
1: हाँ तू ही, क्या नाम है तेरा?
7: जी गोलू।
1: सर ये गोलू है।
8: इससे पूछो दीवान जी का घर कौन सा है।
1: ए लड़के दीवान जी का घर कौन सा है?
7: वो सामने बड़ी सी हवेली है ना, दीवान जी का घर वही है।
8: अच्छा वो ठीक है, चलो ड्राइवर।
1: जी सर।
4: अरे आइए आइए सर। ओ भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। पर सर ऐसा क्या काम आ गया, आप मुझे बुलवा लेते तो मैं खुद हाजिर हो जाता आपकी सेवा में।
8: ऐसी कोई खास बात नहीं है। अरे भाई पट्टे बटे महीने भर से ज्यादा हो गया।
4: जी जी जी जी।
8: तो मुझे देखने आना पड़ा कि लोगों को कब्जा मिला है कि नहीं, और देखा कि कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं या फिर पैर फैला कर सो रहे।

0: आकर बहुत अच्छा किया सर आपने, बिल्कुल सही किया सर आपने, वरना देखिए ना पहले के अफसर तो गांव आते ही नहीं थे।
1: वो तो आप ठीक कह रहे हैं, अरे बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं यहां तक, अब सड़क है नहीं, पगडंडी में कीचड़ भरा है बारिश से। आप जरा हमारे साथ थोड़ा चलिए, खेत आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कीजिए।
0: जी अरे सर अभी तो आप आए हैं, जरा चाय पानी हो जाए फिर चलते हैं।
1: नहीं भाई नहीं, चाय पानी फिर सही, अरे अभी शाम हो रही है, ये काम अंधेरा ढलने से पहले हो जाना चाहिए। उठिए उठिए भाई, चलिए चलिए।
0: ठीक है ठीक है, जैसा आपका हुक्म सर, चलिए सर चलिए चलिए
1: चलिए।

0: ये खाली जमीन कैसी है
1: जी? ये तो अलॉट हो गई है सर। वो क्या है, मिट्टी बड़ी सख्त है तो बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वैसे बारिश तो हो गई है, पर देखिए ना, लोग खेतों में काम करते नजर ही नहीं आ रहे।
0: यही तो दीवान जी, अरे आप गांव के सरपंच हैं, ध्यान रखिए जमीन का दुरुपयोग ना हो। और मुझे बताइएगा कितने पट्टे बटे और कितनों में खेती हो रही है।
1: ठीक है सर। सर मैं ऑफिस में आकर सब बता दूंगा।
0: और ये किसका खेत है
1: ये? अरे सर ये रतन का है। सर बहुत मेहनती है सर वो।
0: अच्छा पट्टे का है?
1: जी जी जी हाँ पट्टे का है।
0: अरे वाकई, इसने खेत तैयार भी कर लिया और धान भी रोप दिए, वाह कमाल। ए सुनो भाई इधर आओ। हाँ हाँ तुम आओ। शाबाश, इसी तरह मेहनत करो, जरूर कामयाब होगे। खेती के लिए पैसे वैसे चाहिए हो तो बता देना। हाँ
2: जी मालिक, अभी तो दीवान जी से कर्ज ले लिया है, ये बड़े मददगार हैं, हम लोगों की भलाई की सोचते हैं।
0: वो सब ठीक है, मैं तो ये बताने आया था कि सरकार ने कुछ बैंकों को कहा है कि वे गांव में जाएं और जरूरत के हिसाब से कर्ज दें। दीवान जी हमने तो आपको बता दिया था ना भैया, आपने इन लोगों को बताया नहीं?
1: जी सॉरी सर, बताने ही वाला था।
0: कब?
1: सर एक काम करता हूँ सर, सभी गांव वालों को बुलवा लेता हूँ, आप खुद ही अनाउंस कर दें सर उनके सामने।
0: बिल्कुल, अब यही करना पड़ेगा। और देखिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी योजना किसानों के लिए बनती है उसे इन्हें बताइए। और वो हैंडपंप के लिए जो ग्रांट आई थी उसका क्या हुआ?
1: पैसे रखे हैं सर। वैसे अब तो बारिश आ गई है, पानी की सतह ऊपर आ जाती है ना, सोचा गर्मी में लगवाएंगे ताकि साल भर पानी मिले। नहीं तो नल सूख जाते हैं ना सर।
0: अरे भाई बारिश तो कल हुई है, इसके पहले तो गर्मी थी ना दीवान जी, बात मत बनाइए। देखिये जल्द से जल्द हैंडपंप लगवाइए, अभी इतना पानी नहीं बरस रहा है कि जमीन का लेवल ऊपर आ जाए, समझे आप?
1: जी, जी जी अच्छा, तुरंत काम शुरू करवाता हूँ। सर अब चलें, कुछ चाय वाय हो जाए सर, थक गए होंगे सर आप।
0: अरे अब चाय छोड़िए, देखिए अंधेरा हो रहा है, रास्ता भी खराब है, देखिए चाय फिर कभी सही।
1: अरे सर चाय में कितना टाइम लगता है सर, मेरे सत्कार का मान रख लीजिए सर।
0: चलिए अच्छा, लेकिन फटाफट चाय पिलाइए।
1: अरे बिल्कुल सर, अभी लीजिए। ए खड़ा खड़ा मुख क्या देख रहा है
3: जी मालिक?
1: अरे जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करो।
3: अभी अभी लाए मालिक, अभी लाए।
1: आइए सर आइए।

0: अच्छा दीवान जी चलते हैं। अरे भाई आपने तो चाय के नाम पर अच्छा खासा डिनर करा दिया।
1: वैसे सर बात तो यह है कि आप जैसे अफसर इस गांव में आते ही कहां है सर।
0: आना पड़ेगा, सरकार बहुत बारीकी से सब पर नजर रखे हुए है।
1: जी जी जी
0: हाँ। और हाँ, जो योजनाएं हम आपको लागू करने के लिए देते हैं उन पर जल्द से जल्द अमल करना होगा दीवान जी।
1: जी सर, जी सर।
0: हाँ ये आपके भी हित में है, समझ तो गए ना आप।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, तुरंत अमल करेंगे। हाँ थोड़ा आलस वालस में विलंब हो गया सर, माफी चाहते हैं सर।
0: नहीं नहीं ठीक है ठीक है। और हाँ दीवान जी, गांव वालों को ठीक से समझा देना कि अगले संडे को बैंक वाले आएंगे।
1: जी सर, जी हाँ, सर।
0: अपने हिसाब से लोग ऋण ले सकते हैं भाई, ज्यादा लिखा पढ़ी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बैंक वालों पर भी आप नजर रखिएगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रृंखला रहस्य के अंतर्गत जमुनिया धारावाहिक की चौथी कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 23 अगस्त को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसे हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं वो दिनांक 23 अगस्त को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 और भोपाल का दूसरा नंबर 2660903 पर फोन लगाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 23 अगस्त 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच। फोन नंबर है 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। कार्यक्रम संबंधी सूचना संपन्न हुए और लीजिए अब एक और सूचना है। श्रोताओं की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा और इन चौराहों के मध्य आने वाले समस्त स्थानों पर किसी को भी किसी भी प्रकार की हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। ये प्रतिबंध आत्मक आदेश आगामी 2 माह यानी कि 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। अतः आम नागरिकों से अपील है कि उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें और कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें। सूचना संपन्न हुई।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:58 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें। तो श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 का दो दिवसीय आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। फोरम के दूसरे दिन आज एमपी अनलॉकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया विषय पर विशेष फायरसाइड चैट आयोजित होगी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य को देश के प्रमुख विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों पर विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमत बढ़ने का कारण एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं है, इसके बजाय कम उत्पादन, बढ़ी हुई मांग, खराब मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान और जमाखोरी जैसे कारण हैं। मुरैना जिले में लंबे समय से बंद कैलारस शुगर मिल को फिर से शुरू करने की तैयारी शुरू की गई है। इसके लिए एमएसएमई विभाग द्वारा इच्छुक कंपनियों से ऑनलाइन प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रस्ताव जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदेश के 2 सरकारी शिक्षक, भोपाल की डॉ. अर्चना शुक्ला और सीधी की शैलेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में मानसून टर्फ चक्रवात और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण बारिश का मजबूत सिस्टम सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:01 हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। इस सुविचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर समस्या बन चुका है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कहीं अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है तो कहीं बाढ़, सूखा और अनियमित वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ता है, लेकिन महिलाओं और बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बहनों, जलवायु परिवर्तन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं पानी, ईंधन और भोजन जैसी आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती हैं। जब सूखे के कारण पानी की कमी होती है तो महिलाओं को पानी लाने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इससे उनका समय और श्रम दोनों बढ़ जाते हैं। बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती और रोजगार दोनों प्रभावित होते हैं, इससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। अत्यधिक गर्मी, प्रदूषित पानी और भोजन की कमी का असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये कठिनाइयां और भी ज्यादा हो सकती हैं। बहनों, बच्चे भी जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास जलवायु परिवर्तन के कारण

प्रभावित होते हैं। स्वच्छ भोजन और पानी की उपलब्धता में कमी बच्चों में कुपोषण और विभिन्न बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बच्चों के स्कूलों का नुकसान या लंबे समय तक बंद रहने के कारण उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। कई बार तो उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई और उनका सामान्य जीवन बाधित होता है। जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण की समस्या नहीं है बल्कि यह स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता से भी जुड़ा हुआ विषय है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, वनों की कटाई को रोकने का प्रयास करना चाहिए, बिजली और पानी की बचत, सौर और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देनी चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग और कचरों का उचित प्रबंधन भी जरूरी है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। महिलाओं और बच्चों को इसके दुष्प्रभावों से बचाना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य दे सकेंगे। बहनों, कुछ गीत सिर्फ सुने ही नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। उनकी धुन मन को सुकून देती है और उनके शब्द हमें प्रकृति की खूबसूरती का एहसास कराते हैं। ऐसे ही एक खूबसूरत गीत है फिल्म रिफ्यूजी का, पंछी नदिया पवन के झोंके, जिसे अपनी मधुर आवाज से सोनू निगम और अलका याग्निक ने सजाया है। तो आइए प्रकृति प्रेम और आजादी की भावनाओं से सजे इस सुरीले गीत का आनंद लेते हैं।

0: अभी हमने सुना गीत फिल्म रिफ्यूजी से पंछी नदिया पवन के झोंके, जिसे गाया था सोनू निगम और अलका याग्निक ने।
1: बहनों, आज हमारे साथ हैं श्रीमती शोभा पांडे जी, 10 साल उपभोक्ता फोरम रीवा में जज रही हैं। वर्तमान में समाज के सेवा कार्य में तल्लीन हैं। तो शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: कल्पना जी नमस्कार।
1: शोभा जी, जैसे कि कहा जाता है कि अंगदान महादान किसी के जीवन की नई पहचान है, जो हमारे बाद भी कोई मुस्कुरा सके, इससे बड़ा मानवता का सम्मान क्या है। तो आप अंगदान के बारे में क्या कहना चाहेंगी?
2: देखिए कल्पना जी, जहाँ तक अंगदान का सवाल है, मैं तो इसे जीवन दान तो नहीं कहूंगी, लेकिन नया जीवन मिलता है लोगों को। आप नेत्रदान को ही देख लीजिए, बहुत लोगों की आंखें काम नहीं कर पाती, तो उनको रहता किसी की आंखें मिल जाए। लोग पब्लिश कराते हैं हर चीज में, आंखें अगर किसी आपके काम की तो आंखें नहीं रह गई आप जब नहीं है, उसके बाद अगर आप किसी को दे देंगे वो देखने लगेगा। तो इन सब चीजों की बड़ी डिमांड रहती है, लेकिन मिल नहीं पाते हैं।
1: सही,
2: आजकल तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी होने लगा, दिल दिल थोड़ा सा उसमें डॉक्टर ये करते हैं कि भाई किसका 18 साल के लड़के का दिल हम 50 साल 60 साल के लड़के को नहीं दे सकते हैं। फेलियर भी हो सकता है, लेकिन दिल में हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है।
1: अच्छा।
2: तो मैं तो सोचती हूँ कि अंगदान बहुत बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता है।
1: सही बात है।
2: सामने वाले के चेहरे में कितनी खुशी होती है।
1: हाँ।
2: और अपनी आत्मा को बहुत शांति मिलती है।
1: अच्छा, तो क्या आप बता सकती हैं कि अभी जैसे शोभा जी बता सकती हैं कि हमारी सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, इसी पर जुग जुग जियो अभियान, तो ये जुग जुग जियो अभियान क्या है?
2: ये एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है
1: जी।
2: ये अभियान एक वर्ष तक चलाया जा रहा है।
1: हाँ।
2: इसका मुख्य विषय, इसका संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है कि हर जन जन लोगों को ये पहुंच जाए, लोगों को अंगदान का महत्व के बारे में सही जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य मानवता और जीवन बचाने की भावना को बढ़ावा देना है।
1: अच्छा शोभा जी, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: इसका मुख्य उद्देश्य अंगदान के लिए जागरूक करना है।
1: हाँ।
2: जरूरतमंद मरीजों को जीवन की नई आशा मिल सकती है। लोगों की गलत धारणाओं और झिझक को दूर करने का प्रयास करता है यानी अंगदान के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाया जाता है। सहयोग और मानवता की भावना बढ़ाई जाती है। इसका संदेश देश के हर समुदाय तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
1: अच्छा शोभा जी, जैसे कि अंगदान को जीवन दान का सबसे बड़ा उपहार क्यों कहा जाता है?
2: कुछ सही कहा आपने, अंगदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन की नई उम्मीद बन जाता है। दान के अंग की किसी मरीज के उपचार में उपयोगी हो सकते हैं। इससे

0: किसी परिवार की खुशियां वापस आ सकती हैं। दाता का यह महान कार्य दूसरों के जीवन में आशा पैदा करता है, इसलिए अंगदान को मानवता की महान सेवा माना जाता है। यह सचमुच जीवन का अनमोल उपहार है।
1: सही। अच्छा, समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता क्यों जरूरी है?
0: बहुत जरूरी है। बहुत से लोग अंगदान के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। कुछ लोगों के मन में इससे जुड़ी गलत धारणाएं भी होती हैं। जागरूकता से इन भ्रांतियों को दूर किया जाता है। लोग अंगदान की प्रक्रिया और महत्व को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जरूरतमंद मरीजों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है और समाज में मानवता और सहयोग की भावना मजबूत होती है।
1: सही बात है शोभा जी। जैसे कि इस अभियान में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है?
0: युवा वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। युवा इस अभियान के संदेश को तेजी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वे विद्यालय और समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। पोस्टर, भाषण और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से संदेश दे सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैला सकते हैं। इस प्रकार युवा अभियान को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: अच्छा शोभा जी, ये अंगदान के प्रति लोगों में झिझक का क्या कारण है?
0: बिल्कुल सही बात है, एक झिझक होती है। कुछ लोग सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के कारण संकोच करते हैं। कई बार गलत जानकारी भी लोगों के मन में डर पैदा करती है। सही और विश्वसनीय जानकारी से इन शंकाओं को कम किया जा सकता है। जागरूकता कार्यक्रम जो है लोगों को तथ्य समझाने का अवसर दे।
1: अच्छा शोभा जी, ये जुग जुग जियो अभियान का समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता
0: है? इस अभियान से लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ा सकता है। लोग अंगदान के मानवीय महत्व को समझ सकते हैं। अंगदान से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करने में मदद मिल सकती है।
1: अच्छा शोभा जी, आप लोगों को ये जुग जुग जियो अभियान के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं तो यही कहूंगी कि अंगदान के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने की अपील करूंगी। गलत अफवाहों पर विश्वास करने के बजाय विश्वसनीय जानकारी लेना चाहिए। हमें समाज में जागरूकता और मानवता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। अंगदान सच में किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सके।
1: बहुत अच्छा, और मैं आशा करती हूँ कि हमारी बहनों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं आभार व्यक्त करती हूँ कल्पना जी, मुझे आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। करती हूँ कि दोबारा फिर हम मिलेंगे।
2: बहनों, बेटियाँ परिवार और समाज की शक्ति होती हैं। आज बेटियाँ शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रशासन और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं प्रयासों का उद्देश्य बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करना है। बहनों, सशक्त बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके माध्यम से बेटियों के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। बेटियों को अच्छी शिक्षा मिलने की वजह से वह अपने भविष्य का निर्णय स्वयं ले सकती हैं। शिक्षा उसे आत्मविश्वास देती है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में सहायता करती है। इसलिए बेटियों की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बहनों, आज बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी और अधिकारी बनकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। यदि उन्हें समान अवसर और उचित मार्गदर्शन मिले तो वे देश के विकास में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बहनों, बेटी को बोझ नहीं बल्कि परिवार और राष्ट्र की शक्ति समझना चाहिए। सशक्त बेटी ही सशक्त परिवार और सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। इसलिए हमें बेटियों को शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेना चाहिए। बेटियों को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार या किसी एक संस्था की नहीं है। माता पिता को भी बेटियों को अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए। विद्यालयों को उन्हें शिक्षा के साथ साथ आत्मविश्वास और नेतृत्व के अवसर देने चाहिए। सशक्त बेटी परियोजना बेटियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बेटियों को दया या सहानुभूति की आवश्यकता नहीं, बल्कि समान अवसर, सम्मान, शिक्षा और विश्वास की आवश्यकता है। यदि हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले तो वह अपनी प्रतिभा से परिवार और देश का नाम रोशन कर सकती है। इसलिए हमारा संकल्प होना चाहिए हर बेटी शिक्षित हो, सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो। बहनों, बेटी को अवसर दीजिए, वह भविष्य को नई दिशा देगी। बहनों, बेटी घर की खुशियों की वह नन्ही सी किरण होती है जिसके आने से पूरा घर मुस्कुराने लगता है। इसी खूबसूरत भावना को व्यक्त करता है फिल्म कभी कभी का सदाबहार गीत, मेरे घर आई एक नन्ही परी। इस मधुर गीत को अपनी सुरीली आवाज दी है महान गायिका लता मंगेशकर जी ने। इस गीत का संगीत खयाम जी ने दिया है।

अभी हमने सुना गीत फिल्म कभी कभी से मेरे घर आई एक नन्ही परी, जिसे गाया था लता मंगेशकर जी ने। बहनों, बरसात का मौसम गर्मी से राहत तो देता ही है, लेकिन इस मौसम में वातावरण में नमी अधिक होने के कारण त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। पसीना, धूल और नमी के कारण त्वचा पर चिपचिपापन, खुजली, मुहासे तथा संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बरसात के मौसम में त्वचा की विशेष देखभाल करना आवश्यक है। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए दिन में 2 बार साफ पानी और हल्के फेस वॉश से चेहरा साफ करना चाहिए। चेहरे को बार बार छूने से बचना चाहिए। पसीना आने पर साफ कपड़े से हल्के हाथों से पोंछना चाहिए। बारिश के मौसम में भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। भोजन में हरी सब्जियां, फल और पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। बरसात में गीले कपड़े अधिक देर तक नहीं पहनने चाहिए। शरीर को साफ और सूखा रखना चाहिए तथा तौलिया और कपड़े किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट का उपयोग करना चाहिए। त्वचा पर कोई नया कॉस्मेटिक या क्रीम लगाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।

साफ सफाई, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और उचित त्वचा की देखभाल से बरसात के मौसम में भी त्वचा को स्वस्थ और स्वच्छ रखा जा सकता है। स्वस्थ त्वचा हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का भी प्रतीक होता है। बहनों, सावन का मौसम आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। बादलों की रिमझिम फुहारे मन में नई उमंग जगा देती है। इसी सुहावने सावन और प्रेम भरे मौसम की खूबसूरत झलक प्रस्तुत करता है फिल्म चुपके चुपके के सदाबहार गीत अब के सजन सावन में। इस मधुर फिल्म को सुरीली आवाज दी है महान गायिका लता मंगेशकर जी ने। इसके खूबसूरत बोल आनंद बख्शी जी ने लिखे हैं और संगीत एसटी वर्मन जी ने दिया है। तो आइए सावन की फुहारों और मधुर संगीत के साथ इस गीत का आनंद लेते हैं।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत अब की सजन सावन में, जिसे फिल्म चुपके चुपके से लिया गया था और जिसे गाया है लता मंगेशकर जी ने। बहनों, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: और सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: और
1: आकाशवाणी।
2: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। कलाकार हैं नलिनी विश्वकर्मा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में लल्लूराम शुक्ला के गाए भजन और गीत। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

0: कलाकार थे लल्लूराम शुक्ला और कार्यक्रम था सुगम संगीत का और ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: ये प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं दोस्ताना फिल्म का एक गाना। जी हाँ, दोस्ताना फिल्म का ये गाना है। आवाज़ें हैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। गाना बहुत मधुर है, सुनिएगा।

दोस्ती वो रिश्ता है जिसे हम अनोखा रिश्ता कह सकते हैं। हर रिश्ता हमें बाय बर्थ मिलता है, पैदाइश मिलता है, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि जो कि हमें जब मिलता है, जब हमारे मिजाज, हमारे जो अखलाक है, हमारे बोलचाल का तरीक़ा है, हमारी जो पर्सनालिटी है, उससे मिलता जुलता कोई इंसान होता है, तब हमारी दोस्ती होती है। तो खैर, दोस्ती के ऊपर तो कहा जाता है कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। खैर, ये तो थी बात दोस्ती की। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गाना, जब जब फूल खिले से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सजाया है। सुनिए ये खूबसूरत गीत।

दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया तुमको हम पे।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में सम्मिलित हुए। कल से शुरू हुए इस दो दिवसीय फोरम में देश और विदेश के प्रमुख उद्योगपति, नीति निर्माता एवं वैश्विक विशेषज्ञ सहभागिता कर रहे हैं। फोरम में आज एमपी अनलॉकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया विषय पर विशेष फायरसाइड चैट आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक विकास यात्रा, निवेश की संभावनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया।
1: हमारे राज्य के अंदर 340 से ज्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट हम डेवलप कर रहे हैं, जहां 22 हमारे पास जंक्शन है, 8 एयरपोर्ट हैं। सरलीकृत रूप से अगर 1,00,000 एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक हमारे पास है, बिजली सरप्लस है, मेन पावर भी हमारे पास पर्याप्त है, बल्कि हमारे यहाँ तो रोजगार आधारित अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो लेबर को भी 5,000 रुपया पर लेबर हम सरकार की ओर से अपना अनुदान जोड़ रहे हैं इंडस्ट्री वालों के लिए।
0: किसानों को खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन की नई तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से शिवपुरी में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें वर्चुअली शामिल होकर किसानों को संबोधित करेंगे। महोत्सव में कृषि और उससे जुड़े विभागों की योजनाओं पर प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को प्रशासन जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहा है। इसी क्रम में नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में जनसंवाद शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल और काउंटर लगाकर नागरिकों को शासकीय योजनाओं, सेवाओं और पात्रता की जानकारी दी तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ वितरित किया गया। शहडोल जिले के ग्राम पंचायत करी में अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। जयसिंह नगर विधायक मनी निशा सिंह, कमिश्नर सुरवी गुप्ता और कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने युवाओं और महिलाओं से स्वयं का रोजगार स्थापित करने और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। झाबुआ जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर द्वारा निरीक्षण कर शासकीय व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानना और समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूह के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकास उन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता आधारित आजीविका के अवसरों में तेजी लाने और देश में 6 करोड़ लखपति दीदियां बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देने पर चर्चा हुई। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बीते दो दिनों से कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार सागर, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, रीवा, उज्जैन, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक प्रदेश में इस समय 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय है। अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 24 अगस्त तक बारिश की गतिविधि

आंधियां धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी एनआईयू में देर रात आग लगने से झुलसे छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के 3 नवजातों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बुरहानपुर में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन एवं आत्मा योजना के तहत अंतर्राज्यीय कृषकों, वैज्ञानिकों और मास्टर ट्रेनरों को प्राकृतिक खेती का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और मुरैना में 24 से 27 अगस्त तक जिला स्तरीय राखी मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला ज्ञानेश्वरी हाट मुरैना में लगाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। इसमें 22 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर के जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान PLI योजना से की।
3: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है, 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है, 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
3: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज MT सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज MV 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
4: 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्र

0: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले दो छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
1: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवरस्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
2: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदिया का जलस्तर घट रहा है लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर है और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
4: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फैन और झांगशु जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

0: इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई हैं। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडेम में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं और ये समय है आपकी फरमाइश का। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और दूसरे लोगों का नाम भी बता देंगे, उनके साथ दूसरे साथी भी इस गाने में शामिल हैं और सईद कादरी का लिखा हुआ गाना है और तौसीफ अख्तर का संगीत है। फिल्म का नाम है ऐसा क्यों होता है और इस गाने के लिए हम फरमाइश भी आपको बता देते हैं। ये फरमाइश है, इसकी सबसे पहला खत आया है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाजापुर से लिखने वाले हैं M राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और समस्त राजवत परिवार।

अगला गाना है फिल्म आदमी का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा है, नौशाद का संगीत है, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। कंवर कॉलोनी बड़वाह से लिखने वाले हैं प्रवीणी प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, छत्तीसगढ़ दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास, मणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चार डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए पसंद के लिए खत भेजा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने।

आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे। बहुत ही खूबसूरत गाना था आदमी फिल्म का ये। और अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बारादरी का, आवाज़ तलत महमूद की है। कुमार बारावंकवी का कलाम है और नौशाद का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिहा, शोएब, साइमा, मुजतबा, आफिया, रऊफ, शाहिद, और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सिंहपुर बाड़ा बड़ा से, लिखने वाले हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट, इन्होंने ये फरमाइश के पत्र भेजे हैं। सुनते हैं ये गीत।

तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, बहुत ही खूबसूरत गाना था। और इस गाने के लिए हमने फरमाइश के नाम आपको बता दिए थे। अब अगला गाना हम ले रहे हैं, मुंबई शहर हादसों का शहर है, इस ये फिल्म का नाम है हादसा। आवाज़ें हैं अमित कुमार और साथियों की, एम जी हशमत ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज़ से में, और फिल्म का नाम है आरती। लता मंगेशकर के साथ दूसरी आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, रोशन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, धामड़ी मनोरा से लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रवजल डेरे और अनुत्तर डेरे। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी से, बलिया से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय ने इस गाने को पसंद किया है। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है पटेल नगर मलोट पंजाब से, रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू रज जाजोरिया ने। और सुनते हैं ये गीत।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं दोस्ती फिल्म का एक गाना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडली लोहारा से, लिखने वाले हैं बलोव छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामूरिया, अजय तामूरिया, अलक कबीर, अल कबीर, तुषार तामूरिया, डॉली राधिका, बेबी पूजा तामूरिया, प्रभा देवी तामूरिया, ग्राम बन बघेरा से, ज़िला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश और अंजलि सारवा ने पसंद किया है इस गाने को। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस तिलक सागर से, लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुशूर, ऋषिका, रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 का दो दिवसीय आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। फोरम के दूसरे दिन आज एमपी अनलॉकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया विषय पर विशेष फायर साइड चैट आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य को देश के प्रमुख विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों पर विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमत बढ़ने का कारण एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं है, इसकी बजाय कम उत्पादन, बढ़ी हुई मांग, खराब मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान और जमाखोरी जैसे कारण हैं। मुरैना जिले में लंबे

समय से बंद कैलर्स शुगर मिल को फिर से शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए एमएसएमई विभाग द्वारा इच्छुक कंपनियों से ऑनलाइन प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रस्ताव जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदेश के 2 सरकारी शिक्षक भोपाल की डॉक्टर अर्चना शुक्ला और सीधी के शैलेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में मानसून टर्फ चक्रवात और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण बारिश का मजबूत सिस्टम सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। आइए हम शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। शाम 5:02 पर युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं। शाम 5:33 पर, 6 बजे, 8:15 पर और 6:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। किसानों का कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकते हैं 7:30 पर। 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर विज्ञान भारती, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। और साथ ही 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा, जिसमें कलाकार हैं श्रेयस नारायणन। इनसे आप सुनेंगे कर्नाटक वोकल। ये कार्यक्रम भी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज शाम के मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:02 होने को है। अब हमारा मीडियम वेव प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5 बजे से आप हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण सुन सकते हैं। इस बीच DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम के साथ, तो प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं जयति
1: और मैं काजल स्वागत करते हैं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: श्रोताओं, आज है शनिवार यानी हमारा फोन इन का कार्यक्रम जिसमें हम सुनेंगे आपकी पसंद के गीत और करेंगे आपसे कुछ गुफ्तगु।
1: जी हाँ, इसलिए जल्दी से अपने पेन और पेपर उठाइए और हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 2710223 और 2710224। याद रखिए हमारा STD कोड है 0731, जो कि आप नंबर से पहले लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
0: वैसे हम हमारे श्रोताओं से तो काजल बातचीत करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं कार्यक्रम की उस कड़ी में जहां हम पूछेंगे आपसे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। और उसी कड़ी में आज का पहला सवाल है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है।
1: और इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे।
0: हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम के अंत तक आप इन दोनों ही प्रश्नों के जवाब हमारे लिए ढूंढ कर रखेंगे। तो काजल, मेरा कहना है कि बिना किसी देरी के जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर के साथ में।
1: बिल्कुल।
0: हेलो फ्रेंड्स। हेलो
1: हेलो फ्रेंड्स।
2: हेलो
1: जी, नमस्ते।
2: जी नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे।
1: क्या नाम है आपका?
2: गुड इवनिंग जी, मेरा नाम है अनूप कुमार भट्टाचार्या
1: जी। और आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्रीभूमि, आसाम से ताल्लुकात है।
1: क्या बात है, आज हमें आसाम से कॉल आया है जयती।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है, दूर दूर से श्रोता जो है युवाणी के बढ़ते जा रहे हैं। तो बताइए, आज आप युवाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: तो पहले एक लाइन बोलू।
1: जी जरूर।
2: Life is full of uncertainties, but there will always be a sunrise after every sunset, है ना?
1: क्या बात है, क्या बात है। दरअसल बात यह है कि ऐसी अच्छी अच्छी बातों की हर रोज हर किसी को जरूरत होती है, इसलिए आपका शुक्रिया हमें ये बात बताने के लिए। पर अब जल्दी से आप हमें अपना गीत भी बता दीजिए।
2: जी, फिल्म का नाम है राजपूत और गाने का बोले से, मेरे संग संग, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला।
0: तो चलिए सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।
2: याद करता हूँ, कुछ दोस्तों का नाम लेता हूँ।
1: जरूर जरूर।
2: पहले है अविनाश जी के लिए, बसंतीलाल सूर्यवंशी, प्रेम जी चक्रवर्ती, अमर सिंह साहू और पुरुषोत्तम कुमार जी फ्रॉम कश्मीर और लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन मध्य प्रदेश से। और आपके लिए और ढेर सारे श्रोता भी सुन रहे हैं, सबके लिए।
1: क्या बात है, आपके सभी दोस्तों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और स्नेह। और लीजिए, अब सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: चलिए श्रोता, अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स।
3: हेलो, नमस्ते।
2: नमस्ते जी,
3: मैं अनिल भंडारे सुजामा नगर से बोल रहा हूँ।
2: नमस्ते अनिल जी, कैसे हैं?
3: बस आप कैसे हो? आपको प्रोग्राम सुनते हैं क्या? सातों दिन सुनते हैं।
2: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। पहले तो ये बता दीजिए हमें कि आज आप युवाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: आज मैं पुराने फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त का गाना सुनना चाहेंगे।
2: सम्राट चंद्रगुप्त का गाना सुनना चाहते हैं?
3: लता मंगेशकर, मम्मा रफी ने गाया है।
2: अरे वाह, क्या गीत है? गीत के बोल बता दीजिए एक बार।
3: कल्याण जी आनंद जी का संगीत है
2: जी।
3: चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरी तस्वीर की तस्वीर हो, बहुत प्यारा गीत है।
2: चलिए, बहुत ही अच्छी आपकी पसंद है गीत की। तो बताइए क्या चल रहा है अभी, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त?
3: बस ऐसा है कि मौसम का इंतजार कर रहे हैं, पानी गिर नहीं रहा है।
2: जी जी,
3: हम इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन कर रहे हैं।
2: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो ये हमारे मध्य प्रदेश में काफी प्रचलन में है, कुछ ऐसे रीति रिवाज जो हम

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के अगले कॉलर कौन है। हेलो फ्रेंड्स
3: जी, नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
3: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
2: जी एक बार फिर दोहराएंगे प्लीज।
3: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
2: अरविंद जी कैसे हैं आप?
3: एकदम बढ़िया है, आप कैसे हैं?
2: हम सब अच्छे हैं। और अब जल्दी से आपकी आज की जो फरमाइश है गीत की वो हमें बता दीजिए।
3: जी फिल्म का नाम रहेगा त्रिनेत्र।
2: जी फिल्म का नाम रहेगा
3: त्रिनेत्र।
4: त्रिनेत्र,
2: अच्छा। और उसके उसका कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
3: मैं तुझे छोड़ के कहां जाऊंगा।
2: तो कोई खास वजह है इस गीत के पीछे? कोई खास वजह है इस गीत के पीछे?
3: कोई वजह नहीं है वैसे।
2: अच्छा, तो चलिए, आपने आज आकाशवाणी में कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म त्रिनेत्र से।
3: धन्यवाद फोन लेने के लिए।
2: जी धन्यवाद।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: तो चलिए श्रोताओं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स।
3: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
3: हाँ, मैं त्रिपाठी जाकरे बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से।
2: पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहे? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आप अगर अपने रेडियो सिस्टम के पास में खड़े तो आप थोड़ा सा दूर हो जाइए, आपकी आवाज हम तक पहुँचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है।
3: नहीं मैडम, कोई कुछ भी नहीं है इधर।
2: अच्छा अच्छा, तो चलिए पहले हमें ये बता दीजिए कि आज आप युवाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: हाँ, मुझे मुकेश की आवाज में मिलन पिक्चर का गाना सुनना, पुराना गाना है।
2: गाने के बोल क्या है?
3: ऐसा हो जाए मेरी मिल दिया तो मिल जाए।
2: अरे वाह,
3: वाला गाना।
2: जी जी, बहुत ही अच्छी पसंद है। हम आपका गाना हमारे सिस्टम में ढूंढ रहे हैं, तब तक आप हमें ये बताइए कि क्या आप युवाणी हमेशा से सुनते आए हैं?
3: हाँ जी, पहले से सुनते आते हैं जी।
2: चलिए फिर, हमें मिल चुका है आपकी पसंद का ये गीत, तो सुनते हैं फिल्म मिलन से।
3: जी धन्यवाद।
2: धन्यवाद जी।

0: क्या बात है। तो बहुत प्यारा गीत सुना हमने, और अब चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ। तो हेलो फ्रेंड्स,
1: जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल। क्या नाम है आपका?
1: शिवा लोहट, MP विदिशा से।
0: क्या बात है, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आपकी मधुर मधुर आवाज सुन के और भी बढ़िया लग रहा है मैम।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: मैम, एक मूवी है परदेसी बाबू, उसमें एक गाना रहेगा, जाबे सजना मैंने करना तेरा एतबार।
0: क्या बात है। तो कोई खास वजह इस गीत के पीछे?
1: मैम, कोई खास वजह नहीं है, ये है कि गाया अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल। तो अगर आपको सुनने में ये गीत इतना पसंद है, तो बिल्कुल हम सुनवाएंगे आपको ये गीत। तो लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: चलिए श्रोताओं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स,
1: आपके एक मुस्कुराहट ने हमें बेहोश कर दिया, मूड में आने लगे, फिर आपने मुस्कुरा दिया।
0: मुझे आपका नाम मालूम है, फिर भी आप मुझे बता दीजिए। हाँ, हर शनिवार आपका कॉल कैसे लग जाता है मुझे ये बताइए। हमारे जो दोस्त हैं, मेरे घर वाले कई बार कॉल करने की कोशिश करते हैं, उनका कॉल कभी नहीं लग पाता, आपका अचूक कॉल लगता है हर बार।
1: एक बात बताओ मैडम, अभी हम जॉब पे था, थोड़ी जल्दी छुट्टी होगी तो थोड़े पाँव बढ़ा लेते, जल्दी जल्दी आ गए कि कॉल करना और लग गया। देखो
0: चलिए, हमारी खुशकिस्मती है कि हर शनिवार आपसे किसी ना किसी तरीके से बात हो ही जाती है हमारी।
1: जी
0: कैसी हैं आप, क्या कर रही हैं इस वक्त?
1: अच्छे मैडम, और आप लोगों को याद कर रहे थे।
0: बिल्कुल, तो चलिए बता दीजिए फिर कि आज आप युवाणी से आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: फिल्म का नाम है खेल और गाने की बोल है। सच लिखना है, सच कैसे लिखूं ये सोचती हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये सुना दीजिए।
0: आपने सुना ही दिया, फिर अब हमारी तरफ से बजाने का बताइए क्या रह गया। चलिए, फिर भी आपने इतने प्रेम से कॉल किया है तो सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो अब हम बड़ी ही उत्सुकता से जानना चाहते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो फ्रेंड्स
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है प्रेम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: क्या बात है, तो आज कौन से गीत की फरमाइश है आपकी?
1: तू चोर में सिपाही फिल्म का है, हम दो प्रेमी छत के ऊपर, गली गली में शोर।
0: क्या बात है, गाना तो बहुत ही अच्छा है और इससे खेल भी याद आ गया है, चोर सिपाही, जो बचपन में बड़ा ही खेला करते थे हम।
1: बिल्कुल खेलते थे चोर सिपाही का खेल, और एक चिट्ठियों द्वारा भी खेल खेला जाता था, चोर सिपाही और राजा
2: मंत्री उसमें रहता था। अभी आपको पता है उसमें एक और अब उसमें अपडेट हो गया है, अब रानी भी आ गई है उस गेम में। रानी के पॉइंट्स 800 होते हैं अब।
1: अरे वाह, ये मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा। हाँ। मैं भी इसको देखूंगा और खेलने की कोशिश करूंगा।
2: बिल्कुल, क्योंकि जहाँ राजा है वहाँ रानी को तो लाना पड़ेगा ना, अभी क्वालिटी का जमाना आ गया है।
1: जी बिल्कुल, चोर सिपाही, राजा रानी, मंत्री, मतलब पूरी सेटिंग हो गई,
2: पूरी सेटिंग हो गई, पूरी एक राज्य बिछा। इसके बाद अब हम थोड़े दरबान और ये सब भी ऐड करेंगे गेम में अगले 1-2 वर्ष में, तो हो ही जाएंगे, मंत्री और सारे उनकी पूरी सभा बैठेगी अब तो।
0: चलिए आप ये गेम खेलिए साथ में और उसी के साथ साथ। जी कहिए
1: जी, बताना चाहेंगे, मौसम काफी अच्छा है यहाँ पर अभी।
0: मौसम अच्छा होने की तो काफी जरूरत है, तो अब चलिए।
1: अच्छी बारिश भी हुई थी ना, और अभी फसलों को काफी मतलब फायदा हुआ बरसात की वजह से।
0: क्या बात है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको, और आप मौसम के मजे लीजिए और सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी धन्यवाद।

0: तो चलिए श्रोताओं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड्स,
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं अनिल दामनिया लातेहार जरूर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी कैसे हैं अनिल जी आप?
1: बस बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: बस ईश्वर की कृपा है। बताइए, आज आप आकाशवाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज का गीत मैं ये सुनना चाहता हूँ, स्वीकार किया मैंने।
0: स्वीकार किया मैंने, किस फिल्म से है ये गीत?
1: ये है, इसके गीत के बोल है, चांद के पास जो सितारा है वो फिल्म लगता है।
0: जी जी, चलिए हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। तब तक बताइए कैसे कैसे हैं आप, कैसा है मौसम वहाँ का?
1: बस इंदौर में ही है, तो इंदौर का मौसम तो आपको मालूम है, पानी गिर रही है, बारिश होती नहीं है।
0: जी बहुत, चलिए हो जाएगी होपफुली बारिश कुछ दिनों में अच्छी। तो
1: सुबह तो मौसम हो रहा था दोपहर में कि बारिश होने की संभावना, लेकिन देखो तो अभी तो धूप भी निकल गई थी। आते आते मैं जैसे स्कूल से आया तो मैंने देखा कि मौसम बिल्कुल साफ है।
2: कोई बात नहीं, आपकी तरह हम भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार करते करते लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: ओके, थैंक यू।

0: के अगले कॉलर कौन है? हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड्स,
0: नमस्ते।
1: मैं सतीश बात कर रहा
0: हूँ। जी सतीश जी, सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ
0: सतीश जी।
1: यार चंद्र भी बढ़िया आएंगे
0: जी।
1: और चंद्र के से चाहता हूँ पूरी।
0: सतीश जी आपकी जो आवाज़ है ना वो ज़रा रुक रुक रुक रुक कर हम तक पहुंच रही है, तो आप अपने रेडियो सेट से थोड़ा सा दूर जाकर हमसे बात करें।
1: नेटवर्क बहुत
0: नेटवर्क इश्यूज तो काफ़ी हैं इन दिनों। तो फिल्म चांदनी से आपने गीत बोला है?
1: हाँ चांदनी
0: जी, तो चलिए सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत फिल्म चांदनी से।
1: इंदौर का मौसम
0: जी, इंदौर का मौसम भी ऐसा है कि यहाँ पे भी बारिश का हम इंतजार ही कर रहे हैं और धूप खिली हुई है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
1: अरे मेरे ये धूप तो खिली नहीं है, लेकिन बादल हैं और
0: जी सतीश जी, दरअसल बात यह है कि आपकी आवाज़ जो है वो हम तक साफ साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, पर आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो श्रोताओं, ये था हमारे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत। हमें उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा,
1: और जिन लोगों से आज हमारी बात नहीं हो पाई है वो कृपया निराश ना हो और अगली बार उनकी हमसे ज़रूर बात होगी।
0: तो अब चलते हैं हम आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तरों की ओर, जिसमें आज का पहला सवाल था कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, और इसका सही उत्तर है मुंडक उपनिषद।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो उसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर।
0: अगर आपके उत्तर सही थे तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगर सही नहीं भी थे तो कोई बात नहीं, हर दिन कुछ एक नया सीखने का अवसर होता है। अब दीजिए इजाजत मुझे यानी कि जयती
1: और काजल को।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं सागर फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की, साथ ही हैं लता मंगेशकर, जावेद अख्तर के गीत के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: श्रोताओं, परिंदा फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज में।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420-2233 पर कॉल करें।
0: कार्यक्रम में श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं शक्ति फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत।
1: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: होता भारत।
1: श्रोताओं, विकसित होता भारत 2047 के आज के इस अंक के साथ हाजिर हूं मैं सोनल चौरे, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां दूरी का कोई महत्व नहीं रहा और इस दूरी को मिटाने का काम किया है दूरसंचार ने। दूरसंचार क्या है? ये सिर्फ मोबाइल या इंटरनेट नहीं, ये दो दिलों, दो विचारों और देश के हर कोने को जोड़ने वाला सेतु है। यदि शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ भी दूरसंचार का महत्व हम समझ सकते हैं। यदि आज लद्दाख का बच्चा भी दिल्ली के बेस्ट टीचर से ऑनलाइन पढ़ रहा है, वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो टेलीमेडिसिन से डॉक्टर अब गांव-गांव तक पहुंचकर अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो UPI, ई कॉमर्स, वर्क फ्रॉम होम, सभी कुछ दूर संचार पर टिका है। किसान अब अपनी फसल का दाम फोन से ही तय करता है। इसके अलावा दूर संचार आपदा के दौरान भी काफी मददगार साबित हो रहा है। बाढ़ हो या भूकंप, दूर संचार की सबसे पहले मदद पहुंचाता है।

0: श्रोताओं, दूरसंचार वह माध्यम बन चुका है जिससे अब हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। वहीं भारत सरकार द्वारा बात करें दूरसंचार की जनहितैषी योजनाओं की, तो ये क्या है और इनसे लोगों को क्या क्या फ़ायदा पहुंचेगा, इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे BSNL इंदौर संभाग के वरिष्ठ महाप्रबंधक पंकज उपाध्याय जी, और इनसे बातचीत करेंगे आशिम कुमार केतवास जी। आइए सुन लेते हैं ये भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं भारत संचार निगम लिमिटेड इंदौर संभाग के वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री पंकज उपाध्याय। और दोस्तों, आज हम उपाध्याय जी से बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा जो जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं अपने उपभोक्ताओं के लिए, इस विषय पर। तो पंकज उपाध्याय जी, आज आपका आकाशवाणी स्टूडियो इंदौर में आगमन हुआ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: धन्यवाद। मैं आकाशवाणी के सभी श्रोतागणों को स्वतंत्रता दिवस की BSNL परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं।
1: उपाध्याय जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम सुबह उठते हैं और जो दिन भर की हमारी दिनचर्या होती है, उसमें हमारे साथ एक ऐसा यंत्र होता है जो अगर हमारे साथ ना हो तो हम अपने जीवन की वर्तमान समय में कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं मोबाइल। और हम इतिहास के पन्नों को जब हम टटोलते हैं तो दूर संचार विभाग का वो बेल वाला जो टेलीफोन, वो याद आता है। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि पुराने वक्त में जब टेलीफोन डिपार्टमेंट यानी दूर संचार विभाग अपनी सेवाएं गांव तक पहुंचाता था, तो उस समय का क्या परिवेश था, और आज हम तकनीक के इस एक नए युग में आ गए हैं, आज का क्या परिवेश है आप देखते हैं?
2: मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि 1 अक्टूबर 2000 से अस्तित्व में आया, उससे पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हुआ करता था। और BSNL के अस्तित्व में आने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा था, उसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स की एंट्री भारत के टेलीकॉम सेक्टर में हुई
1: जी।
2: तो सरकार एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना चाहती थी, और उस लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट करने के तारतम्य में DOT से कार्व आउट करके भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन किया गया। और ये कंपनी 1 अक्टूबर 2000 से अस्तित्व में आई, और तब से लेकर अभी तक लगातार भारत सरकार का उद्देश्य ये है कि BSNL के माध्यम से जनसाधारण को सस्ती, सुलभ और क्वालिटेटिव सर्विसेज प्रदान की जाएं किफायती दरों पर
1: जी। जैसा आपने बताया कि कम्युनिकेशन की जो सेवा है वो बहुत ही सस्ती दरों पर हम हर व्यक्ति को या हर आम आदमी को जो भारत सरकार है वो देना चाहती है, और उसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड बनाया गया। हम पुराने वक्त की बात करते हैं तो उस समय जो तकनीक थी, वो तकनीक से जब आगे बढ़ते बढ़ते आज हम मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में है, तो इसके पीछे जो तकनीक में इनोवेशन हुए हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: टेलीकॉम बड़ा ही डायनामिक सेक्टर है और यहाँ पर हर दिन हर घंटा बदलाव हो रहा है
1: जी।
2: पहले आपने देखा होगा 2000 का एक इरा था जब बहुत बड़े बड़े हैंडसेट आते थे
1: जी।
2: और जो टेलीकॉम ऑपरेटर थे वो जो सेवाएं भी प्रदान करते थे, सिर्फ वॉइस कॉल होता था, डेटा होता नहीं था। 18-18, 20-20 रुपए पर मिनट इनकमिंग कॉल के भी चार्ज किए जाते थे
1: जी।
2: ये BSNL था। जब BSNL 2002 में मोबाइल सेवाएं लेके आया, उसने सबसे पहले इनकमिंग कॉल फ्री किए
1: जी,
2: जिससे कि जरूरत के वक्त अगर किसी को फोन किया जाए तो उसे भी उस कॉल को सुनने के पैसे ना देने पड़े। ठीक है, तो उस हिसाब से भारत संचार निगम लिमिटेड का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। वी आर नॉट हियर टू मेक द प्रॉफिट्स, वी आर हियर टू इंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड अमोंग द टेलीकॉम ऑपरेटर। एंड अदर देन दैट, अगर कहीं पे कोई कार्टलाइजेशन होता है प्राइवेट ऑपरेटरों का
1: जी,
2: तो BSNL को गवर्नमेंट एज ए टूल यूज कर सकती है, एक सस्ती और एक अच्छी प्रतिस्पर्धा रहे यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में उसके लिए।
1: जैसा आपने यहाँ प्रतिस्पर्धा की बात की, तो जब हम सन 2000 से आगे बढ़ते हैं और पहले वॉइस कॉल का आपने जिक्र किया यहाँ पर, और अब बढ़ते बढ़ते मोबाइल में हम इंटरनेट की जो सुविधा है वो हम देखते हैं, और उसके साथ साथ अब हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो अब केवल वॉइस के लिए नहीं रह गया है, उसमें पिक्चर भी इन्वॉल्व हो गया है। जब से ये सारी जो तकनीक है वो हमें मिली है, तो एक बड़ी क्रांति मोबाइल क्रांति के रूप में जो उभर के आई है, तो इस क्रांति में आज जो प्रतिस्पर्धा का दौर है उसमें बीएसएनएल की नई जो योजना है वो क्या है, ताकि आम आदमी को सस्ती दरों पर जो है सेवाएं उपलब्ध हो सके।
2: मैं आपके माध्यम से श्रोतागणों को बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल हमेशा से समाज के प्रति जो उसका दायित्व है उसको निभाने के लिए कटिबद्ध रहा है
1: जी।
2: आपने देखी होंगी जितनी भी आपदा की सिचुएशन होती हैं, चाहे साउथ इंडिया में बाढ़ फ्लड की सिचुएशन आई हो, केरला में, तमिलनाडु में, या उत्तराखंड में, या कश्मीर में भूस्खलन

0: बीएसएनएल देश में प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है,
1: जी
0: बीएसएनएल समाज सेवा के लिए है। और सरकार की तरफ से जो टेलीकॉम सेवा, जो सभी बाकी की और सेवाओं के साथ एक टेलीकॉम भी जो आजकल इसेंशियल सर्विस बन गई है, उसको देने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड का उपयोग किया जा रहा है। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम दो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे
1: जी
0: हैं। हमारी सरकार ने हमें मैंडेट दिया है कि आप अपना स्वदेशी तकनीक डेवलप करिए 4G के लिए।
1: जी
0: तो भारत संचार ने, मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने सी डॉट, जो कि हमारी ही सरकारी एक संस्था है, और TCS के साथ मिलकर स्वदेशी 4G तकनीक को इजाद किया। और वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में हम 1 लाख टावरों के साथ 4G की सेवाएं पूरे भारतवर्ष में प्रोवाइड कर रहे हैं।
1: जी
0: 2-3 दिन पहले ही आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, हमारा भारत सरकार ने 77,000 करोड़ रुपए का एक और पैकेज बीएसएनएल को दे रही है, जिसके तहत हम अगले 5 साल में करीब 1 से 1.5 लाख और नए टावर लगाने वाले हैं।
1: जी
0: अभी भी हमने बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में 4G टावरों की स्थापना की है जहां पर किसी भी अन्य ऑपरेटर का कवरेज नहीं है।
1: जी
0: मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर संभाग के धार और खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी के जो आदिवासी एरिया हैं और जो फॉरेस्ट एरिया हैं, जो पहाड़ी एरिया हैं, जहां पर किसी भी नेटवर्क ऑपरेटर का कवरेज नहीं है, बीएसएनएल ने 275 टावरों का वहां निर्माण किया है।
1: जी
0: और आज हम आदिवासी अंचल में अपने भाई बहनों के साथ वार्ता करने के लिए अगर चाहें तो कर सकते हैं, और वहां सुदूर अंचल में जो रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो भी टेलीकॉम सेवाओं का, डेटा सर्विसेज का लाभ उठा पा रहे हैं।
1: जी
0: इसके अलावा हम एक और बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को
1: जी
0: रिंग कनेक्टिविटी प्रदान करके हम एक इंटरनेट हाईवे का निर्माण कर रहे हैं।
1: जी
0: आज जैसी सेवाएं हमें बड़े बड़े शहरों में मिल रही हैं, इंटरनेट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस और लीज लाइन और बाकी अधिक सेवाएं, वो अब हम गांव गांव तक पहुंचा पाएंगे। वहां पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर जो स्कूल है, वहां पर और हमारे जो सरकारी विभाग कार्यरत हैं, और एक जो सिटीजन सर्विसेज बहुत सारी जो दी जा रही हैं डिजिटल फॉर्म में,
1: जी
0: उनको भी भारत सरकार और प्रदेश सरकार इफिशियंटली डिलीवर कर पाए, उस दिशा में बीएसएनएल बाकी सभी विभागों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है।
1: यहाँ सर, जैसा आपने जिक्र किया ग्राम पंचायतों के लिए जो प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर इन सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए बीएसएनएल की तरफ से फाइबर लाइन और जो मोबाइल इंटरनेट की लाइन है उनका कितना विस्तार है?
0: वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है।
1: जी
0: आप ये समझ लीजिए कि हर ग्राम पंचायत को दो डायरेक्शन से कनेक्ट करना, जैसे कि एक तरफ अगर लाइन कटती भी है तो दूसरी तरफ से वो चलता रहे, तो ये लाखों किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इवन मैं अगर मध्य प्रदेश की ही बात करूं तो इसमें भी हम करीब 2 लाख किलोमीटर के आसपास का जो फाइबर कनेक्टिविटी का जाल है वो इस प्रदेश में बिछाने जा रहे हैं।
1: जी ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, 2 लाख किलोमीटर का जो फाइबर कनेक्टिविटी का जाल है। ये हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, नसें कही जाती हैं, हाईवेज जो होते हैं वो कही जाती हैं, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में हमारी जो अर्थव्यवस्था वो बह रही है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही। इसके अलावा और क्या आगे की जो योजनाएं हैं हमारे इंदौर संभाग के लिए, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो शहरी क्षेत्र हैं जिनमें जो बीएसएनएल की जो सेवा है वो देने वाले हैं?
0: मैं आपके माध्यम से सभी श्रोतागण को बताना चाहता हूं कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम मोबाइल और हाई स्पीड लैंडलाइन ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में काफी सारे नए प्रोडक्ट अपने उपभोक्ताओं के लिए लेके आए हैं,
1: जी
0: तो मैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा।
1: जी
0: हम लोग नए मोबाइल कस्टमर के लिए, जिन्होंने अभी तक, जैसे मैंने बताया कि हम लोग बहुत सारे आदिवासी एरिया में गए हैं, वहां पे कई हमारे उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने कभी मोबाइल यूज नहीं किया,
1: जी
0: तो हम 1 रुपए में सिम प्रदान कर रहे हैं। 1 रुपए की सिम के साथ हम 24 दिन तक हमारे जो उपभोक्ता हैं वो 1 GBPS का डेटा डेली यूज कर सकते हैं, उसमें अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री है, और
1: जी
0: 100 SMS भी वो डेली के कर सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा हमारा जो एक फ्लैगशिप प्लान है मोबाइल का, एनुअल प्लान जो है, उसमें भी हम 2,399 रुपए में जो पहले 365 दिन के लिए मोबाइल सर्विसेज दे रहे थे, 2 GB का डेटा मिलता था, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी
1: जी,
0: और 100 SMS मिलते थे, वो अभी 365 दिन से हमने

0: वैलिडिटी बढ़ा के 412 दिन कर दी है
1: जी।
0: तो 412 दिन तक वो लाभ ले पाएंगे। और इसके अलावा एक सैटेलाइट फोन की सर्विसेज भी हम लॉन्च कर रहे हैं
1: जी।
0: सैटेलाइट फोन जो दूरस्थ के जो ऐसे एरिया जहां पे किसी भी मोबाइल कंपनी का कवरेज नहीं आ रहा है वहां पे वो सैटेलाइट फोन के माध्यम से डेटा और वॉइस यूज कर सकते हैं। भारत फाइबर ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में भी हम दो नए प्लान लेके आए। एक 111 का हमारा प्लान है, 1111 रुपए का फाइबर प्लान, जिसमें कि उपभोक्ताओं को 200 Mbps की स्पीड मिलेगी और वो स्पीड अप टू 5000 Gbps तक रहेगी। उसके बाद जो FUP लागू होता है वो होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, जो OTT का जो प्रॉब्लम होता था, अभी क्या होता है, आपने ब्रॉडबैंड ले लिया फिर आप अलग अलग OTT को सब्सक्राइब करते हैं
1: जी।
0: तो 1111 रुपए के साथ हम एक 27 OTT का बुके भी दे रहे हैं
1: जी।
0: तो उसमें उपभोक्ता अपने पसंद के सारे OTT का भी लाभ ले पाएगा, अनलिमिटेड कॉलिंग है ही। तो एक ये योजना है हमारी। एक हमने अभी सेल्फ केयर ऐप लॉन्च किया है
1: जी,
0: 15 अगस्त के उपलक्ष में, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में, वो आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिएगा। उसमें BSNL से संबंधित आपको सभी जानकारी मिलेगी और उसमें लाइव TV फ्री है। आप कोई सा भी TV चैनल देखना चाहें, न्यूज सुनना चाहें, दूरदर्शन का समाचार सुनना चाहें या और भी किसी अन्य चैनल की समाचार सुनना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट मूवी देखना चाहते हैं ऑन द गो, तो बहुत ही बढ़िया ऐप है वो
1: जी।
0: उसका हम आपके श्रोतागण और हमारे उपभोक्तागण लाभ उठाएं। तो इस तरीके से हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने उपभोक्ताओं के लिए ढेर सारे नए ऑफर्स लेके आए हैं जो कि मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे
1: जी। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात आपने कही और जो प्लान आपने बताए हमारे उपभोक्ताओं के लिए, उनको उसका लाभ लेना भी चाहिए। चलते चलते और आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं जो आकाशवाणी के श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक बार पुनः अपील करूंगा कि BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड आपकी कंपनी है, आपके द्वारा बनाई गई कंपनी है और आपके लिए है
1: जी।
0: तो हम मजबूती के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी टेलीफोन की जो जो जरूरत है, उन सबको पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: निश्चित रूप से बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा जो वर्तमान में जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता, हमारे ग्रामीण जन और जो भी BSNL की जो सेवाएं इस समय उपयोग कर रहे हैं, वे सभी साथी आपके द्वारा जो जानकारी दी गई उसका लाभ जरूर लेंगे। पंकज उपाध्याय जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी हमने सुना BSNL इंदौर संभाग के वरिष्ठ महाप्रबंधक पंकज उपाध्याय जी को, और श्रोताओं अब सुन लेते हैं ये गीत।

श्रोताओं, विकसित होता भारत 2047 के संदर्भ में भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। भारत सरकार का 5G व 6G मिशन है, जिसमें 5G रोल आउट जो 2022 से शुरू हुआ और अब यह 99% जिलों में उपलब्ध है। भारत 6G विजन के अंतर्गत 2030 तक भारत 6G तकनीक का विश्व लीडर बने और 2047 तक हम 6G के सबसे बड़े निर्यातक बने। इसके लिए 100 5G लैब्स कॉलेजों में खोले गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार की PLI योजना, जो कि टेलीकॉम उपकरणों के लिए है, इसका उद्देश्य है विदेश कंपनियों पर निर्भरता को खत्म करना। इसके लिए भारत में ही 4G 5G उपकरण बनाने पर सरकार 12,195 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दे रही है। तो दूरसंचार की इन सभी योजनाओं का उद्देश्य बस यही है कि हर हाथ में 5G 6G हो और हर तकनीक मेड इन इंडिया हो। और श्रोताओं, अब हो जाए एक और गीत।

0: श्रोताओं, विकसित भारत 2047 का संकल्प तभी पूरा होगा जब भारत का अपना 6G होगा, मेड इन इंडिया होगा, हर गांव में फाइबर और हाई स्पीड इंटरनेट होगा, स्मार्ट शहर, स्मार्ट खेती, स्मार्ट फैक्ट्रियां, सब दूर संचार से चलेगी। साइबर सुरक्षा में भारत दुनिया का लीडर बनेगा। जब हर हाथों में कनेक्टिविटी होगी, हर खेत में तकनीक होगी, तभी भारत सच में आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनेगा। और श्रोताओं, आज बस इतना ही। अब समय आपसे विदा लेने का। आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार। और अब अनुमति दें आपकी सखी सोनल चौरे को, स्वीकार करें मेरा नमस्कार।
1: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विकसित होता भारत। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे।
2: श्रोताओं, इस रविवार 23 अगस्त 2026 को सुबह 10:05 से 11 बजे के बीच सुनिए एक ही कैनवास पर संपूर्ण वाल्मीकि रामायण की अद्भुत चित्र यात्रा। और इसके कलाकार हैं डॉक्टर सीमा अलावा, और जिनसे भेंट की है राजेश ने।
3: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने रामायण के चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने के बारे में जो पहली बार आपने सोचा, कब सोचा और इस विचार के पीछे क्या प्रेरणा थी?
4: इसकी शुरुआत है ना 5 साल पहले हुई थी। मैं पिथौरा आर्टिस्ट भी हूँ, आपका गोंडी पे, आपका वर्ली, और मैंने स्पेसिफिक पिथौरा आर्ट पे बहुत काम किया है। लेकिन उनके साथ साथ मैं एग्जीबिशंस वगैरह में भी जाती थी। लेकिन चूँकि भगवान राम से जुड़े हुए थे, भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, तो एक मन था कि अब पिथौरा शैली में एक बहुत बड़ी रामायण बनाई जाए।
2: तो सुनना ना भूले आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से रविवार 23 अगस्त 2026 को सुबह 10:05 पर राम रंग।

यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब सीमा परवीन के स्वर में सुनिए सुगम संगीत। पहले सुनिए अहमद फराज का ये कलाम।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से सीमा परवीन के स्वर में आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए पेश है जिगर मुरादाबादी का ये कलाम।

श्रोताओं, सीमा परवीन के स्वर में अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, लोक संगीत में सुनिए बाबूलाल सोलंकी और साथियों के गाए लोकगीत। प्रस्तुत है ये पहली लोक रचना।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से लोक संगीत में आप सुन रहे हैं बाबूलाल सोलंकी और साथियों के गाए लोकगीत। प्रस्तुत है ये अगली लोक रचना।

0: श्रोताओं, लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे बाबूलाल सोलंकी और साथियों के गाए लोकगीत। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों और राज्य पुलिस तथा प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। गृहमंत्री ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृहमंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम हो सकता है, इनके सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। ये दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की कल विशाखापट्टनम में बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर 2 श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देशभर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
2: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे, तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है, तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। सांसदों ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को रोकने और नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। ये अपील पीओजेके में पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर के बाद आई है। क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी है और संचार बंद है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की ली यू शेंगशू और 10 इनिंग से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। श्रोताओं, प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी शाम 7:30 पर हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम सुर्खियों में रात 8 बजे भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। और कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया पेश होगा रात्रि 8:15 पर। चित्रगीत कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 9:15 पर। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे से प्रसारित होगा। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये थे आज के कार्यक्रम। अब कल के कार्यक्रम। भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना आप सुनेंगे कल प्रातः 6:05 पर। चिंतन होगा प्रातः 6:30 पर। और खेती की बातें होंगी कल सुबह 6

बजकर 35 मिनट पर। श्री रामचरित मानस गान हम आपको सुनवाएंगे कल सुबह 6:40 पर। वसुंधरा कार्यक्रम प्रसारित होगा कल सुबह 7:20 पर। कार्यक्रम में सुनिएगा पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित भरत कुमार उपाध्याय की कथा। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल हम लेकर आएंगे कल सुबह 7:35 पर। कल के सितारे बच्चे हमारे कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 8:30 पर। लोक संगीत में कल सुबह 9 बजे हम आपको सुनवाएंगे बाबूलाल धोलपुरे और साथियों के गाए लोकगीत, और सुबह 9:15 पर शुभधा जेजुरेकर के स्वर में होगा सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे भीमशंकर राव का गाया राग सिंदूरा आसावरी। जिले की चिट्ठी कल सुबह 10 बजे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं कल सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण की चित्र यात्रा राम रंग विषय पर सीमा अलावा सहायक पुलिस उपायुक्त की भेंटवार्ता भेंटकर्ता राजेश। कल 11 बजे भोपाल केंद्र से सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने। तो श्रोताओं ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: श्रोताओं, इस रविवार 23 अगस्त 2026 को सुबह 10:05 से 11 बजे के बीच सुनिए एक ही कैनवास पर संपूर्ण वाल्मीकि रामायण की अद्भुत चित्र यात्रा। और इसके कलाकार हैं डॉक्टर सीमा अलावा, और जिनसे भेंट की है राजेश ने।
1: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने रामायण के चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने के बारे में जो पहली बार आपने सोचा, कब सोचा और इस विचार के पीछे क्या प्रेरणा थी?
2: इसकी शुरुआत है ना 5 साल पहले हुई थी। मैं पिथौरा आर्टिस्ट भी हूँ, आपका गोंडी पे, आपका वर्ली, और मैंने स्पेसिफिक पिथौरा आर्ट पे बहुत काम किया है। लेकिन उनके साथ साथ मैं एग्जीबिशंस वगैरह में भी जाती थी। लेकिन चूँकि भगवान राम से जुड़े हुए थे, भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, तो एक मन था कि अब पिथौरा शैली में एक बहुत बड़ी रामायण बनाई जाए।
0: तो सुनना ना भूले आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से रविवार 23 अगस्त 2026 को सुबह 10:05 पर राम रंग।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएलआई योजना के माध्यम से 14 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अपनी फार्मर आईडी बनवाने की अपील की। प्रदेश में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत लोगों को दी जा रही विभिन्न योजनाओं की

0: को बढ़ावा मिला है। 15 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है और 14 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश के साथ साथ मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। हमारा मध्य प्रदेश आज देश में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला प्रदेश बन गया है। कभी मध्य प्रदेश पर बीमारू प्रदेश होने का टैग लगा दिया गया था, हमने इस टैग को पूरी तरह हटा दिया है। नई दिल्ली में आयोजित द इकोनॉमिक्स टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में फायरसाइड चैट ऑन एमपी अनलॉकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने चुनौतियों को पहचानकर तरक्की के अवसरों में बदल दिया। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। कृषि के मामले में तो हम पहले से आगे ही थे, अब औद्योगिक प्रगति में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन की नई तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से शिवपुरी में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली शामिल होकर किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फार्मर आईडी बनवाने का अभियान 20 अगस्त से शुरू किया गया है। किसानों को अब ना कहीं भटकना होगा और ना ही लंबी लाइनों में लगना होगा। शासकीय दल खुद किसानों के पास जाकर उनकी फार्मर आईडी बनवाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी किसानों से अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवाने की अपील की है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें विश्व लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। ये कानून के शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के जरिए विश्वास, स्थिरता और निश्चिंतता प्रदान करते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को प्रशासन जनता के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याएं सुन रहा है। इसी क्रम में नीमच जिले में अभियान के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर मयूरी जोक ने कल रतनगढ़ नगर परिषद के निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर परिषद द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। राजगढ़ में कलेक्टर ने महिला बाल विकास विभाग एवं आंगनवाड़ी परसाना स्कूल सुठालिया तहसील कार्यालय एवं महाविद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी की। जबलपुर जिले में अभियान के तहत सिहोरा विधानसभा क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का भ्रमण कर आम जन से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 24 अगस्त को भोपाल में कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव की थीम वन इंस्टीट्यूशन वन प्रॉमिस रखी गई है। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य मध्य प्रदेश की विकास प्राथमिकताओं को प्रदेश के अग्रणी केंद्रीय संस्थानों की शोध एवं नवाचार क्षमता, तकनीकी विशेषज्ञता, आधुनिक अधोसंरचना एवं मानव संसाधन से जोड़ते हुए भविष्य के लिए संस्थागत साझेदारी का प्रभावी मंच तैयार करना है। कॉन्क्लेव में प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित कृषि, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, रक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, कौशल

विकास और राज्य के प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों के सम्मिलित होने की संभावना है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर होने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार सागर, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, रीवा, उज्जैन, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं भारी बारिश तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक प्रदेश में इस समय 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय है। अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 24 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ सकती हैं। उज्जैन में शिवोत्सव श्रावण कला उत्सव के अंतर्गत कल 23 अगस्त को शाम 7 बजे से शक्तिपथ श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संस्कृति विभाग के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध शिव भजन गायक हंसराज रघुवंशी अपनी लोकप्रिय शिव भक्ति रचनाओं की प्रस्तुति देंगी। वहीं किशन भगत भी अपनी संगीतमय प्रस्तुति से श्रद्धालुओं एवं दर्शकों को शिव भक्ति से सराबोर करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा देवास में संचालित हॉकी फीडर सेंटर में वर्ष 2026-27 के लिए कल बालक एवं बालिकाओं का चयन किया जाएगा। आगरमालवा कलेक्टर द्वारा वर्ष 2026 के लिए 24 अगस्त, 19 अक्टूबर और 11 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। सीहोर जिले में सावन के अंतिम सोमवार और 25 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम तक निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर कल सुबह 6 बजे से 25 अगस्त रात 12 बजे तक भोपाल इंदौर हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह परिवर्तित रहेगी। श्रावण माह के अंतिम सोमवार के दौरान श्रद्धालु एवं कांवड़ यात्रियों की संख्या को देखते हुए खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप डिंडौरी जिले ने देश के 100 चयनित जिलों में जुलाई माह के प्रथम रैंक हासिल की है और विदिशा जिले में गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष में आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत सामाजिक समरसता और जन जागरी का संदेश दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: ये आकाशवाणी मध्य
6: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: सभी किसान भाइयों को मयंक शर्मा का नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल खेती विषय पर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
4: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
5: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
4: हाँ भाई समझा।
5: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
6: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
8: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
7: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
9: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
10: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
9: क्या, कैसे?
10: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
9: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
10: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: किसान भाइयों, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल खेती। आज जब हम बाजार जाते हैं तो सब्जियां, फल और अनाज खरीदते वक्त मन में एक डर होता है, क्या ये पूरी तरह शुद्ध है, क्या इनमें केमिकल तो नहीं। आज हमारी मिट्टी बीमार हो रही है और पानी पाताल में जा रहा है, तो क्या इसका कोई समाधान है? जी हाँ है, और इसी समाधान का नाम है टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल खेती, यानी सस्टेनेबल फार्मिंग। आज इसी पर हम बात करेंगे। किसान भाइयों, जब हम कहते हैं कि टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल खेती, तो इसका मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ पुरानी पारंपरिक खेती है या कुछ नया? टिकाऊ खेती का मतलब है ऐसी खेती जो आज हमारी ज़रूरतें पूरी करे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़मीन को बंजर न बनाए। यह परंपरा और विज्ञान का एक बेहतरीन मेल है। पिछले कुछ दशकों में ज़्यादा पैदावार के लालच में हमने खेतों में अंधाधुंध यूरिया, केमिकल और कीटनाशक डाले। इसे शुरुआत में तो फसल अच्छी हुई, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की जान निकल गई, मित्र कीट मर गए और हमारा पानी भी जहरीला हो गया। पर्यावरण अनुकूल खेती इसी नुकसान को रोकने की एक मुहिम है। जमीन की सेहत सुधारना ही इस खेती का पहला कदम है। बिल्कुल, मिट्टी जिंदा है, कोई बेजान चीज नहीं। अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो फसल भी सेहतमंद होगी और उसे खाने वाला इंसान भी। इसके 3-4 बेहद आसान और असरदार तरीके हैं, जैसे कि केमिकल खाद की जगह गोबर की खाद या केचुआ खाद का इस्तेमाल करें, हरी खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिट्टी को प्राकृतिक पोषण देती है। फसल चक्र, हर बार खेत में एक ही फसल न उगाएं, जैसे गेहूं या धान के बाद दलहन दालें उगाएं। साथ ही एक और उपाय है टिकाऊ खेती में, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज़्यादा फसल के सिद्धांत का पर काम करें। इसके लिए किसानों को टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा सिंचाई अपनानी चाहिए और 50-60% पानी की बचत होती है। साथ ही खेतों में मल्चिंग यानी सूखी पत्तियों या प्लास्टिक से मिट्टी को ढकना चाहिए, इससे धूप से पानी भाप बनकर न उड़े और मिट्टी में नमी बने रहे। आइए श्रोताओं, इस बात के बाद हम सुनते हैं ये लोकगीत जिसे गाया है प्रभुलाल मालवीय और साथियों ने।

किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये लोकगीत, और हम जैविक खेती या टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल खेती अपनाएंगे और अपनी ज़मीन को बचाएंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। अनुमति दीजिए, मयंक शर्मा को नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान

0: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे हमें सभी भैयन खो सभी बहनन खो आपकी अपनी पूनम बहन की दोई दोई हाथ जोड़ के राम राम पहुँच गए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जने खूब नौने हुए। देखो भैया बहना हरो, ऐसे तो हमारे किसान भैया बहन मुख्य फसल के संगे अपने खेतन में कछु न कछु उगाते हैं। सुबह बांस की खेती सोई कर सकते हैं। बांस को हरो सोना कही जात है, जो दुनिया को सबसे तेजी से बढ़वे वालों पौधा है, जो एक दिन में 3-3 फुट तक बढ़ सकते है। इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है कि जो एक प्रकार की घास है। जैसे साल 2017 में केंद्र सरकार ने ईखो वन उपज की सूची से हटा दो तो अब किसान अपने खेत में लगे बांस खो बिना कोनो परमिट के काट और बेच सकते हैं। एक और काम की बात हम अपने किसान भैया बहन खो कह वो चाहते हैं कि वे सरकारी नर्सरी या राष्ट्रीय बांस मिशन से प्रमाणित पौधा ही लेवे ताकि नकली पौधन से बचो जा सके। ऐसे तो बांस की खेती बहुत ही सरल है। गोबर की खाद और सुपर फास्फेट डाल के पौधा लगाए जा सकते हैं। खेत में 4 से 5 मीटर की दूरी रखें। एक एकड़ में लगभग 200 पौधा लगाए जाते हैं। बस किसानन को अपने जिला के वन विभाग स्थित जिला बांस मिशन कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करने हैं, जो खेती उन किसानन के लाने सबसे अच्छा विकल्प है जो कम पानी में और मेहनत में लंबे समय तक पक्की आमदनी करवो चाहत हैं। भैया बहना हरों, आज बड़ी ही अच्छी एक और जानकारी हम आप और अनकिला ने लेके आए हैं। तो सुनत है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से कृषि आजीविका ई विषय पे अधिकारियों और हितग्राहियों से बातचीत की स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग सहयोग है अंशु तिलेठे बहन को।
3: किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को अंशु तिलेठे का नमस्कार। सरकार किसानों के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए कई सरकारी योजनाओं को तत्वाधान में लाती है और हम अपने किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से इन योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से इन योजनाओं को किस तरह से हमारे किसान भाई और बहनें इन योजनाओं का लाभ लेकर उन पर क्रियान्वयन कर कैसे स्वयं को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने खेती में, खेती से जुड़े व्यवसायों में किस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं और अपने साथ साथ देश के विकास में अपना सराहनीय योगदान दे रहे हैं। तो कुछ इसी तरह से आज एक विषय मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हमारी कृषक बहनों को या हमारी ग्रामीण बहनों को, जो कि कृषि के क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती आ रही हैं, उन्हें और ज्यादा समृद्ध और सक्षम बनाने के लिए इस योजना को तत्वाधान में लाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, नारी शक्ति का स्वरूप है और वो घर और बाहर दोनों बड़ी सजगता से और ईमानदारी से और लगन के साथ संभालती है। तो आज हमने अपने कार्यक्रम में दो कृषक बहनों से बात की है, एक ड्रोन दीदी है, एक लखपति दीदी है, कि उन्होंने किस तरह से इस योजना का लाभ लिया और कैसे खुद को स्थापित किया और उदाहरण पेश किया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से। साथ ही हम आज के अपने इस स्थल रिकॉर्डिंग में बात करेंगे श्री मनीष पवार जी से, जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं भोपाल में।
4: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मैं मनीष पवार, राज्य परियोजना प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। आज हम चर्चा करेंगे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कृषि आजीविका के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि ही मुख्य आधार है हमारी आजीविका का, और इसी को सुदृढ़ करने के लिए आजीविका मिशन जो अपनी योजनाएं चला रहा है, जो अपने कार्य कर रहा है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा आजीविका मिशन के बारे में बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 2011-12 से संचालित है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाए जाते हैं। इन महिला स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया जाकर, इन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाकर, इन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध कराया जाकर आजीविका संबंधी गतिविधियां कराई जाती हैं, जिसमें इनकी आय बढ़ सके। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारा सपना है लखपति दीदी बनाए जाने का, उस सपने को साकार किया जा सके। तो आइए देखते हैं कि लखपति दीदी के सपने को साकार करने के लिए कृषि आजीविका के अंतर्गत जो हम कार्य कर रहे हैं वो क्या क्या है। कृषि आजीविका अंतर्गत आप देखें तो आजकल कृषि की जो लागत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगे फर्टिलाइजर, महंगे कीटनाशक जिनका आप उपयोग करते हुए अपनी खेती की लागत को बढ़ा रहे हैं। प्रथम प्रयास ये किया जाता है कि स्थानीय स्तर पे ही जैविक खाद स्वयं बना ली जाए, हमारी महिला समूह के द्वारा जैविक कीटनाशक तैयार कर लिया जाए और इसका उपयोग किए जाने से आप खेती की लागत को भी कम कर सकते हैं। तो आजीविका मिशन अंतर्गत आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में हमारी दीदियाँ, जो हमारी समूह की दीदियाँ हैं, ये पूरी तरह प्रशिक्षित हैं। ये अपने खेतों में बड़ा अच्छा खाद स्वयं तैयार कर लेती हैं, जैविक कीटनाशक, जैविक फफूंद नाशक, बीज को उपचार करने के लिए बीजामृत है ना आदि ये स्वयं तैयार कर लेती हैं और उपयोग भी करती हैं। तो खेती की लागत में कमी लाया जाना आजीविका मिशन का एक बड़ा मुख्य उद्देश्य है जिसपे हम लोग कार्यरत हैं। दूसरा हम जो मुख्य काम करते हैं कि जो अभी उत्पादन लिया जा रहा है इस उत्पादन में वृद्धि कैसे की जाए। कृषि की आजकल बड़ी अच्छी अच्छी नवीन तकनीकें आ गई हैं, श्री विधि से धान लगाना, धारवाड़ विधि से हमारी अरहर लगाना आदि, ये जो हमारी परंपरागत तकनीकें हैं इन पे अगर हम नवीन तकनीक को अप्लाई करते हैं। दूसरा आजीविका मिशन का एक बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि उत्पादन में वृद्धि कैसे की जाए। कृषि की नवीन तकनीकों को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, जैसे श्री विधि से धान लगाना, धारवाड़ विधि से अरहर लगाना, तमाम चीजें ये जो तकनीकें हैं जिसका अनुसरण हमारी दीदियां कर रही हैं और खेतों में इनके उत्पादन में वृद्धि भी हो रही है। तीसरा एक हमारा बड़ा मुख्य आप कह सकते हैं उद्देश्य है, फसल में विविधीकरण करना। जलवायु परिवर्तन के अगर हम परिणाम देखें तो आजकल सिर्फ एक फसल के अगर आप भरोसे किसान रहेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। फसल में विविधीकरण होती रहेगा तो अगर एक फसल हमारी चौपट हो जाती है या हमारी एक फसल खराब हो जाती है तो हम दूसरी फसल पर निर्भर रह सकते हैं। फसल विविधीकरण के अंतर्गत फलदार वृक्षारोपण जो है इत्यादि हम प्रमोट करते हैं। कई जगह बगियाएं लगाई गई हैं, बगिया मतलब कृषि के साथ आप फलदार वृक्ष भी ले सकते हैं। चौथा हमारा बड़ा मूल आधार स्तंभ है कि ये जो उपज आ गई है इसका उचित मूल्य दिला सके। उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए हमने प्रोड्यूसर ग्रुप्स हम प्रोत्साहित करते हैं। प्रोड्यूसर ग्रुप ऐसे ग्रुप्स हैं जो स्थानीय स्तर पे ही अपनी जो उपज होती है किसानों की छोटी छोटी उसे खरीद कर एक जगह एकत्र कर लेते हैं। वहां उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन मतलब छन्ना लगा देना, कंकड़ पत्थर हटा देना, थोड़ी सी ग्रेडिंग कर लेना और उसके बाद किसी बड़े बाजार में बेचना ताकि उचित मूल्य मिल सके। जोखिम कम करने के लिए फसल बीमा इत्यादि भी हम प्रमोट करते हैं। ये मुख्य आधार स्तंभ हैं जो आजीविका मिशन के कृषि आधारित आजीविका के अंतर्गत चल रहे हैं। अब ये हम करते कैसे हैं? इन कामों के लिए जो ग्राम स्तर पे हमारे पास उपलब्ध है वो हमारा एक कम्युनिटी कैडर है जिसे हम लोग रिसोर्स पर्सन भी कह सकते हैं। वो है हमारी स्व सहायता समूहों की दीदियां जो कृषि संबंधी कार्यों के लिए प्रशिक्षित हैं, जिसे नाम दिया गया है कृषि सखी। कृषि सखियां जो हैं वो गांव-गांव में जाकर महिला किसानों को प्रशिक्षित करती हैं। अब आप कहेंगे महिला किसान कौन है? आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों की वह दीदियां जो कृषि आजीविका अंतर्गत अपने खेतों में काम करती हैं, उन्हें हम महिला किसान कहते हैं। और आजीविका मिशन से जुड़कर ये एक अन्य पहचान भी उनको दिलाने का प्रयास किया गया है कि किसान को सिर्फ पुरुष ना समझाया जाए, महिला भी किसान हो सकती है और उन्हें हम महिला किसान का दर्जा देते हैं। इन महिला किसानों को कृषि की नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए उनके ही खेतों में जाकर प्रशिक्षित किया जाता है। ये काम कृषि सखियां हमारी करती हैं। अगर हमारी वन क्षेत्र की कोई दीदियां हैं जहां हमारी वनोपज होती है तो वनोपज को जंगल से कैसे लाया जाए, उन्हें किस प्रकार से प्रोसेस किया जाए और बाजार में बेचा जाए, इसके लिए हमारी इसी तरह की वन सखियां भी हैं जो गांव-गांव में काम कर रही हैं। अन्य जो काम कृषि आजीविका अंतर्गत आजीविका मिशन द्वारा किए जा रहे हैं वह है जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। मुझे बड़ी खुशी है कि जैविक खेती के अंतर्गत लगभग 30,000 एकड़ का क्षेत्र जो है वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक के अंतर्गत आजीविका मिशन द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही हम लोग प्राकृतिक खेती का भी प्रोत्साहन करते हैं, प्रमोट करते हैं कि प्राकृतिक खेती की भी जो नवीन तकनीकें इसके बारे में दीदियों को प्रचारित किया जाए। हैदराबाद मैनेज में एक राष्ट्रीय संस्थान है जहां से मध्य प्रदेश की हमारी जो कृषि सखियां हैं लगभग 6,000 वो प्रशिक्षित भी हैं और सर्टिफाइड भी हैं जो अभी वर्तमान में कृषि विभाग में अपनी सेवाएं दे रही है प्राकृतिक खेती के लिए। इसके अलावा आजीविका मिशन अंतर्गत कुछ एकीकृत कृषि के हमारे जो संकुल होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाता है। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन क्लस्टर्स में हम लोग लगभग 3 सालों में 40 लाख रुपए की एक सहायता देते हैं जिसमें आप जैविक संसाधन बनाना, जैसे जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, इनका उत्पादन करने के लिए जैविक उत्पादन संसाधन केंद्र की स्थापना की जाती है जो हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स के अंतर्गत करते हैं। आपने देखा होगा कि कृषि में आजकल ड्रोन का भी बड़ा उपयोग किया जा रहा है, खासकर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की स्प्रे करने के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी स्व सहायता समूह की दीदियां जो हैं वो आज की तारीख में ड्रोन दीदी के रूप में भी काम कर रही हैं और गांव में नैनो यूरिया और नैनो डीओपी का जो स्प्रे कर रही हैं उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 300 रुपए की उन्हें

0: सेवा शुल्क किसान द्वारा दिया जाता है, ये भी हमारी एक आमदनी का स्रोत है। मैं ये कहना चाहूंगा अंत में सभी श्रोताओं से कि आजीविका मिशन के अंतर्गत अगर आप कृषि आजीविका से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि गांव में रहने वाली जो दीदियां हैं हमारी, जो हमारी स्व सहायता समूह की सदस्य हैं, पहले वो बने। जैसे ही दीदियां हमारी स्व सहायता समूह में जुड़ जाती हैं तो अभी हमारा कर्तव्य होता है कि समूह से जो दीदी हमारी जुड़ी हुई है उन्हें कृषि की तमाम तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित करें, उनकी उपज में वृद्धि कराएं, उनकी उपज का हम उचित मूल्य दिलाएं और पूरा प्रयास करें कि उनकी वार्षिक आय जो है वो साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो सके और वो एक लखपति दीदी हो सके। नमस्कार।
1: अभी हमने मनीष पवार जी से राष्ट्रीय ग्रामीण परियोजना के विषय में विस्तृत जानकारी ली। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम आपके साथ राज्य परियोजना प्रबंधक श्री महेश वामनकर जी से उनके विचार जानते हैं।
2: मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों विशेषकर महिलाओं को स्व सहायता समूह में जोड़कर उन्हें अस्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया जाता है। आजीविका शाखा द्वारा स्व सहायता समूहों की महिलाओं को कृषि एवं गैर कृषि आधारित विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने के साथ साथ पशुपालन आधारित आजीविका को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। पशुपालन के क्षेत्र में महिलाओं को संगठित कर पशुपालन आधारित उत्पादक समूह, क्लस्टरों और कंपनियों का गठन किया जा रहा है। इन समूहों के माध्यम से पशुपालकों को बेहतर पशु प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, नस्ल सुधार एवं बाजार से जुड़ाव के लिए मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। पशुपालकों को उनकी गतिविधियों से बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त हो इसके लिए समूहों को आगे बढ़ाकर उत्पादक समूह, उत्पादक कंपनियों के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में पशुपालन आधारित लगभग 20 कंपनियों का गठन किया जा चुका है जिनका वार्षिक टर्नओवर लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का है। इन माध्यम से पशुपालकों को इस कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों जैसे पशुपालन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग आदि के साथ में अभिसरण कर कार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार, संतुलित पशु आहार एवं पशुपालकों को नए तकनीकी ज्ञान हेतु उनका क्षमता वर्धन आदि का कार्य किया जा रहा है। आजीविका मिशन का प्रयास है कि ग्रामीण महिलाओं और पशुपालक परिवारों की आय के स्रोत को मजबूत किया जाए एवं उन्हें केवल लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि उद्यमी और उत्पादक के रूप में भी विकसित कर उन्हें लखपति बनाया जाए। सशक्त महिला, समृद्ध परिवार और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसी संकल्प के साथ मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निरंतर कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़कर उनकी आय में सतत वृद्धि तथा उन्हें लखपति बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण को ग्रामीण महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं स्थायी आजीविका गतिविधि के रूप में विकसित किया जा रहा है। मिशन द्वारा स्व सहायता समूह सदस्यों को डेयरी, बकरी पालन, ग्रामीण कुक्कुट पालन, पशु आधारित खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य संबंध गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इन गतिविधियों को केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित न रखते हुए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत समान गतिविधि करने वाले समूह को संगठित कर पशुपालन क्लस्टर, उत्पादक समूह एवं उत्पादक कंपनियों का गठन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य है कि इन सभी प्रयासों को और अधिक व्यापक बनाते हुए अधिक से अधिक स्व सहायता समूह परिवारों को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं लखपति दीदी बनाया जाए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद।
1: अभी हमने श्री महेश वामनकर जी को सुना। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम अब राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना से लाभान्वित हुई ड्रोन दीदी कविता चौहान, उनकी सफलता की कहानी उनके मुख से सुनते हैं।
3: नमस्कार, मैं कविता चौहान खंडवा जिले के ग्राम रेवापुर से। मुझे आजीविका मिशन के माध्यम से ड्रोन मिला है जिससे हम किसान भाइयों के खेतों में कीटनाशक एवं नैनो खाद यूरिया डीएपी के स्प्रे का कार्य करते हैं। यह कार्य मैं पिछले 2 वर्षों से कर रही हूँ जिसमें मैंने 2 वर्षों में 9 लाख रुपए की इनकम प्राप्त की है। यह सफलता मुझे आजीविका मिशन के माध्यम से मिली है क्योंकि इसके माध्यम से ही मैंने कृषि सखी का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद मुझे ग्वालियर में ड्रोन की ट्रेनिंग मिली तथा इसके बाद खंडवा से मुझे ड्रोन मिला। आज

0: मुझे इस कार्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। मुझे एक उड़ान मिली है जिसमें मैं अपने गांव, शहर तथा मध्य प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती हूँ। हमारे प्रशासन एवं आजीविका मिशन के महिला सशक्तिकरण के अथक प्रयासों से आज हम महिलाएं अपने सपनों में उड़ान भर रही हैं। आज मुझ जैसी मेरे देश की अन्य बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह सब हमारे प्रशासन एवं मिशन के महिला सशक्तिकरण के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है। आज मैं अपने प्रांत में ड्रोन के माध्यम से एक अच्छी इनकम ही नहीं, बल्कि मेरे मध्य प्रदेश में मुझे एक नई पहचान मिली है। आज मुझे जहाँ भी मैं खड़ी होती हूँ, मुझे ड्रोन दीदी के नाम से पहचाना जाता है। आज हम महिलाएं घर से बाहर निकलकर हमें भी अपने कार्य विस्तार को बढ़ाने का अवसर मिला है, क्योंकि हम जैसी कई बेटियां शिक्षित होने के बावजूद भी घर में ही रहकर सिमट जाती है, क्योंकि आजीविका मिशन के इस प्रयासों से हम महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपने कार्य विस्तार कर रही हैं तथा एक नई पहचान बना रही हैं। हमारा निमाडांचल एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यह ड्रोन हमारे निमाडांचल कृषि प्रधान क्षेत्र में एक अनमोल सौगात के समान है। ड्रोन का सफर मेरे लिए कुछ ऐसा है, इसमें मुझे एक नई पहचान, इनकम, सम्मान, यहाँ तक कि मेरे सपनों को उड़ान भरने की मुझे इसमें बहुत बड़ी ताकत मिली है। आज मैं मेरे परिवार से लेकर गांव, शहर, जिला में बहुत जहाँ भी खड़ी होती हूँ, सम्मान से खड़ी होती हूँ। इससे मुझे और मेरे जैसी अन्य बेटियों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है, क्योंकि हम यदि परिवार में कुछ करने में असमर्थ हो जाते हैं तो आजीविका मिशन ने हमें एक बहुत बड़ी हिम्मत देकर, ताकत देकर आगे बढ़ाया, हमें ट्रेनिंग दिलाई। यहाँ तक कि इन प्रयासों से हम महिलाएं हमारे परिवार में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर की जिम्मेदारी में बोझ न बनते हुए उनके साथ एक साथी एवं सहयोगी की भूमिका अदा कर रही हैं की भूमिका अदा कर रहे हैं। आज मैं उन सभी महिलाओं को मेरा संदेश पहुंचाना चाहती हूं, चूंकि मुझे आज आपके समक्ष मेरे विचार साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं उन सभी महिलाओं से यह रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम महिलाओं में वो शक्ति होती है कि हम अपने परिवार के साथ घर के काम काज को पूरा करने के बाद भी यदि हमें अंदर से कुछ करने की शक्ति होती है, वो चाह होती है, वो आत्मविश्वास होता है कि हम कुछ करेंगे, तो यकीन मानिए हम सब कुछ कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज मुझे आपके समक्ष अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं अपने विचारों को पूर्ण विराम देते हुए मेरे आजीविका मिशन प्रशासन को धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी हमने कविता चौहान जी को सुना, जो कि ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती हैं। हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से लाभान्वित हुई लखपति दीदी सुरभि शर्मा जी से उनके लखपति दीदी बनने की कहानी।
2: सभी को नमस्कार, मेरा नाम सुरभि शर्मा है। ग्राम दुपड़िया बिल, जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। ग्रामीण आजीविका मिशन में समूह सदस्य हूँ और कृषि सखी का कार्य करती हूँ। ग्रामीण आजीविका मिशन में जुड़ने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन ग्रामीण आजीविका मिशन में जुड़ने के बाद मेरे लिए कृषि सखी का कार्य मिला, जिससे मेरी आजीविका में बढ़ोतरी हुई और मैं आज कृषि सीआरपी के पद पे कार्य करती हूँ। कृषि सीआरपी के जो ट्रेनिंग हैं मुझे प्राप्त हुई, जिले स्तर से, स्टेट लेवल से और ब्लॉक लेवल से भी मुझे ट्रेनिंगें मिली। जो ट्रेनिंगों में मैं सीख के आती थी या योजनाओं की जानकारी मुझे प्राप्त होती थी, वह मैंने आके अपने आसपास के किसान दीदियों को दी और उन्हें जागरूक किया और योजनाओं तक पहुंचाया, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में सारी दीदियों को अपना एक आजीविका बढ़ाने का मौका मिला। इसी के साथ साथ मैं लखपति दीदी भी हूँ और नमो ड्रोन दीदी के रूप में भी जानी जाती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो नमो ड्रोन दीदी योजना चलाई थी उसके तहत मुझे 100% सब्सिडी में ड्रोन प्राप्त हुआ है। साथ ही मैं महिला किसान क्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ। मैं आजीविका मिशन में एक सदस्य के रूप में जुड़ी थी, लेकिन आजीविका मिशन के द्वारा आज मेरी पहचान कई रूपों में है। मैं एक कृषि सीआरपी हूँ, मैं नमो ड्रोन दीदी हूँ, ड्रोन पायलट बनके सभी के सामने हूँ। इसी के साथ साथ मेरे दाल मिल का बिजनेस है और मैंने खुद की अपनी एक कृषि सेवा केंद्र की दुकान भी खोल रखी है, जिससे मैं अपनी आजीविका चलाती हूँ। ग्रामीण आजीविका मिशन में जुड़ने के बाद मैंने जो जो सपने देखे थे वो सारे मेरे पूरे हुए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती।
1: अभी हमने सुरभि शर्मा जी को सुना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को समझा। तो ये थी हमारी आज की स्थल रिकॉर्डिंग। नमस्कार।
3: अभी आपने सुना जो अधिकारियों और हितग्राहियों से बातचीत की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से कृषि आजीविका ई विषय पे। रिकॉर्डिंग सहयोग हतो अंशु तिलेठे बहन को। और चलो भैया बहनाहरों आपका छू मनोरंजन हो जाए। सो चलो अब आप उनको सुनवात है जो कजरी चंदा श्रीवास की गाई भाई।

अभय पन्ना सुनी जो कजरी चंदा श्रीवास की गाई। अगर हमारे भैया बहनन को सभी जरूरी जानकारियां एक ही जगह पे मिल जावे तो इसे अच्छा तो कछु हो ही नहीं सकत। भारत विस्तार योजना केंद्र सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जिको पूरा नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 के बजट में करी हती और 17 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के जयपुर से इको लॉन्च करो हतो। योजना को मुख्य उद्देश्य देश के छोटे से छोटे किसान तक सही समय पर सही वैज्ञानिक जानकारी पहुंचावो है। भारत विस्तार एक बहुभाषीय एआई टूल है जो इन सभी समस्याओं को समाधान एक ही जगह पर दे देते है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जो वॉइस फर्स्ट तकनीक पे काम करत है, यानी किसानन को स्मार्टफोन की या फिर इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़त। वे सिर्फ हेल्पलाइन नंबर 155261 पे फोन करके अपनी भाषा में सवाल पूछ सकते हैं। किसान इसे मौसम का पूर्वानुमान, कीटन की चेतावनी, मिट्टी की सेहत, बीज खाद सिंचाई की सलाह, फसल बीमा, सरकारी योजना की जानकारी ले सकते।

0: स्वागत है। और अब आपको बता देते हैं मंडी के भाव। 21 अगस्त को इंदौर मंडी में सरसों को न्यूनतम भाव है 5,195, अधिकतम भाव है 5,400 रुपया। सोयाबीन को न्यूनतम भाव है 3,450, अधिकतम भाव है 4,055। गेहूं को न्यूनतम भाव है 2,350, अधिकतम भाव है 3,130। डॉलर चना को न्यूनतम भाव है 6,400, अधिकतम भाव है 9,765। देसी चना को न्यूनतम भाव है 4,975, अधिकतम भाव है 7,010। मसूर को न्यूनतम और अधिकतम भाव है 5,380। मटर मैंने बटला को न्यूनतम भाव है 4,240 और अधिकतम भाव भी जोई है। मूंग को न्यूनतम और अधिकतम भाव है 6,695। राजमा को न्यूनतम भाव है 7,405 और अधिकतम भाव है 8,000 प्रति क्विंटल। भैया बहनों, योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन उनकी सही जानकारी भी हमारे भैया बहनों को मिलबो जरूरी है। हम पूरी कोशिश करत रहते हैं कि अपने भैया बहनों के लाने सही और विस्तृत जानकारी देवे। सो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज के कार्यक्रम में जो भी जानकारियां हमने आपको दी वे आप और उनके काम में आए, और खेती किसानी के लाने सरकार की इन सभी योजनाओं को फायदा भी आप उठाओ। और इसके संग ही आज को किसान वाणी कार्यक्रम हमें तय समाप्त करते हैं। स्वीकार करो पूनम बहन की, राम राम।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: आंगनवाड़ी।
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
2: आकाशवाणी भोपाल से। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
3: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एआई, कौशल विकास और सतत पर्यटन पर ब्रिक्स देशों के साझा विजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
4: जयपुर में आयोजित ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक काफी अहम रही। भारत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सदस्य देशों ने जयपुर घोषणा पत्र को मंजूरी दी। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, युवाओं के कौशल विकास और यात्राओं को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। इस बैठक के दौरान भारत ने ब्राजील, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की। यानी जयपुर में चर्चा सिर्फ ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत के इन देशों के साथ पर्यटन संबंधों को आगे बढ़ाने पर भी बात हुई। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत जी। अनिल त्रिगुनायत जी, आपका हमारे कार्यक्रम सुर्खियों में हार्दिक स्वागत है।
5: थैंक यू सो मच।
4: अम्बेसडर त्रिगुनायत, जयपुर घोषणा पत्र के बारे में हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में बताइए, इसमें मुख्य रूप से किन बातों पर सहमति बनी है और ब्रिक्स देशों के लिए इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है?

0: देखिए, जैसा आप जानते हैं कि भारत इस वर्ष ब्रिक्स का अध्यक्ष है और 2026 में सितंबर में मेन समिट होने वाली है, और इस समिट में सारे जो 11 देश हैं जो मेंबर हुए हैं बढ़ने के बाद में, वो सब शिरकत करेंगे इसके अंदर। और इसके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, और उसमें जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था, जैसे कि ब्रिक्स को बदल ही दिया उन्होंने, उसका नाम ही बेसिकली उन्होंने कहा इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा आज की मॉडर्न एज में। और वो ये है कि बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ में इनोवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और P2P कनेक्ट जो है और ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो अप्रोच है वो हमेशा से भारत ने अपनाई है। आपको मालूम है कि हमेशा से, चाहे हमारा G20 का रहा हो या कहीं पे भी दुनिया के अंदर में, प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर से ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। और पीपल सेंट्रिक अप्रोच में टूरिज्म जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि जब तक लोग एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, उसके अप्रिशिएट नहीं करेंगे उनके कल्चर को, उनके सिविलाइजेशन को, और एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ती है, अप्रिसिएशन बढ़ता है, कल्चरल कनेक्ट बढ़ता है, तो ये सारी चीजों के लिए बहुत आवश्यक है। और इसी के सिलसिले में जो जयपुर के अंदर में जो मीटिंग हुई है, टूरिज्म का जो वर्टिकल है उसकी 12वीं मीटिंग थी, तो उसके अंदर में नई चीजें, क्योंकि आज की डेट में देखिए टूरिज्म भी बहुत बदल गया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से नई टेक्नोलॉजी, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैसे बनाया जाए, टूरिज्म का स्किलिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह से की जाए और किस तरह से इसको सुलभ बनाया, ये सारी चीजों के ऊपर में काफी कुछ मैं समझता हूँ जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक अच्छा एग्रीमेंट है जिससे ये आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद भी अभी और भी काफी चीजें उसके अंदर करने की है। मेरा मानना यह है कि सबसे मुख्य बात यह होती है, और भारत जो है, आप ये देखिएगा कि सारे में जो 11 कंट्रीज हैं उसमें काफी सारे कंट्रीज जो हैं बहुत बड़ी पुरानी सिविलाइजेशंस के हैं,
1: जी
0: और उनके पास में बहुत बड़ा एक खजाना है जिसको देखने के लिए, जैसे भारत एक प्राचीन देश है और यहाँ पर इतनी सारी चीजें देखने के लिए हैं लोगों के लिए, तो टूरिज्म जो है आते हैं पर्यटक यहाँ पर, इसी तरह भारतीय पर्यटक भी दूसरी नंबर में दुनिया भर में जाते हैं। लेकिन भारतीय पर्यटक तब जाते हैं जहां पर के उनको वीजा वगैरह मिलना आसान होता है। बहुत से कंट्रीज जो है उनके वीजा प्रोसेस बहुत ठीक नहीं है, सुलभ नहीं है, तो इसलिए वहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते इतना ज्यादा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो कंट्रीज हमारे ब्रिक्स के हैं, अगर उनको वाकई में कोऑपरेशन को और भी ज्यादा किसी हद तक लेके जाना है, तो उसमें आवश्यक है कि ये ईज ऑफ ट्रेवल बहुत जरूरी है, और ये
1: जी
0: खाली जो है वो ग्रुप टूर्स की भी नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल टूरिस्ट के बारे में भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस बात के ऊपर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जरूर हुआ होगा। और
1: जी
0: किस तरह, इसी तरह से तभी जैसे डिजिटल भारत जो है, जानते हैं आप के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने बड़ा नाम कमाया है, और उसको किस तरह से टूरिज्म क्षेत्र में, चाहे वो मैनेजिंग सस्टेनेबल साइट्स हो, किस तरह से जो डेस्टिनेशन का मैनेजमेंट होता है, जैसे लोग जाते हैं तो कैसे उनको कॉन्टेक्ट कनेक्ट करेंगे, किस तरह से ट्रैवल फैसिलिटेशन हो सकता है, तो ये सारी बातों के ऊपर में मैं समझता हूँ काफी गहराई से डिस्कशन हुआ है, और इससे काफी बड़ा फायदा जो है सभी देशों को इसका मिलेगा अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है तो।
1: अम्बेसडर त्रिगुनायत, घोषणा पत्र में पर्यटन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है, इस पर आपके क्या विचार हैं?
0: बिल्कुल, आप ये अगर देखें तो भारत ने भी अपना भाषणी एक बनाया है, सॉफ्टवेयर AI ड्रिवन है, और उसके अंदर में सारी भाषाओं के अंदर आप बोलते जाएं तो दूसरी भाषाओं के बारे में बताता रहता है, तो ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली रियल टाइम बेसिस पे करते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। तो जहां तक लैंग्वेज की स्किल्स, क्योंकि हम बहुत से कंट्रीज में, मान लीजिए आप चाइना में जा रही हैं या आप रशिया जा रहे हैं, तो वहां पर लोगों को जो है अंग्रेजी नहीं आती इतनी, तो वहां पर आवश्यक है कि आप अपनी कम्युनिकेट कर पाए, किसी तरह समझ पाए कि आखिरकार है क्या। आजकल तो खैर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस वगैरह इस तरह की आ गई है कि आप उधर अगर उसको उनके लैंग्वेज में लिखा हुआ जो चीज, अगर आप उसको देखें और आप इंग्लिश में उसका मतलब जानना चाहते हैं तो वो भी कर देता है। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं समझता हूँ हमारी जीवन का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा हो गया है, और उसके चलते देखिए आपका डिजिटल करेंसीज बहुत सी जगह आप जाएंगे, अब भारत है और भी देश है जिन्होंने अपनी अपनी करेंसीज को डिजिटाइज किया है, और इनसे UPI जैसा है वो भी जो है डिजिटल बेस्ड है, तो उसको कैसे यूज किया जा सकता है, तो अब करेंसी ले आने की भी जरूरत नहीं है वहां पर, तो उससे भी काम कर सकते हैं कुछ कंट्रीज के अंदर में। तो ये मेरा मानना है कि ये जो टेक्नोलॉजीज है वो खाली ये बुकिंग, फैसिलिटेशन, ट्रैवल और इन सब चीजों में ही मदद नहीं करती, बल्कि आपकी डे टू डे लाइफ को भी काफी सिंप्लीफाई करती है। तो इन सारी चीजों में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान जो है टेक्नोलॉजी का रहा है।
1: जी अम्बेसडर त्रिगुनायत, हम देखते हैं कि जब विदेशी पर्यटक भारत आते हैं तो वे सिर्फ हमारे पर्यटन स्थल नहीं देखते बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली को भी समझते हैं। क्या इसे भारत की सॉफ्ट पावर का हिस्सा माना जा सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, टूरिज्म तो एक है ही सॉफ्ट पावर का हिस्सा, क्योंकि देखिए जब आप खुद बाहर जाए या लोग आपके देश में आए, जब वो आते हैं तो वो देखते हैं। इसीलिए तो भारत की जो एक कमाल की जो हमारी संस्कृति है, जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी जो है कलर्स है, उसको जब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे इतने सारे लोग इतनी डाइवर्सिटी में इतनी अच्छी तरह से कैसे रह पाते हैं, इतना कलरफुल कंट्री कैसे है, इतने फेस्टिवल्स कैसे हैं। तो उनको ये तो जब टूरिज्म के लिए जाते हैं आप, तो पर्यटन में ये सब चीजों का तो बड़ा महत्व है। खाली वो आप हेरिटेज साइट्स को देखने के लिए नहीं जाते हैं, वहां पर आपको कल्चरल प्रोग्राम देखने मिलता है, लोगों को समझने का मौका मिलता है, खाने का मौका मिलता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। और उसमें भारत ने एक बड़ी अच्छी बात करी है, चाहे वो G20 समिट रही हो हमारी 2023 की या ये वाली ब्रिक्स की समिट है, कि हमने ये सारी भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग मीटिंग्स करी हैं। तो 400 मीटिंग करीब इसकी ब्रिक्स की होनी है, आप सोच लीजिए, अभी 350 के ऊपर ऑलरेडी हो चुकी हैं। और 12-13 सितंबर को मेन समिट मीटिंग है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष आएंगे यहाँ पर। तो ये उसका कल्चर जो है, संस्कृति जो है, सिविलाइजेशन जो है, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है टूरिज्म के लिए। जब भी कोई जाता है तो वो देखने जाता है, कहाँ लोग आते हैं भारत में तो चलिए क्या क्या देखेंगे भाई। तो जगह जगह दिल्ली में कुछ और है, आगरा में कुछ और है, जयपुर के अंदर में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, टेम्पल्स हैं हजारों साल पुराने, तो देख के चकित हो जाते हैं लोग के किस तरह से कल्चर आपकी जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, फिर वो बार बार आते हैं अगर उनको अच्छा लगता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इसके सिलसिले में इसमें एक और बड़ी बात हुई है कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग हो, कैसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, फॉर एग्जाम्पल बहुत सी चीजें जो है रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है, कम्युनिटी टूरिज्म जो कहते हैं वो भी बड़ा अच्छा है वहां पर। तो मैं समझता हूँ तो ये सब बड़ी जरूरी चीजें हैं।
1: अम्बेसडर त्रिगुनायक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि घोषणा पत्र में पर्यटन से जुड़े लोगों के कौशल विकास और ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया है, और जैसा आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात की, तो इससे भारत और दूसरे ब्रिक्स देशों को क्या फायदा हो सकता है?
0: देखिए बिना स्किल के तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आप तो टूरिस्ट हैं, आपको जाना है, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी टूर ऑपरेटर से बात करते हैं, उस टूर ऑपरेटर को पूरा पता होना चाहिए कि किस तरह से हम टूर को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम आपको हेल्प करेंगे, जब आप वहां जाएंगे तो उस कंट्री में उसका क्या पार्टनर होगा, वहां से कैसे जाएंगे। तो इसलिए स्किल जो टूरिज्म के ऐसे कॉलेजेस हैं, कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर इस तरह के कोर्सेज दिए जाते हैं प्रॉपरली प्रोफेशनल वे में होता है, तो उसी के बाद में आप होटल में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर में एम्प्लॉय होते हैं, चाहे होटल में जाइए तो वहां पे भी तो ट्रेनिंग होती है उनकी। तो टूरिज्म के जो तो ये सारे उसी के हिस्से हैं, उसी के अंग हैं डिफरेंट। तो ये मैं समझता हूँ इससे क्या होगा कि जो कि अगर इंक्रीमेंट जो हुआ है तो दोनों कंट्रीज अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अपने इंस्टीट्यूशनल कनेक्शंस हैं, अपने प्रोग्राम्स एक दूसरे के साथ में, तो उससे एक तो अप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, और दूसरी चीज यह है कि वो एक स्किल मैन पावर, और स्किल मैन पावर को रीस्किल करना पड़ता है। देखिए अब आजकल ये 10 साल पहले ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज है, तो जो हमारे लोग जो पुराने मैनेजर्स कहिए या दूसरे लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, उनको भी अडेप्ट करना है कि नई टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक एजुकेशन के जरिए से और स्किलिंग और रीस्किलिंग के जरिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए हो सकता है।
1: अम्बेसडर त्रिगुनायत, बैठक के दौरान भारत ने ब्राजील, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और UAE के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की, इन बैठकों की क्या अहमियत है?
0: तो होता क्या है कि देखिए जब ये मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती है तो अपनी जगह उनका जो एक उद्देश्य है वो तो सर्व होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में हमेशा से जो होस्ट कंट्री होता है या दूसरे कंट्रीज भी जो आए हैं, उन्होंने और भी मीटिंग मांगी होंगी अपने पार्टनर कंट्रीज के साथ में। तो भारत ने भी इसी तरह से जो मीटिंग्स आपने बताई हैं कई सारे कंट्रीज के साथ हुई, और इन मीटिंग्स का मतलब ये होता है कि हम बायलैटरल वे में और क्या कर सकते हैं बढ़ाने के लिए। जैसे UAE की बात ले लें, UAE हमारा बड़ा क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वहां पर 4.4 मिलियन इंडियंस रहते हैं, लगभग 44 लाख इंडियंस वहां पर काम करते हैं, वहां से सबसे ज्यादा भारतीय गल्फ कंट्रीज में अगर कहीं रहते हैं। अब ईरान के अंदर में भी काफी सारे भारतीय फंस गए थे, उनके बारे में भी बात करना, कैसे अगर मान लीजिए आपके अगर सैंक्शंस लगी हुई हैं तो अगर आप वहां जाते हैं वहां पे आप अपना यूज नहीं कर पाते तो किस तरह से हम करेंगे। तो जब हम बात करते हैं बायलैटरल रिलेशंस की, तो अगर टूरिज्म सेक्टर की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो उसमें वो मैकेनिज्म निकल के बाहर आएंगी जिससे कि एक टूरिज्म फैसिलिटेट हो सकता है, पीपल टू पीपल कनेक्ट फैसिलिटेट हो सकता है, ट्रैवल इजी हो सकता है।
1: जी अम्बेसडर त्रिगुनायत, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी यही कहा कि पर्यटन भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कूटनीति के जरिए अगर हम देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए टूरिज्म क्या है आफ्टर ऑल, टूरिज्म जो है कि दो देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, उनके पास में अप्रिशिएट करते हैं, और जो भी आप देखें तो कोई भी रिलेशनशिप होगी वो तभी ज्यादा अच्छी चलती है।

0: कुछ इसकी मदद मिलेगी और ये एक बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो गुडविल जनरेट होती है जब आपके देश में लोग आते हैं, उनको अच्छी तरह देखते हैं। देखिए, भारतीय लोग जो है वो हमेशा से अतिथि देवो भव में विश्वास रखते आए हैं, और इसीलिए जो भी हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनको मिलते हैं जब लोगों के साथ में तो वार्म्थ होती है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमें जो है, और ये और अलाइड इंडस्ट्रीज होती हैं। देखिए, टूरिज्म से खाली यही नहीं होता, मतलब देखिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गए, आपके गाइड्स हो गए, आपके आर्टिजन्स हो गए, वीवर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट होता है, तो जहां जहां लोग जाते हैं वहां पर नेचुरली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। और तो ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि इससे डायरेक्टली ये सारी बातें जो है भारत के विकास के लिए भी और हमारे जो पार्टनर कंट्रीज है उनके विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: अम्बेसडर त्रिगुनायत, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये होगा कि क्या आप मानते हैं कि भविष्य में ब्रिक्स सिर्फ व्यापार और अर्थव्यवस्था का मंच नहीं रहेगा, बल्कि पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
0: जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा पहले ही कहा है कि ये इसमें काफी ऐसे देश हैं। अब चाहे देखिए भारत को देखिए, चीन को देखिए, रूस को देखिए, इथियोपिया, इजिप्ट और भी कई सारे देश हैं जो एंशंट सिविलाइजेशंस हैं इसके अंदर में। ऐसे नहीं है मतलब ये कोई जो दूसरे ग्रुपिंग्स में लोग कंट्रीज होते हैं, यहाँ पर सब लोग जो है एक डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस है। कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कितने सारे तो वर्टिकल साइंस के इतने मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, काउंटर टेररिज्म एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका, तो कोऑपरेशन तो बढ़ता रहेगा। और ब्रिक्स को, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है कि ये ब्रिक्स कोई एंटी वेस्टर्न नहीं है, ब्रिक्स जो है एक नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग है, इनिशिएटिव है जो एक अल्टरनेट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को बताता है।
1: अम्बेसडर त्रिगुनायत, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे एआई, कौशल विकास और सतत पर्यटन पर ब्रिक्स देशों के साझा विजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मयंक शर्मा का नमस्कार।

जाने वाले कभी पूरी तरह नहीं जाते, वे रह जाते हैं पुरानी तस्वीरों में, कुछ अधूरी बातों में और उन जगहों में जहां कभी हम साथ खड़े हुआ करते थे। और फिर जब हम उन जगहों से गुजरते हैं तो लगता है जैसे समय कुछ देर के लिए वहीं रुक गया हो।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
3: इतनी वफादारी आजकल कौन सोचता है, ये सब जीने के हैं 4 दिन तो जियो जी भर के।
4: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है, इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
3: हाँ भाई समझा।
4: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
7: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
6: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
7: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
6: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
8: आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। नसीबों में नहीं है मिलना तो मलाल कैसा, जब इश्क ही बेपनाह है तो सब्र में सवाल कैसा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इश्क के बाजार में हुस्न का मेला रह गया, भीड़ है लाखों की मगर दिल अकेला रह गया। दिखावा करने वाले ले गए मोहब्बत का खिताब, शिद्दत से चाहने वाला हर इंसान अकेला रह गया।

कलम थोड़ी कमज़ोर है हमारी, तारीफ़ें तुम्हारी एक साथ नहीं लिख पाएगी। अपनी आँखों से कहो ज़रा कम इतराए, इन्हें पता है शुरुआत इन्हीं से की जाएगी।

अब कोई शिकवा नहीं, कोई सवाल भी नहीं, तेरे बाद दिल में उठता बवाल भी नहीं। बस एक खामोशी है जो रात भर जगती है, और तेरे नाम की बारिश आंखों में उतरती है। मैं भूलने निकलता हूँ हर रोज़ तुझे, मगर तेरी याद मुझसे पहले मेरे घर पहुँचती है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की, संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
2: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
1: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
2: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुँचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
3: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृहमंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुए प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलु मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉ. सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉ. सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
5: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉ असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारो भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉ अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रूपये के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
6: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कलाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with office bearers of the BJP in New Delhi, stresses on strengthening organization and deepening connect with the people. Centre announces high-level committee to resolve Gorkha issue after Home Minister holds high-level meeting with senior Gorkha leaders in Siliguri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India-Bangladesh ties have to be based on mutual interests. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Modi's birthday to highlight his commitment to public service. BRICS youth ministers adopt joint statement to expand opportunities for young people in education, skills, entrepreneurship, innovation and social development. In Odisha, fresh weather system over Bay of Bengal to enhance rainfall activity, raising concerns for flood-hit districts. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand clinches historic bronze medal. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP President said the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of the party to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution, restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programmes. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Later, briefing the media in New Delhi, BJP National General Secretary Vinod Tawde announced that the BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday, with a focus on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The National General Secretary said the campaign will also mark 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. He said the party will organize various activities under the campaign, keeping in focus the spirit of service associated with Prime Minister Modi's personality.
2: सेवा सेतु अभियान के तहत
8: अंडर द सेवा सेतु कैंपेन ऑफिसर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड विद वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स विल रिमेन प्रेजेंट एट द ब्लॉक लेवल फॉर 15 डेज अलोंग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पीपल हु फ्रॉम सम रीजन हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एनरोल देमसेल्व्स इन दीज स्कीम्स थ्रू स्पेशल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड एट द ब्लॉक लेवल ड्यूरिंग दिस पीरियड
2: इस योजना में जोड़ सकते हैं.
7: Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders in Siliguri, West Bengal today. After the meeting, a decision was made to form an intermediary committee headed by former IPS officer Pankaj Singh to solve all the problems permanently in connection with the hills in North Bengal. More in this report.
9: Along with the committee head Pankaj Singh, former BSF director and deputy national security advisor will be in the committee which will give report to the centre. Darjeeling Lok Sabha MP Raju Bishta said that the meeting was very fruitful and that all the Gorkha leaders constructively presented their issues. After hearing the leaders, Chief Minister Shubhendu Adhikari also expressed his views and commitment regarding concerned issues. The Home Minister also held a meeting to review security arrangements along the country's eastern borders with a special focus on strengthening security at the Siliguri corridor, also called the Chicken's Neck. Senior officials of West Bengal and Central Security Forces were present in the meeting. The discussions focused on strengthening border surveillance, improving coordination among Central Security Forces, intelligence agencies and the state police and administration, and preparing a framework for a proposed triangular security grid. Reshma Tiwari, News Desk.
7: The Supreme Court has settled more than 400 cases on the first day of a three-day special Lok Adalat being held as part of the Samadhan Samaro initiative. The cases include matrimonial and property disputes, motor accident claims, land acquisition and compensation matters, tax disputes and service and labour cases pending before the top court. The Supreme Court said the initiative reflects its continued efforts to promote mediation and other consensual methods of dispute resolution as an important part of the justice delivery system. The special Lok Adalat, which began yesterday, will continue till tomorrow. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. External Affairs Minister S. Jaishankar has said that India-Bangladesh ties must be based on mutual respect. Speaking at the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi today, he said for any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. India wants positive, constructive and forward-looking relations with Bangladesh based on mutuality of interests and reciprocity.
10: For any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. It has to work for them, it has to work for us. There has to be fair degree of my recognizing and respecting what is their interest, just as I expect them also to do so. It is when you get that landing point, that common ground, that relationships work smoothly.
7: The External Affairs Minister also described Pakistan as a unique country in the world, as there is no other nation that uses terrorism

कार्यक्रम में लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए रुदाली फिल्म का गीत भूपेन हजारिका के आवाज में, शब्द गुलजार के।

रजिया सुल्तान। जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। जान इज़हार अख्तर के शब्द हैं और खयाम का संगीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ चित्रगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: श्रोताओं नमस्कार, माह अगस्त की विज्ञान पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान, जिज्ञासा से समाधान तक की यात्रा। श्रोताओं, अगस्त का महीना हमारे लिए स्वतंत्रता, संकल्प और नव निर्माण का संदेश लेकर आता है। आज जब हमारा देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब ये आवश्यक है कि वैज्ञानिक सोच केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और समाज का अभिन्न हिस्सा बने। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर जैव प्रौद्योगिकी तक, विज्ञान की दुनिया तेजी से बदल रही है। इन उपलब्धियों के साथ नई संभावनाएं तो जन्म ले ही रही हैं, लेकिन नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं जल सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज पहले से कहीं अधिक जरूरी है। आसमान को देखकर कभी न कभी हमारे मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, इन तारों के पार क्या है। मानव की इसी जिज्ञासा ने उसे धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचाया, और इसी माह अगस्त की 23 तारीख को हम मनाते हैं अंतरिक्ष दिवस, जो कि केवल भारत के नहीं विश्व के समस्त वैज्ञानिक हलकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस अंक में हमारा प्रयास है कि विज्ञान के जटिल विषयों को सरल, सहज और रोचक भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। हमारा विश्वास है कि वैज्ञानिक चेतना का विस्तार ही एक जागरूक, तर्कशील और आत्मनिर्भर समाज की मजबूत नींव है। रेडियो की आवाज दूर दराज के गांवों को लेकर महानगरों तक पहुंचती है, इसलिए विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आइए सवाल पूछें, तथ्यों को परखें और अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक सोच को अपनाएं, क्योंकि विज्ञान केवल भविष्य की खोज नहीं बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण का माध्यम भी है। आज की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका में हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर शेखर सी मांडे। हम आपको सुनवाएंगे एक और बातचीत, रोबोटिक्स और कृत्रिम मानव, हमारे कृत्रिम प्रतिरूप और भविष्य की संभावनाएं। इसमें प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर रविंद्र धर। एक और भेंट वार्ता श्रोताओं हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग, चुनौतियां, संभावनाएं, नैतिकता और हमारी सीमाएं। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की तकनीकी क्रांति, ये विषय होगा एक और बातचीत का। इसमें हमारे साथ होंगे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला। इसके अलावा हम बातें करेंगे विज्ञान जगत की और अगस्त माह क्यों विशेष है हमारे इस संपूर्ण विज्ञान जगत के लिए, इस पर भी बातें करेंगे और कुछ विज्ञान समाचार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं हमारी विशेष बातचीत, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। प्रतिभागी हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे और आपसे बातचीत कर रहे हैं दिलीप झा।
1: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे जी, वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एकेडमी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, किस किस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ से उत्पन्न हुए और वैज्ञानिक यहाँ से जुड़े रहे, और अभी जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ साइंस की, तो भारत में ये क्यों जरूरी हो जाता है, खास करके हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए।
2: जैसा कि आप जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी में हमारे देश पर प्रदूषियों का राज था, उसी वक्त ये भी हुआ था पूरे विश्व में कि विज्ञान और तंत्रज्ञान के माध्यम से हर जगह एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति हम जिसे कहते हैं, वो उसी समय पे आई थी। लेकिन जो कि हम लोगों पर अंग्रेजों का राज था, हमारे देश को ज्यादातर बड़े स्तर पे विज्ञान और तंत्रज्ञान की प्रगति में वंचित किया गया था। और ये जानते हुए हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रमुख व्यक्तियां जो थी, उन्हें काफी दुख हो रहा था कि ऐसा ना हो कि भारत पूरे दुनिया से पिछड़ जाए, क्योंकि हमें वंचित किया गया है विज्ञान की प्रगति से। उस समय जैसे कि आप शायद जानते हो कि बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसे रिनायस सा कहते हैं बंगाल का, उसमें काफी सारी प्रमुख व्यक्तियों को उभर कर आई थी हमारे देश के सामने में, बहुत बड़ी बड़ी व्यक्तियों का उसमें उल्लेख किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, सब लोग, ये एक बंगाल रिनायस जो था उसके प्रमुख व्यक्ति थे। उसी में एक अग्रेसर नाम जो है वो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जी का है, और महेंद्रलाल सरकार जी रामकृष्ण परमहंस जी के निजी चिकित्सक थे, मेडिकल डॉक्टर थे। और महेंद्रलाल सरकार जी के मन में भावना थी कि हमारे देश में भी विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी संस्थाएं होना जरूरी है जहां पे कोई भी आके अपने मन में जो कोई प्रश्न है अपने सृष्टि के बारे में या कुछ भी, और उसके लिए विज्ञान का सहारा लेते उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहे तो वहां पे काम कर सकते हैं। इसी स्वदेशी भावना से महेंद्रलाल सरकार जी ने 29 जुलाई 1876 में एक संस्थान का स्थापन किया जिसे हम लोग इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। और जैसे कि 1876 और 8 तो 150 वर्ष हाल ही में इस संस्थान के पूरे हुए हैं और बहुत ही गौरवशाली समय यह रहा है भारत के इतिहास में 150 वर्षों का।
1: निश्चित रूप से, क्योंकि जब ये संस्थान बनाया गया था तो इसे कहा गया था कि ये भारतीयों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा शोध संस्थान है जो आधुनिक विज्ञान की खेती यानी कि संवर्धन एवं मौलिक अनुसंधान के लिए बनाया गया है और उसके प्रतिफल में रमन प्रभाव दिखाई दिया दुनिया को, और जिसके लिए भारत के प्रथम वैज्ञानिक सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो रमन इफेक्ट का जब उन्होंने पता किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो उस समय बहुत कम संसाधनों से इस पर खोज की गई थी विश्व के अन्य देशों के जो लेबोरेटरी थे उसकी अपेक्षा, और बाद में इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए इस खोज के बाद।
2: जैसे कि आपने सही कहा, साइंस का जो सपोर्ट था, इंस्ट्रूमेंट्स थे, इतना सपोर्ट भारत में नहीं था, लेकिन रमन जी ने जीडी बिरला जी को एक पत्र लिखा कि अगर आप मुझे इतना पैसा दोगे तो उसमें से मैं ये इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, और अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा तो मैं भारत के लिए नोबेल पारितोषिक ले आऊंगा। और जीडी बिरला जी ने रमन पे विश्वास किया और सीवी रमन जी को उन्होंने वो पैसा दिया, रमन जी ने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके ऊपर रमन जी को नोबेल पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्गामी परिणाम तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रमन इफेक्ट आजकल अगर देखे तो उसके उपरांत जो टेक्नोलॉजी बनी है रमन इफेक्ट को लेके काफी सारी है। जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारा सामान जो स्क्रीन होता है सिक्योरिटी में, वहां पे रमन इफेक्ट से देखते हैं कि सामान में क्या सही में असली चीज है या कुछ गलत चीज हम तो लेने जा रहे हैं साथ में,
1: स्कैटरिंग।
2: तो वो रमन इफेक्ट का काफी हर जगह उसका उपयोग होता है, लेकिन वो रमन के प्रभाव के आधारित ही है सब कुछ।
1: प्रोफेसर मांडे, चूंकि आप भी संक्रामक रोगों खास करके टीबी के अनुसंधान कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आज इस तरह की जो समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है कि जो अगर प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने की आवश्यकता है, तो विज्ञान अनुसंधान किस तरह से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दे सकता है?
2: काफी सारे ऐसे रोग महामारी हमारे सामने में है जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो पहुंच सकती है, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो ऐसी फैलती नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती नहीं है, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ये फैलती नहीं है। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या फ्लू हो, अगर एक आदमी पीड़ित हो तो उसके अगल बगल में बाकी लोगों को भी वो हो सकता है। और भारत में कई वर्षों में ऐसा देखा गया है कि भारत ने काफी बड़े स्तर पर काम करके कई सारे ऐसे रोगों को बिल्कुल यहाँ से हटा दिया है। जैसे कि आपने सुने होगा कि अब पोलियो भारत में नहीं रहा, 2014 में भारत ने अपने आप को पोलियो मुक्त देश कहलवाया था, वैसे ही आज के दिन हम लोग करीबन बहुत पास आए हुए हैं, जिसे हम लोग काला आजार से हम लोग मुक्त हो गए ऐसा मानते हैं। एक हमारे आंखों में बीमारी होती है जिसे ट्रेकोमेटिस कहते हैं, उससे भी हम लोग मुक्त होने में है। और अगर देखी जाए तो मलेरिया वगैरह जैसी बीमारी भी काफी स्तर पर गए 10-15 वर्ष में बहुत कम हुई है। तो ये भारत के विज्ञान की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे कि काफी सारे जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो कम होते जा रहे हैं भारत में, और इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है।
1: अंत में क्या संदेश देंगे आकाशवाणी के माध्यम से?
2: मैं ये कहना चाहूंगा युवाओं को कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आज तक हम लोग हमारे प्रकृति के बारे में, निसर्ग के बारे में, सृष्टि के बारे में जो जानते नहीं है, ऐसे कोई प्रिंसिपल हो, लॉ हो, और अगर उसकी खोज करने की हमारे मन में अगर जिज्ञासा हो, और अगर हम विज्ञान के मार्फत उस जिज्ञासा को उसका उत्तर खोजने की अगर कोशिश करें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
1: प्रोफेसर शेखर सिंह मांडे जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं रोबोट्स की, जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी और अनोखी दुनिया है। क्या भविष्य हो सकता है, क्या चुनौतियां हैं, क्या नैतिकताएं हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। आइए इस साक्षात्कार में सुनते हैं प्रोफेसर रविन्द्र धर, जो कि विभागाध्यक्ष हैं मटेरियल साइंस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। श्रोताओं नमस्कार, आज हम बात करेंगे रोबोटिक्स की, विकास की ये दौड़ ये हमको कहाँ तक लेकर के जाएगा, किस तरह से हमको, संसार को, मानवता को प्रभावित करेगा, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रविन्द्र धर, जो कि अध्यक्ष हैं इस समय डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर रविन्द्र धर, आपका प्रयागराज आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में और संक्षेप में ये बताइए कि रोबोटिक्स है क्या, और एक आधुनिक रोबोट के पीछे कौन कौन सी प्रमुख जो तकनीकें हैं वो काम करती हैं।
3: वर्तमान रोबोटिक्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप AI कह रहे हैं, हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, एवं आधुनिक गैजेट्स से मिलकर बना हुआ है। यह मानव के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसमें कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं। अब मानव के विकल्प के रूप में कोई गैजेट डिवाइस जिसको आपने रोबोटिक्स कहा है तैयार किया जा रहा है, तो इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमारे मानव में सबसे पहले आते हैं हमारे ज्ञानेन्द्रिय जिनसे हम सेंस करते हैं, तो सेंसर्स में हमारे हो गए आंख, नाक, कान, टच भी कर सकते हैं हाथ से, वो भी हो गया, ये सेंसिंग का काम करते हैं। तो हमारे आर्टिफिशियल जो रोबोटिक्स होंगे उसमें सेंसर होना चाहिए जिससे हम आसपास की प्रॉब्लम्स को सेंस कर सकें। सेंसर्स के साथ साथ एक्चुएटर्स होना चाहिए, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब एक्चुएटर्स हैं जिनसे हम काम करते हैं। तो जब सेंस करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि क्या करना है, ठंड लग रही है तो गर्म जगह पे जाना है, गर्म लग रही है तो ठंडी जगह पे जाना है। अब सेंसर ने जो सेंस किया उसको कम्युनिकेट करना है एक्चुएटर को और उचित निर्णय भी लेना है, तो इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो मानव में ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसी तरह से रोबोटिक्स में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वो ये बताता है कि ये फीलिंग्स हो रही हैं, अब इसी के हिसाब से आपको एक्शन लेना है एक्चुएटर को। कम्युनिकेशन भी कैसे होगा इनके लिए, मानव में हमारे यहाँ तंत्रिका तंत्र होता है उसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है, तो फाइबर केबल्स यूज किए जाते हैं रोबोटिक्स में, तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न रोबोटिक्स के।
0: अपनी भाषा में जिसे हम सहज विवेक कहते हैं, ये कैसे आप किसी मशीन में डाल सकते हैं, ये इतना आसान है क्या?
3: बिल्कुल, हम भी क्या करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको अपने लॉजिक के हिसाब से, जिसको विवेक आप कह रहे हैं, वो निर्णय लेता है, वही विवेक एल्गोरिथम के थ्रू रोबोट्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं, वही इम्पोर्टेंट बात होती है, प्रोसेसिंग वो बड़ा इम्पोर्टेंट है।
0: एक प्रश्न सर और आता है, आज का जो अगर हम यूथ की बात करें, युवा की बात करें, तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आ रही है, डिप्रेशन, अकेलापन या अवसाद, क्या कोई ऐसा रोबोट हमने तैयार अभी तक किया है, कर पाए हैं या कर पाएंगे क्या, कि जिस इमोशनल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे, जो उस व्यक्ति को भी एक सांत्वना या एक साथ प्रदान कर सके जिसको साथ की जरूरत है?
3: अभी एग्जैक्टली तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो बिल्कुल मदर का सब्स्टिट्यूट हो सके, फादर का सब्स्टिट्यूट हो सके, वो तो जगहें अभी भी आवश्यक हैं, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में उस डायरेक्शन में कुछ काम हो रहा है। अभी भी फ्रस्ट्रेशन रिमूवल बॉक्सेस फॉरेन में तैयार होने शुरू हुए हैं, कई बार आदमी जो फ्रस्ट्रेट होता है तो क्या करता है, अपने कोलीग पर गुस्सा उतारता है, तेजी से चीखना चिल्लाना शुरू करता है, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वो जा करके अपना फ्रस्ट्रेशन खत्म करे, तो तमाम तरीके की चीजें डेवलप की गई वहाँ पे।
0: जी जी,
3: लेकिन अभी ये बहुत कम है, अभी तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का केवल बना है, तो वन साइडेड है, दूसरी तरफ से भी सांत्वना आनी चाहिए,
0: बिल्कुल
3: वो करना होगा, लेकिन वो थोड़ा सा भी काफी दूर।
0: चलते चलते प्रोफेसर रविंद्र धर, हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें या संदेश देना चाहें?
3: हमारी अपील तो यही है कि इंडिया को विकसित देश अगर बनाना है तो पहली बात तो ये है, यहाँ के युवाओं को नियम कानून पहले सीखना पड़ेगा, टाइम का महत्व सीखना पड़ेगा कि हम कैसे टाइम के अनुसार सब चीजें करें, जो नियम कानून है उसको कैसे फॉलो करें। बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक सिग्नल लोग खूब तोड़ते हैं, इलाहाबाद जैसी जगह पे अगर हम ये सिखा ले जाएं कि नहीं भाई ट्रैफिक का ऑनर करिए, जो विदेशों में होता है खूब होता है, मजाल क्या है कि सिग्नल अगर रेड हो गया तो कोई भी आदमी, वहां कोई ट्रैफिक पुलिसमैन की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप लोग फॉलो करते हैं। तो रोबोट अगर रहेंगे और रोबोट को खड़े कर दिए जाएं या रोबोटिक से कुछ वहां पे डिवाइसेस डेवलप कर दिए जाएं तो कंट्रोल भी करना बड़ा आसान हो जाएगा लोगों को, तो हम रोबोट्स की पॉजिटिव साइड देखें।
0: श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर रविन्द्र धर, जिनसे हम बात कर रहे थे रोबोटिक्स के ऊपर, रोबोटिक्स के भविष्य के ऊपर, रोबोटिक्स के वर्तमान के ऊपर। आइए इस कार्यक्रम में अब आगे आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे विषय पर जिसने मानव को दो कदम आगे खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग की। क्या है इसमें चुनौतियाँ, क्या है संभावनाएं और क्या है हमारी सीमाएं, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, जो कि लाइफ साइंसेज मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, आपका आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बहुत सरल भाषा में बताइए कि ये जीन एडिटिंग क्या है और किसी जीव के डीएनए में कैसे बदलाव कर सकते हैं।
4: हर जीवाणु या हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है और उस सेल के अंदर एक अनुवांशिक तत्व जिसे हम डीएनए भी बोलते हैं वो होता है। डीएनए जो है वो हर अलग अलग साइज का हो सकता है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, जो भी जीवाणु की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो डीएनए का साइज जो है ह्यूमन जीनोम का करीब 3 बिलियन बेसिस का है। 3 बिलियन बेसिस का मतलब यह है कि अगर आप एक पेज पे अल्फाबेट्स लिख रहे हैं और 3000 अल्फाबेट्स अगर एक पेज पे आप लिख पा रहे हैं तो आप उसकी अगर किताब बनाते हैं तो करीब 1 मिलियन पेजेस या 10 लाख पेजेस की वो बुक बनेगी। तो इतना बड़ा जीनोम होता है ह्यूमन का, अलग अलग जीवाणुओं का अलग अलग जो है तरह का जीनोम हो सकता है। डीएनए जो है कुल 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस से बना है, एडेनिन, थायमिडीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो यही 4 तरह के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका एक सीक्वेंस जो है वो जीनोम बनाता है किसी भी जीव का। ये जीनोम जो है वो कम्प्लीट सेट ऑफ जीन्स है, किसी भी जीव के अंदर कम्प्लीट सेट ऑफ जीन्स को हम जीनोम बोलते हैं। तो अब इसमें हमें समझ पाना कि हाँ कौन सा जीन कहाँ शुरू होता है कहाँ होता है बहुत मुश्किल है, और केवल ATGC से कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन जो सेल है वो इससे एक सेंस बना लेता है, क्योंकि इस सीक्वेंस में भी कहीं कॉमा कहीं फुल स्टॉप लगे हुए हैं। वो कॉमा फुल स्टॉप डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीन जो है कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है, और हर जीन किसी न किसी प्रोटीन को बनाता है और वो जो है उस सेल के लिए काम करते हैं। जब हम बात करते हैं एडिटिंग की, तो उस किताब में से कोई एक लेटर आपको अगर हटाना है तो मूलतः जो है हम जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग में हम यही करते हैं।
0: क्या एक लेटर हटा करके पूरी किताब का मतलब बदल सकता है?
4: हाँ, एक लेटर भी कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही ये लेटर्स का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह का प्रोटीन बनाएगा वो डिसाइड करता है। अगर एक लेटर भी चेंज होता है तो उस प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिससे उस प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है।
0: कौन सी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनका इलाज जीन एडिटिंग के माध्यम से किया जा सकता है?
4: देखिए, जीन एडिटिंग यूज करके आप बहुत तरह के असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। इसमें हेमोफीलिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसी जीन के खराब होने की वजह से हो रही हैं। तो ये सारी बीमारियां जो हैं जीन एडिटिंग यूज करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी को भी जो है जीन एडिटिंग से ठीक किया जा सकता है। और जीन एडिटिंग से केवल बीमारियां ही नहीं, नए नए तरह के फसल भी तैयार किए जा सकते हैं, केवल हेल्थ के ही फील्ड में नहीं, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर और बहुत अलग अलग तरह की फील्ड्स में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
0: प्रोफेसर, हम बात कर रहे हैं जीन की गड़बड़ियों के ऊपर जो आप सुधारते हैं जिनको, ये होती कैसे है?
4: देखिये, 2 तरह के चेंजेस होते हैं। एक तो ये चेंजेस जो है फैमिली में ही है, जैसे कि आपने रॉयल फैमिलीज के बारे में सुना होगा इंग्लैंड की, कि उसमें एक हीमोफीलिया करके एक इनहेरिटेड डिजीज है, जिसमें कि ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो क्लॉट नहीं करता है। तो ये फैमिली में ही चल रहा है वो। तो ऐसे भी ये चेंजेस हो सकते हैं। जो बॉडी है उसमें जो सेल्स है वो भी डिवाइड करते रहते हैं, सेल डिवीजन में भी जो है बहुत तरह के एरर्स होते हैं, क्योंकि डिवीजन में आप सोच सकते हैं कि 3 बिलियन सीक्वेंस है, इन 3 बिलियन सीक्वेंस को जब डिवीजन हो रहा है तो जो डॉटर सेल बन रही है उसमें वो एग्जैक्टली कॉपी होना चाहिए वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवाइड हो रही है तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो कभी कभी उसमें भी एरर आ सकता है। तो उस एरर को ठीक करने के लिए भी सेल के पास पूरा तंत्र होता है, रिपेयर मैकेनिज्म। लेकिन मान लीजिए उस गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कि एक सेल ऐसी बन गई जो कि खराब है, पहले से उसमें चेंज आ गया। तो अब वो चेंज अगर गड़बड़ चेंज है, किसी ऐसी जगह हुआ है जो कि किसी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैंसर जो है मूलतः ऐसे ही शुरू होता है बहुत सारे केसेस में, कि किसी ऐसे इम्पोर्टेंट जीन में चेंज हुआ जो कि जरूरी था कि वो सही रहे वो जीन, अब वो जीन खराब होने की वजह से जो है वो सेल कैंसरस होती गई। अब ये भी जो है ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे ये चेंज हो रहा है।
0: तो श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव जो जानकारी दे रहे थे जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी के ऊपर। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, भविष्य की तकनीकी या नई वैज्ञानिक क्रांति, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला जो कि जुड़े हुए हैं भौतिकी विभाग इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से। प्रोफेसर आशुतोष कुमार शुक्ला, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: बहुत धन्यवाद।
0: क्वांटम कंप्यूटर्स, हम सिर्फ कंप्यूटर्स जानते थे, वो कंप्यूटर्स जिनमें एक मॉनिटर होता था, एक सीपीयू होता था, एक कीबोर्ड होता था और एक यूपीएस होता था।
5: बिल्कुल।
0: ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और ये पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस तरह से अलग है, संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं।
5: देखिए, ऐसा है कि हम अगर कहें कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंसानों की कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए अभूतपूर्व कंप्यूटिंग क्षमताएं लेकर आई है, और ये ऐसा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई एक नई डेटा प्रोसेसिंग तकनीक है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं और इसी वजह से जो क्लासिकल कंप्यूटर है उससे कहीं ज्यादा क्षमताएं हैं, और बहुत ज्यादा क्षमता वाले ये क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं।
0: क्वांटम का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब?
5: देखिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो क्वांटम का मतलब है, जैसे ऊर्जा के क्वांटीकरण की बात करें तो ऊर्जा किस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, तो वहां से यह शब्द क्वांटम लिया गया है।
0: जरूरत क्या पड़ी इसकी? क्या सामान्य जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे थे?
5: अब देखिए, जब भी नई तकनीक आती है तो उसके पीछे ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो समस्याओं का वांछित रूप से समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। यानी आवश्यकता ही आप कह सकते हैं कि आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकता हुई तब देखा गया, जब हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की बात है, जैसे आप किसी भी सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, ये सब अपने आप में बहुत जटिल कैलकुलेशंस पर आधारित होते हैं। तो इन जटिल कैलकुलेशंस तक पहुंचने के लिए क्लासिकल कंप्यूटिंग से काम नहीं चलने वाला है, और यहीं से इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि अब क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत है।
0: ये क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट क्या है, इनका क्या महत्व है क्वांटम कंप्यूटिंग में?
5: बहुत अच्छी बात की आपने, पर उससे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग में तेज गति और पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम स्टेट्स का इस्तेमाल करके बड़े डेटा वॉल्यूम के मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग को बेहतर बनाते हैं। ये जो क्षमता है यही सुपरपोजिशन से आती है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ कई डेटा सेट्स को मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा इंटेंगल्ड क्यूबिट्स यानी एक दूसरे से संलग्न क्यूबिट्स जो हैं, वो जटिल डेटा संबंधों को स्टोर और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये क्लासिकल सिस्टम की क्षमताओं से कहीं ज्यादा है, और क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो है वो क्वांटम एल्गोरिदम को चलाने में मदद करता है, जिससे बड़े पैमाने पर सिमुलेशन, जैसे मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का सिमुलेशन और बड़े सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा कुशलता से हो जाता है।
0: आज का दौर एक एआई का दौर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर, और एक तरह से अगर कहें हमने एक कृत्रिम बुद्धि तैयार कर ली है, क्या इसका एआई का और क्वांटम कंप्यूटिंग का जो मिश्रण है ये भविष्य में बहुत अधिक शक्तिशाली होने वाला है? इसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस देखने में सामने आ सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, मैं दोनों आपसे जानना चाहूंगा।
5: बहुत बढ़िया प्रश्न आपने सामने रखा है। देखिए, असली बात जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई दोनों क्षेत्रों के बीच में एक बेहतर तालमेल की बात है, तभी जो है हमको जो अपेक्षित फायदा है, जो अपेक्षित लाभ है वो मिलने वाला है। क्वांटम कंप्यूटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और डिवाइस डिजाइन से लेकर एप्लीकेशन तक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें उपयोगी क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चुनौतियों को हल करने में मदद कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यूबिट्स को डिजाइन करने से लेकर क्वांटम एल्गोरिदम तैयार करने, डिवाइस को कंट्रोल और कैलिब्रेट करने, रियल टाइम में गलतियों को ठीक करने और क्वांटम कंप्यूटिंग से मिलने वाले आउटपुट को समझने तक हर चीज में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
0: डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है।
5: बिल्कुल,
0: हम इतनी भारी भरकम क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें कर रहे हैं, कोई पेड़ अगर ये बातें सुन रहा होगा तो उसके मन में क्या विचार आ रहा होगा?
5: बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों का इस्तेमाल होता है तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं, यानी पर्यावरण के ऊपर असर पड़ रहा है। देखिए, वो बोल नहीं पा रहा है, वो एक उसकी कैपेसिटी नहीं है तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो न बोल करके भी अगर वो प्रकृति का घटक अगर घुट रहा है तो उसको हम ही को भोगना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली फिर हम उससे प्रभावित होंगे। तो ये आप कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती है, विकास के साथ साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं।
0: बिल्कुल। तो ये थे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ल, जो हमें जानकारी दे रहे थे क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। आइए अब बातें करते हैं विज्ञान जगत की और विज्ञान समाचारों की। अगस्त माह में ऐसे कौन से विशिष्ट वैज्ञानिक व्यक्तित्व थे जो जन्मे, जो दिवंगत हुए, और प्रमुख वैज्ञानिक घटनाएं?
6: श्रोताओं, अगस्त 2026 में भारत और विश्व से विज्ञान की दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण और रोचक प्रगति पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। भारत से भारतीय वैज्ञानिकों ने बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की असामान्य रूप से अधिक मात्रा वाली परत का पता लगाया। ये परत एक दिन से अधिक समय तक बनी रही। अध्ययन के अनुसार इसका संबंध ओजोन समृद्ध हवा के क्षैतिज परिवहन और नीचे की ओर वायुमंडल गति से था। इसमें एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, नैनीताल के स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर रडार सहित रडार, मौसम गुब्बारों, उपग्रहों और वायुमंडलीय मॉडलों का प्रयोग किया गया। अगली खबर, न्यूक्लिक एसिड्स रिसर्च में प्रकाशित। भारत में वैज्ञानिकों ने ACSC-END नाम का मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क विकसित किया है जो ट्यूमर जीन एक्सप्रेशन डेटा से कैंसर स्टेम लाइक सेल्स की अवस्थाओं की पहचान में मदद करता है। 25,000 से अधिक ट्यूमर प्रोफाइल्स के विश्लेषण में इन कोशिकाओं की अधिक उपस्थिति को कम डिजीज फ्री सर्वाइवल, ट्यूमर रिकरेंस और इम्यूनोथेरेपी के कमजोर रिस्पॉन्स से जोड़ा गया। ये AI स्वयं कैंसर का उपचार नहीं बल्कि जेनोमिक डेटा सेट्स में महत्वपूर्ण जैविक संकेतों की पहचान का माध्यम है। ये प्रिसिशन मेडिसिन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विश्व से बात करें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने MOMBH1 नाम की अत्यंत दूरस्थ वस्तु का अध्ययन किया जिसका प्रकाश उस समय का है जब ब्रह्मांड लगभग 66 करोड़ वर्ष पुराना था। इसके केंद्र में घने गैस आवरण से घिरे एक बहुत बड़े ब्लैक होल के संकेत मिले हैं। ये जानकारी ब्रह्मांड में विशाल ब्लैक होल्स के निर्माण को समझने में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो विज्ञान जगत की इन खबरों में कहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कभी जेनोमिक एनालिसिस है, कहीं सूर्य और स्पेस वेदर का अध्ययन तो कहीं ब्रह्मांड के आरंभिक ब्लैक होल्स। विज्ञान की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। हर नई खोज हमारी जानकारी बढ़ाती है और नए प्रश्न भी सामने लाती है। अब अगस्त माह से जुड़े उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनके कार्यों ने विज्ञान की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। 2 अगस्त 1861 को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ। आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के अग्रदूतों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखी। 7 अगस्त 1925 को MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ। प्लांट जेनेटिक्स और क्रॉप ब्रीडिंग में उनके कार्यों ने भारत की हरित क्रांति और खाद्य सुरक्षा को वैज्ञानिक आधार दिया। बाद में उन्होंने टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पर भी काम किया। इनके योगदानों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। 8 अगस्त 1902 को पॉल डिराक का जन्म हुआ। उनकी डिराक इक्वेशन ने क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी को जोड़ने तथा एंटी मैटर की सैद्धांतिक संभावना समझने का मार्ग दिया। 1933 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उनके सम्मान में दिए जाने वाला डायरेक्ट मेडल भी सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है। और हाल ही में वर्ष 2026 का ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत के प्रख्यात सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एवं IIT कानपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर दीपक धर को सांख्यिकीय भौतिकी में उनके मौलिक योगदान के लिए प्रदान किया गया और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 12 अगस्त 1919 को डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में उनका अग्रणी स्थान है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को संचार, मौसम, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास से जोड़ने की दूरदृष्टि प्रदान की और इनको भी भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो कि उनको मरणोपरांत दिया गया उससे सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 1995 को महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का देहावसान हुआ। तारों की संरचना और विकास पर उनके मौलिक कार्य तथा चंद्रशेखर लिमिट ने व्हाइट ड्वार्फ्स के अध्ययन

0: को नई दिशा दी। 1983 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, तारकीय भौतिकी और न्यूक्लियर फिजिक्स, अगस्त हमें विज्ञान के इन विविध क्षेत्रों के महान वैज्ञानिकों को स्मरण करने का अवसर देता है। इन सभी वैज्ञानिक यात्राओं में एक भावना समान थी, जिज्ञासा। यही जिज्ञासा प्रश्न पैदा करती है, प्रश्न अनुसंधान को जन्म देते हैं और अनुसंधान मानव ज्ञान को आगे बढ़ाता है।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा ये अंक। ये अंक आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र का अंशदान था। वाचन अंजलि श्रीवास्तव और अभिनव प्रज्ञ पांडे, प्रस्तुति अभिनव प्रज्ञ पांडे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी
1: लाए हैं श्री श्रेयस नारायणन द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री श्रेयस नारायणन आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं। वे अपने प्रभावशाली आवाज, गहन संगीत ज्ञान तथा कर्नाटक संगीत परंपरा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रारंभिक संगीत शिक्षा मुत्तुस्वामी दीक्षितर की परंपरा से जुड़े स्वर्गीय ए अनंतरामन अय्यर के मार्गदर्शन में प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने प्रोफेसर एम ए वेणुगोपाल तथा स्वर्गीय पी एस नारायण स्वामी से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनके मार्गदर्शन ने उनके संगीत जीवन को आकार दिया। कई दशकों के संगीत सभाओं के अनुभव के साथ श्री श्रेयस नारायणन ने भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों एवं सांस्कृतिक मंचों पर व्यापक रूप से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तथा वे संगीत समीक्षकों और संगीत प्रेमियों दोनों के बीच अत्यंत सम्मानित हैं। अपने सफल संगीत जीवन के अतिरिक्त उन्होंने शिक्षण एवं शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से संगीत शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्णा कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
2: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's national program of music, we bring you a Carnatic vocal concert by Sri Shreyas Narayanan. Sri Shreyas Narayanan is a top-grade Carnatic vocalist of Akashvani, known for his powerful voice, musical depth, and steadfast commitment to the Carnatic music tradition. He received his initial training under late A. Anandaraman Iyer of the Muthuswami Dikshitar lineage, followed by advanced tutelage under Professor M.A. Venugopal and late P.S. Narayana Swami, whose guidance shaped his distinguished musical career. With several decades of concert experience, Sri Shreyas Narayanan has performed extensively at prestigious music festivals and cultural platforms across India and abroad. He has received numerous honors and recognitions for his contributions to Carnatic music and enjoys the admiration of music critics and rasikas alike. In addition to his concert career, he has made significant contributions to music education through teaching and academic engagement. In tonight's program,

0: will be accompanied by Srimati S.R. Rajashree on the violin, Sri A. Balakrishna Kamath on the Mrudangam, and Sri Vaikim N. Gopalakrishnan on the Ghatam.
1: Sri Shreyas Narayanan अपने गायन की शुरुआत संत त्यागराज की कृति निन्नाड नेला से कर रहे हैं, जो राग कन्नड़ा पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
0: श्री श्रेयस नारायणन बिगिंस हिज वोकल रिसाइटल विद कृति निन्नाड नेला, अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग कन्नड़ा सेट टू आदि ताल।

0: अब प्रस्तुत है मुत्तु स्वामी दीक्षितर की रचना कामाक्षीम कल्याणी, जो राग कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू कामाक्षीम कल्याणी, अ कंपोजिशन ऑफ मुत्तु स्वामी दीक्षितर इन द रागा कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री श्रेयस नारायणन अब प्रस्तुत कर रहे हैं पेरिया स्वामी तूरन द्वारा रचित ताये त्रिपुर सुंदरी, जो राग शुद्ध सावेरी पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: The next item is ताये त्रिपुर सुंदरी in the राग शुद्ध सावेरी set to खंड चापू ताल, composed by पेरिया स्वामी तूरन।

0: श्री श्रेयस नारायणन अपने गायन का समापन संत त्यागराज की एक रचना दाशरथी से कर रहे हैं, जो कि राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री श्रेयस नारायणन कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विथ दाशरथी, कंपोज्ड बाय त्यागराजा इन द रागा तोड़ी सेट टू आदि ताल।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे श्री ए बालकृष्ण कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
1: That was तनियावर्तनम played on the मृदंगम by श्री ए बालकृष्ण कम्मत and on the घटम by श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री श्रेयस नारायणन का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्ण कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that we conclude the vocal recital by श्री श्रेयस नारायणन।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओ, अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार। 11 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
2: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान किया जाए।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ सम्पन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तंत्र श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य महत्वपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रूपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रूपए की सुनिश्चित आय देने वाला दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो AI से तैयार किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिषा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और तैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है और कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP president said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of BJP to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programs. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders today in Siliguri, West Bengal. After the meeting, a decision was made to form an intermediary committee headed by former IPS officer Pankaj Singh to solve all the problems permanently in connection with the hills in North Bengal. External Affairs Minister S. Jaishankar has said that India-Bangladesh ties must be based on mutual respect. Speaking at the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi today, he said, "For any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. India wants positive, constructive and forward-looking relations with Bangladesh based on mutuality of interests and reciprocity."
4: For any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. It has to work for them, it has to work for us. There has to be a fair degree of my recognizing and respecting what is their interest, just as I expect them also to do so. It is when you get that landing point, that common ground, that relationships work smoothly.
3: The External Affairs Minister also described Pakistan as a unique country in the world, as there is no other nation that uses terrorism so systematically and in a sustained manner to attack and put pressure on a neighbor. The United States has imposed 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products. The tariffs came into effect early today. Canada immediately said it would retaliate after a failure of last-minute talks to ease tensions between the two historic allies. The new U.S. tariffs will affect about 5% of Canada's annual exports to the United States. Canadian Prime Minister Mark Carney said Canada would match the tariffs dollar for dollar. The Indian men's hockey team conceded 2 goals in the final quarter despite a flawless first half to lose 1-3 against reigning Olympic champions, the Netherlands, and crashed out of the semi-final race of the ongoing FIH World Cup at Amstelveen, Netherlands today. India needed to win this match at all costs to reach the last 4 stage, but despite a good start, the team committed mistakes in the final 10 minutes to get knocked out of podium contention. India will now play an inconsequential final second round match against Argentina on Monday. After that, the team will play the 5th-8th place classification matches. Captain Harmanpreet Singh scored the only goal for India in the 52nd minute from a penalty corner. India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand have etched their names in history by bagging the bronze medal at the BWF Badminton World Championships. They have become only the second Indian women's doubles pair to win a World Championship medal, following in the footsteps of Jwala Gutta and Ashwini Ponappa. And that is the end of this news bulletin.
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। पहली सभा में इसी मीटर पर सुबह 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।